0: अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना। और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप नित सवेरे उठकर योग की योग पाठशाला में योग प्रतिदिन करते होंगे। आइए आज हम कुछ नया योग के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम मुख्य प्राणायामों में से 5 ऐसे प्राणायाम हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जान लें कि हम योग और प्राणायाम का क्या अर्थ होता है, यानी कि प्राण और यम से हम क्या समझते हैं। प्राण का मतलब महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति है, वह शक्ति जो सभी चीजों में मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। प्राणायाम श्वास के माध्यम से यह ऊर्जा शरीर के सभी नाड़ियों में पहुंचाती है और यम शब्द का अर्थ है नियंत्रण। योग में इसे विभिन्न नियमों या आचारों को नियमित रूप से करने पर या प्रयोग में किया जाता है। 5 कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, वाह प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नित्य सवेरे उठ करके आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जब आप बैठते हैं आसन पे, तो सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट, 2.5 मिनट तक ओम का उच्चारण अगर जमीन पर आसन लगाकर बैठ करके करें तो हमें उसका जो लाभ है वह एक अत्यंत रूप में और एक आंतरिक शक्ति को प्रदान करने वाला मिलता है। यह हमारे मस्तिष्क की सारी गतिविधियों को त्याग करके हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो मैंने कई बार आपको प्राणायाम करवाए हैं और बताए हैं कि सबसे पहला प्राणायाम प्रणो प्राणायाम होता है, जो कि हमारी सारी आंतरिक शक्तियों को उजागर कर देता है और मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल को भी शांत करके एकाग्र चित्त बना देता है। प्रणो प्राणायाम हमारे जीवन के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि हम रोजमर्रा की लाइफ में, हम अपने डेली रूटीन में पानी का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा कि यदि जब हमारा कोई व्रत उपवास होता है और हमें पानी नहीं पीना होता है तो हमारी शाम तक रात तक जो दशा होती है, बिल्कुल मुंह सूख सा जाता है, शरीर में कंपन सी होने लगती है, बहुत सारी कमजोरी महसूस होने लगती है, अंदर में ये लगता है कि अब हम धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं। ठीक वैसे ही प्रणो प्राणायाम जब आप इसे नियमित रूप से करने लगेंगे और जब आप इसे बीच में लगेगा आपको कि चलो बहुत टाइम हमने कर लिया है, अब हमें विश्राम देना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए, जब आप नियमित रूप से इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको एक आदत सी हो जाएगी। जैसे बाकी कामों को करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, हम नित सवेरे उठते हैं, हम उठ करके मुंह को धुलते हैं, शौच जाते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, तो हमें ये सब कोई कहता नहीं है या हम लोगों से कोई करवाता नहीं है कि आपको उठ करके ये जरूरी करना है। वह हमारी आदत में आ जाता है, वह हमारी रोजमर्रा की एक प्रकृति में सम्मिलित हो जाता है जो कि हमें ये सारी चीजें करनी ही करनी है। प्राणायाम और योग को भी हम इसी तरीके से अपने आप में सम्मिलित कर लें ताकि हमें रोज डेली रूटीन में ये इस तरीके से शामिल हो जाए जैसे हम कोई रूटीन का कार्य बिना पूछे बिना सोचे विचारे हम करते हैं। प्रणो प्राणायाम भी कुछ ऐसा ही है। मॉर्निंग में उठ करके जब हम एकाग्रचित होकर के बैठते हैं, बाकी के कामों को और एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद है। आप सभी श्रोतागण जो कि हमारा यह योग का प्रोग्राम सुनते हैं और साथ साथ में करते हैं, उन सभी से अनुरोध है कि आप नित प्रतिदिन सवेरे उठकर जो योग का प्राणायाम और हमारे आसनों को आप सुन करके करते हैं, सबसे पहले प्रणो प्राणायाम को अपनाएं। प्रणो प्राणायाम हमने आपको कई बार इसकी विधि भी बताई है और इसके लाभ भी बताए हैं। हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि प्रणो प्राणायाम हम करते कैसे हैं। हम किसी भी स्थान पर यानी स्वच्छ स्थान पर मैट बिछा के बैठेंगे, योगा मैट। अगर
हमारे पास योगा मैट नहीं है तो हम कोई भी साफ चादर बिछा लें, या कोई भी, अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो एक पतला वाला जो कंबल आता है हम वो भी बिछा के बैठ सकते हैं। और पद्मासन की स्थिति में जब हम बैठ जाएंगे तो आराम से बिल्कुल अपनी श्वास को मध्यम गति में और अपने चेहरे पे इस तरीके का एक मधुर सी मुस्कान हो, जैसे लगे कि हाँ हम एक प्रकृति के साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। एकाग्रचित होकर के पहली उंगली की मुद्रा अपनाते हुए सीधे हमें बैठ जाना है, यानी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके। तत्पश्चात आंखें बंद करके हम ओम का उच्चारण 5 बार करेंगे। ओम का उच्चारण 5 बार करने के बाद में हम बिल्कुल शांत चित होकर बैठ जाएंगे। शांत चित होकर के बैठने का उद्देश्य केवल मात्र ये नहीं है कि हम बाहरी दुनिया से अलग हटके बैठ रहे हैं, जबकि ये है कि हमें अंदर की दुनिया में जाकर के खुद को जागृत करना होता है। हम 1 घंटा अगर नित प्रतिदिन योग को देते हैं तो बाकी के 23 घंटे हमारे बहुत ही स्वस्थ और शांति पूर्वक बीतते हैं। तो प्रणो प्राणायाम के लाभ तो ये हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम, जो कि हमारा मुख्य प्राणायामों में से एक है। इसके नियमित अभ्यास से स्ट्रेस दूर होता है, तनाव जिसे बहुत रहता है वो दूर होता है, साथ ही साथ आपका मन शांत होता है। अनुलोम विलोम हार्ट ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ हार्ट ब्लॉकेज के होने के बाद की समस्याओं को भी कम करता है। अनुलोम विलोम के बारे में हम जितना भी कहें बहुत ही कम है, क्योंकि अनुलोम विलोम से श्वास से निर्मित और हमारे नाक और कान से, गले से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं वह सब इससे ठीक होती हैं। प्राणायाम के फायदे कौन से हैं, आइए हम आप उसको बताते हैं। हमारे प्राणायाम परिणाम स्वरूप अभ्यास के कई मनोवैज्ञानिक लाभों का भी संकेत देते हैं, जिसमें कैंसर रोगियों के साथ साथ हृदय रोग के रोगियों में भावात्मक प्रतिक्रियाओं में सुधार, थकान, कमजोरी, तनाव और चिंता को कम शामिल करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सभी आसनों का जो राजा है वह कौन है? सभी आसनों का राजा जो कि कहा जाता है वो शीर्षासन। आइए हम शीर्षासन के बारे में जानते हैं। शीर्षासन का नाम शीर्ष शब्द पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है सिर। शीर्षासन को सब आसनों का राजा माना जाता है। इसे करना शुरुआत में बहुत अधिक कठिन लगता है, लेकिन इसके लाभ जो हैं वह बहुत ही अत्यंत लाभप्रद हैं। आइए हम आपको इसके फायदे बता देते हैं। शीर्षासन करने से पहले यह आसन जरूर करना चाहिए, जैसे करने का तरीका, आसन और इसके फायदे बहुत ही आसान से हो जाते हैं। हर आसन की तरह शीर्षासन के भी कई लाभ होते हैं, जिसमें से हम आज आपको कुछ मुख्य बताएंगे। दिमाग को शांत करता है, तनाव और हल्के अवसाद से राहत देने में यह मदद करता है। शीर्षासन जो कि एक पिनल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, हाथों, टांगों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। शीर्षासन फेफड़ों की कार्य कुशलता बढ़ाता है। शीर्षासन से पाचन अंगों पर सकारात्मक असर होता है, जिससे कब्ज में राहत मिलती है। रजोनिवृत्ति के लक्षणों में राहत देता है शीर्षासन। अस्थमा, बांझपन, अनिद्रा, साइन की जितनी भी चिकित्सकियां हैं इसे जरूर से करें। यह कैसे होता है, आइए हम आपको इसका तरीका बता देते हैं। शीर्षासन का करने का तरीका हम आपको आज बहुत ही अच्छे से और विस्तार से बताने वाले हैं। शीर्षासन करने के लिए अपनी योगा मैट या जमीन पर कंबल या कोई मोटा तौलिया बिछाकर वज्रासन में बैठ जाएं। बाद में इस पर आपको अपना सिर टिकाना है, तो यह आपके लिए सिर को एक नरम पैड देगा। अब आगे झुककर दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में सख्ती से जोड़कर रखें, ताकि आपका सर हिले ना, और आपके सर के बीच में रख करके उसे सहारा मिले। अब सिर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें, श्वास सामान्य रखें, पैर की उंगलियों पर ऊपर आ जाएं। आपका शरीर त्रिकोण मुद्रा में होगा। शरीर से आयोज की तरफ पारों को लेकर आए और आपकी पीठ एकदम सीधी हो जाए। जमीन और आपकी पीठ में लगभग 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जब पीठ एकदम सीधी हो जाए तो धीरे धीरे शरीर का पूरा वजन बाजुओं पर, यानी कि फोरआर्म्स पर डालते हुए
शरीर को ऊपर की ओर उठा लें। पहले टांगों को सिर्फ आधा उठाएं ताकि आपके घुटने छाती को छू रहे हों और पैर मुड़े हों। इस मुद्रा में 1-2 मिनट रहना या अभ्यास करें और फिर अगले स्टेप में जाएं। जब आप पहले स्टेप में निपुण हो जाएं, फिर दोनों टांगों को सीधा ऊपर उठाने की ही कोशिश करें। कोशिश करें कि कम से कम भार सिर पर लें, शरीर को सीधा कर लें और यह कम से कम 30 सेकंड तक ही आपको पहले दिन करना है। शीर्षासन वैसे तो बहुत ही सरल और बहुत ही लाभप्रद है, लेकिन इसको करने की एक टेक्निक से अगर आप करेंगे, अगर आप 1-by-1 स्टेप से करेंगे तो ही आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रारंभिक दिनों में जब आप शीर्षासन करेंगे तो थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी। तो हम आज आपको बताएंगे कि आपको शुरुआती दिनों में शीर्षासन कैसे करना है। जैसा कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई योगा मैट या पतला सा कंबल या एक टॉवल आप ले सकते हैं अपने सिर के बल नीचे, सिर के नीचे रखने के लिए। उसी के साथ साथ आपको एक दीवाल का भी साथ लेना है, यानी कि आप दीवाल की सहायता से कोई ऐसी आप दीवाल ले जहाँ पे उसके सहारे आपको थोड़ा थोड़ा पैर ऊपर करके बिल्कुल सीधे हो जाए। जब आपको लगे, यानी आपको एक हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा ही पैर उठा करके इसका अभ्यास करना है, जब आपको लगे कि आपके घुटने और पैर बिल्कुल सीधे हो रहे हैं, तब आपको दीवाल का सहारा नहीं लेना है। और इसके लाभ हमने आपको बता ही दिए हैं कि यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये था दोस्तों आज का शीर्षासन। जैसे हम योग प्राणायाम करते हैं, यह आसन भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे योग की योग पाठशाला में आकर के आज शीर्षासन का जो लाभ है और तरीका आपने सुना और आप इसे नित प्रतिदिन करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। हेलो दोस्तों, योग की पाठशाला में मैं योगा एक्सपर्ट समता फिर से आपके सामने रूबरू होने आई हूँ। तो आइए हम बात करते हैं आज एक नए प्राणायाम के बारे में, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यह कैसे करते हैं और इसके लाभ, विधि और इससे होने वाली असावधानियां, हम सबके बारे में आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राणायाम जीवन का एक रहस्य है। ये जीवन श्वासों की आवागमन पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है, ये तो सभी को पता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से रोग और शोक दोनों उत्पन्न होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रदूषण भरे माहौल से हमें होने वाली चिंता, यह दिन ब दिन सताई जा रही है कि प्रदूषण हो रहा है, जिसका मेन कारण है वातावरण में हमें पेड़ पौधों की कमी बहुत मिल रही है, जिसके कारण से हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्रदूषण भरे माहौल और चिंता से हमारे श्वासों की गति अपना स्वाभाविक रूप यूं ही खोही देती है, जिसके कारण प्राणवायु संकट काल में हमारा साथ नहीं दे पाती। ऐसे में प्राणायाम को सीख कर अपने जीवन का एक अंग बनाए, क्यों ना हम अंग ही बनाए और हम उसे अपने जीवन में इस तरह घोल दें, जिस तरीके से हम सुबह अपनी नित्य क्रियाएं जिस तरीके से करते हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपनी नित्य क्रियाएं करने के बाद में हमें लंच हो चाहिए, हमें चाय की तलब होती है, हमें न्यूज़पेपर चाहिए और हमें भागम भागी हमें अपना जॉब भी चाहिए। फिर शाम को थके हारे आकर के हमें डिनर भी चाहिए और थोड़े बहुत टीवी में अपनी न्यूज़ देखते हुए आराम से एक चैन भरी नींद चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमने प्राणायाम की जगह पर वो तो खाली रह गई, वो तो हमने उसको पूरा किया ही नहीं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि प्राणायाम को किस जगह पर हमें अपने जीवन में फिट करना है। सबसे पहले दोस्तों, हम ये जान लें कि सुबह उठते ही जब हम अपनी नित्य क्रिया करने के बाद प्रदूषण भरे माहौल को, जैसे आज जब हम किसी एक मेट्रो सिटी में अगर हम रह रहे हैं तो हमें आजकल जैसे सर्दियां आ गई हैं तो हमें ये फॉग और ये धुआं हमेशा से, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियां हो, हमेशा से हमें ये मिलता, दूर दूर से ही हमें प्रतीत होने लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले जब हम अगर प्राणायाम को अपनी जीवन शैली में लाएंगे तो हमें दिन ब दिन उसका लाभ और उसकी उसके होने वाली विशेषताएं दिन ब दिन हमारे शरीर में और हमारे जीवन में पूर्णता आने लगेगी। सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के बाद ही
किसी दूसरे प्राणायाम करना चाहिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है। तो आइए जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम हमें कैसे करना है और उनके लाभ। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ ही है धौंकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धौंकनी की तरह आवाज करते हुए वेग पूर्वक शुद्ध प्राण वायु को अंदर ले जाना और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकना। जैसे एक लोहार होता है दोस्तों, जिस तरीके से लोहार अपना काम करता है, उसे एक धौंकनी, जैसे अगर वो किसी भी चीज को बनाता है तो धौंकनी से अपने हथियार से एक लोहे पर वार करता है तो वो आवाज आती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमें वायु को हमें अपने अंदर की श्वास को बाहर की ओर फेंकना और बाहर से हमें अंदर की ओर श्वास को ले जाना। तो आइए दोस्तों, मैं बात करती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम की विधि। जैसा कि मैंने हमेशा से बताया हुआ है, कोई भी प्राणायाम हो वो सिंहासन, सुखासन, ध्यान मुद्रा में बैठकर ही करना चाहिए। सबसे पहले कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर और मन को स्थित रखें, आंखें बंद कर दें, फिर तेज गति से श्वास लें, जैसा कि मैंने बताया अभी, तेज गति से श्वास लें और तेज गति से ही श्वास को बाहर निकालें। श्वास लेते समय पेट को फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट को पिचकाना चाहिए, इससे नाभि स्थल पर दबाव पड़ता है। इस प्राणायाम को करते समय श्वास की गति सबसे पहले धीरे रखें, अर्थात 2 सेकंड में एक श्वास भरना। दोस्तों इस बात की जानकारी आपको पूर्णता लेनी पड़ेगी कि हमें कितने सेकंड में, कितने मिनट में एक प्राणायाम करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों 2 सेकंड में एक श्वास भरना है और फिर श्वास को छोड़ना है, फिर मध्यम गति से श्वास भरें और छोड़ें, अर्थात 1 सेकंड में एक श्वास भरना और श्वास को छोड़ना, फिर श्वास की गति तेज कर दें, अर्थात 1 सेकंड में 2 बार श्वास भरना और श्वास निकालना। श्वास लेते समय और छोड़ते समय एक ही गति बनाकर रखें, कुछ इस तरह। वापस सामान्य अवस्था में आने के लिए श्वास की गति धीरे धीरे कम करते जाएं और अंत में एक गहरी श्वास लेकर फिर श्वास निकालते हुए पूरे शरीर को ढीला कर दें। एक बार में श्वास छोड़ें और ढीला। यह प्राणायाम कुछ कुछ कपालभाति की तरह होता है। आइए जानते हैं इनके लाभ। इस प्राणायाम से शरीर को प्राण वायु अधिक मात्रा में मिलती है। जैसे प्राण वायु, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, श्वास, ऑक्सीजन, जिनको भी लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की, जैसे हम पूर्णतः श्वास नहीं ले पाते हैं, लगता है कि हम किस तरीके से हम श्वास ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो हमें यह भस्त्रिका प्राणायाम निरंतर रूप से करने से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इससे हमको निजात मिलती है। यह प्राणायाम शरीर को ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा पूर्ण करता है, जिसके कारण शरीर के सभी अंगों से दूषित पदार्थों को दूर करता है। तेज गति से श्वास लेने और छोड़ने के इस क्रम में हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हृदय में रक्त नलियों को शुद्ध व मजबूत बनाए रखता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमारा डायाफ्राम तेजी से काम करता है, जिसमें पेट के अंग मजबूत होकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमारी पाचन शक्ति तो मजबूत बनती ही है। तो दोस्तों आपने जाना कि भस्त्रिका प्राणायाम हमें किस तरह करना चाहिए,
किस गति में करना चाहिए, कितने सेकंड में करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए और इनसे होने वाले लाभ। दोस्तों जान लेते हैं इनकी सावधानियां। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्राणायाम महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पे नहीं करना चाहिए और गर्भावस्था की स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हर्निया, दमा, टीबी, अल्सर, पथरी, मिर्गी, स्ट्रोक से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये अभ्यास ना करें। अभ्यास को करने से पहले हम आधा सेकंड, एक सेकंड हम अपने आप को पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम प्राणायाम करेंगे। फेफड़े, गला, हृदय या पेट में किसी प्रकार की समस्या हो, नाक बंद हो या साइनस की समस्या हो तो भी, या किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही यह प्राणायाम करें। अभ्यास करते समय अगर चक्कर आने लगे, घबराहट हो, ज़्यादा पसीना आने लगे, उल्टी जैसा मन में प्रतीत होने लगे तो यह प्राणायाम रोककर पूर्ण रूप से आराम करें, लेट जाएं, उसके बाद ही हम प्राणायाम करें। नए अभ्यर्थी, जैसे जो लोग ने अभी अभी नया शुरू किया है प्राणायाम, तो मैंने पहले भी दोस्तों बताया हुआ है कि प्राणायाम करने से एक आधा सेकेंड, 30 सेकेंड ही पहले स्टार्टिंग में करें और एक बैग से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट प्राणायाम ना करें। यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो रुक करके आराम कर लें, लेट लें और फिर से आप शुरू कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी शुरू में कम से कम 10 बार श्वास छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं। जिनको तेज श्वास लेने में परेशानी हो या कुछ समस्या आती हो तो आरंभ में श्वास धीरे धीरे लें। ध्यान रहे दोस्तों, यह प्राणायाम दोनों नासिका छिद्रों के साथ उत्पन्न होता है और साथ में संपन्न होता है। श्वास लेने और छोड़ने को एक चक्र माना जाएगा जो एक बार में लगभग 20 चक्र के बराबर होता है। जब यह 20 चक्र, 25 चक्र होने लगे तो यह प्राणायाम पूर्ण होगा। पूरा प्राणायाम करने के बाद श्वास की गति को पुनः सामान्य करने के लिए अनुलोम विलोम या आंतरिक और बाहरी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल प्राणायाम करने के लिए हमें 2 से 3 बार या 5 बार कपालभाति मध्यम गति से करते हुए तीव्र गति तक करके यह प्राणायाम पूर्ति करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्राणायाम पूर्ति पर दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करके चेहरे व आंख पर लगाएं और उसके बाद धीरे से आंखें खोलने के बाद में ओम का उच्चारण मध्यम गति से

तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम का चक्र पूरा हुआ। फिर हम मिलेंगे अपने नए एक प्राणायाम की ओर अपनी योगशाला और अपनी योग पाठशाला में। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समता, योगिनी समता, योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स के बारे में बात करने आई हूं, जो कि हमारी बॉडी में तो होते हैं पर हमें उनका सही उपयोग और सही मापदंड नहीं पता होता है। सही मापदंड और सही संतुलित अपने शरीर को करने के लिए कई ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसे अगर हम सही पावर पॉइंट का यूज करें, प्रेशर पॉइंट का यूज करें, तो हम घर बैठे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। प्रेशर पॉइंट शरीर के वे ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे स्थान होते हैं जहां नसें, रक्त वाहिकाएं और मांसपेशियां एक दूसरे से मिलती हैं। इन बिंदुओं पर हल्का सा भी अगर दबाव डालने से शरीर में ऊर्जा का प्रभाव संतुलित होता है और दर्द या तनाव में भी राहत मिलता है, जिसको हम एक्वा प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम एक्वा प्रेशर के पास जाते तो हैं, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते तो हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीजें हम घर में यूज तो करते हैं, लेकिन ऐसी मसाज थेरेपी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसका सही इस्तेमाल न करने से हमें दर्द की बजाय, दर्द ठीक होने की बजाय दर्द और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये जानना जरूरी होता है कि कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट जो कि काम कैसे करते हैं, कैसे दबाव डालते हैं हमारी मांसपेशियों पर, रक्त वाहिकाओं पर और हमारी एक दूसरे की मांसपेशियों यानी कि मांसपेशियों की बिंदुओं पर। तो आइए आज हम बात करते हैं कि प्रेशर पॉइंट कैसे काम करते हैं। जब किसी प्रेशर पॉइंट पर दबाव डाला जाता है

0: कार्तिक, अब हमने चोर को पकड़ लिया।
1: चलो चलो
0: चलो भागो जल्दी। गाना बनना है ना स्कूल में।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानी भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

Good morning, गोंडा। अंजी घड़ी में वक्त हो चला है 9:05 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। आपके साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त आपकी आर्जुनती, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपके मॉर्निंग शो की स्पेशल वाली आरजे जो आपके लिए लेकर आई है आज का आपका मॉर्निंग वाला स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा। तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम गुड मॉर्निंग गोंडा में और सुबह की पहली किरण चाहेगी पहले चुस्की और आपकी अपने रेडियो का पहला सलाम आपको भेज रही हूँ। आज जो अगेन एक नई सुबह आ चुकी है नए जोश के साथ नई कहानियां आपका स्वागत कर रही हैं। तो भाई अगर जो अभी तक नहीं उठे हैं, जो अभी भी बिस्तर के आगोश में हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगी फिलहाल के लिए उठ जाइए और अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा आप कर लीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा और आपकी आज उन्नति आ चुकी है आपके लिए लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें। फिलहाल इंजॉय करते रहिए इस खूबसूरत से गीत को। हम मिलते हैं इस गीत के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

गुड मॉर्निंग गोंजा, जबरदस्त गाने के बाद आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने वाले कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गोंजा में। मैं हूं आपकी आर्चुनती, आपकी मॉर्निंग की रेडियो चौकी, आपके साथ मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोंजा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। वक्त हो चला है आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ चलने का, क्योंकि आज घर से निकलते वक्त एक बहुत अच्छी खासी भीड़ का नज़ारा देखकर आए हैं और वहीं पर सुबह सुबह एक बहुत बढ़िया ख्याल आया जो होने वाला है आज का हमारा थॉट ऑफ द डे। तो क्या है बताते हैं,

हाँ जी, तो भैया आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो कुछ इस तरह से है कि सबके बीच में अकेला रहकर महसूस होता है कि मन को भी साथ चाहिए, सिर्फ लोग नहीं। वाह, कितनी गहरी बात कह देते हैं हम। आइए बता देते भाई इस थॉट ऑफ द डे का मतलब क्या है। भाई आज के दौर में हमारे पास हजारों सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, पार्टी में लोग हैं, ऑफिस में कलीग्स हैं और इवन बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन जो नहीं है वो नहीं है हमारे मन के साथ रहने वाला कोई दोस्त। पर कभी कभी हमें ऐसा फील होता है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम अकेले हैं। उनके बीच में खड़े होकर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है, खालीपन महसूस होता रहता है क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ जिस्म होते हैं, यानी कि सिर्फ फिजिकली लोग प्रेजेंट होते हैं, आपके साथ लोग नहीं होते। फिजिकली होते हैं, उनके चेहरे होते हैं, पर जज्बात समझने वाला उस वक्त आपके पास कोई नहीं होता। और मन को हमेशा एक साथी की तलाश होती है, मतलब कि एक ऐसी ट्यूनिंग, एक ऐसा कनेक्शन जहां आप खुद को प्रूफ ना करना पड़े, जहां आपकी खामोशी को बिना कुछ कहे सुना जा सके, जहां आपकी आंखें बोले और इंसान समझ जाए कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो अगर वो खामोशी समझने वाला जब तक आपके पास कोई नहीं होता है तो आप भरी भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। चाहे कितने ही सोशल मीडिया फ्रेंड्स क्यों ना बना ले, चाहे हम क्यों ना कह दें कि हमारे सोशल मीडिया पे 1000 या 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जब भी हम कहीं अकेले होते हैं या फिर कहें कुछ ऐसी जगह ज़रूर होती है जहां पर हमें लगता है कि काश काश हमारे पास भी कोई होता, और वहीं हमें महसूस होता है एक अजीब सा खालीपन। शायद अक्सर ये रातों को होता है, जब आप रात में बैठते हैं अकेले तो आपको लगता है कि दिन भर तो पूरी दुनिया चल रही थी, अब जब वक्त ठहर चुका है तो मेरे साथ कोई नहीं है। जी हाँ, क्योंकि भाई उस वक्त आपके मन को तलाश होती है एक ऐसे इंसान की जिसके साथ आपके वाइब, आपका कनेक्शन और आप वो चीज़ फील कर सकें जो अभी तक आपने किसी के साथ नहीं किया है। और आजकल ये बहुत बड़ा सच होता जा रहा है कि लोग भीड़ में तो रहते हैं लेकिन भीड़ में रहकर भी अकेले रहते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे जो बहुत क्लियर, बहुत साफ है कि कभी कभी सबके बीच में अकेला रहकर महसूस होता है कि मन को कभी साथ की जरूरत है, और ऑफ कोर्स है कि हमारे मन को भी किसी ना किसी की जरूरत होती है। तो भाई चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों की गिनती मत बढ़ाइए बल्कि रिश्तों की गहराइयां बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा खास इंसान है जिसे आप अपने दिन की, अपने दिल की हर एक बात कह देते हैं, तो उस इंसान को जाकर बोल दीजिए और बिना डरे, प्लस उसे ये बता दीजिए कि आप उस पर कितना भरोसा करते हैं। चलिए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं और आपको सुनाते हैं बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन सा गीत, बहुत ही बेहतरीन सा सॉन्ग। सॉन्ग का नेम है पहली बार है, फ्रॉम धड़क फिल्म। एंजॉय करते रहिए। आज का थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस गाने के उस बार आते हैं आपके चैट बॉक्स के मैसेजेस को लेने के लिए, क्योंकि हमें जो लिसनर्स एप्लीकेशन से सुन रहे हैं उनके कुछ चंद पैगामात हमारे चैट बॉक्स में आ चुके हैं। स्टे ट्यून्ड।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोना में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानोस 89.6 एफएम। यह है गोना शहर की धड़कन पर अपनी मॉर्निंग रेडियो चौकी के साथ और आपके कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गोना में। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे चैट बॉक्स में, क्योंकि हमारे लिसनर्स के आ चुके हैं बहुत सारे या फिर कहें तो कुछ मैसेजेस, और उन मैसेजेस को देखने के बाद मेरा दिल भी धड़क रहा है जैसे कि लिसनर्स ने हमें भेज रखे हैं। हाँ, टेमोजीज इन चैट बॉक्स। ओके, तो धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने पहली किरण सुनने वालों को नमस्कार कहा था। जी नमस्कार आपको भी, एंड इसके बाद गुड मॉर्निंग आया था, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत सारे इमोजीज आए थे, थैंक यू सो मच। रिंकू जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू, और इसके बाद उन्होंने किया है थोड़ा बहुत डांस और डांस करके वो गए हैं थक, इसके लिए उन्होंने भेजे हैं बाद में बहुत सारे इमोजीज, थैंक यू सो मच। और आज सब सो रहे हैं, बहुत बढ़िया गाना है, मेरा फेवरेट, और ये लाइन भी लिखी जा चुकी है। इसके बाद लिखा है रिंकू जी ने कि मेरा भी फेवरेट है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। ये गाना हम 2020 में बहुत सुनते थे। वेल, मुझे याद है दर्शन रावल का तेरा जिक्र गाना उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और हर कोई इस गाने के पीछे दीवाना था। स्पेशली दर्शन रावल के कुछ शोज़ भी आया करते थे, राइट? जी हाँ। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले मैसेजेस की तरफ, और हमारे साथ जुड़े हैं भाई अंश जी, और अंश जी क्या कुछ लिख रहे हैं हम आपको बताते हैं। और ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल इंटरनेट हो चुका है बहुत ज़्यादा स्लो, इंटरनेट के चलते न जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो अब छूट जाती हैं, और वो जो कि अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इंटरनेट नहीं होता तो कई बार आप लोग घर जाकर काम करते हैं ना। बेशक अब 90s वाले तो खुश हो जाते हैं कि हमारे ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था, तो आज के ज़माने में भी ना हो तो कितना मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, अंशु जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप। अंश जी आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानोस 89.6 एफएम। साथ ही उन्होंने लिखा है, ज़रूरी नहीं हमें डांटने वाला हमसे नाराज़ ही हो, क्योंकि डांटने का हक सिर्फ प्यार करने वाले को ही होता है। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत बात कह दी है आपने, और हम आपको बता दें आपकी ये छोटी सी लाइन न जाने कितने रिश्तों को बचा सकती है, जो ये बात समझते हैं कि अगर आपको कोई डांटता है तो हर वक्त वो आपसे नाराज़ नहीं होता, हर वक्त आपसे परेशान नहीं होता, कई बार वो आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं और इसके कारण से वो आपको डांटते हैं, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके पार्टनर हों, या फिर आपका दोस्त हो। हालांकि हमें उस वक्त उनकी बोली थोड़ी ज़्यादा कड़वी लगती है, लगता है नीम घोल के किसी ने पिला दिया हो, लेकिन कड़वी चीज़ें अक्सर अच्छी होती हैं। तो भाई ये मैसेजेस आ चुके थे चैट बॉक्स में हमारे लिए। फिलहाल आइए चलते हैं छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आप ही के पास होना चाहिए। आपने कभी शहद ट्राई किया? ऑफ कोर्स किया ही होगा, कभी ना कभी तो आपने शहद ज़रूर ट्राई किया होगा, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि शहद कितने तरीके का होता है, और क्या आपने कभी सफ़ेद रंग का शहद खाया है? अगर खाया है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं तो आज हम आपको बताने वाले भाई जिस हनी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं मार्केट से लाकर और सोच रहे हैं ये गोल्डन गोल्डन सा हनी ही सब कुछ होता है, तो क्या वो सच है, या फिर इसके अलावा भी आज हमारी पोट्री में आपके लिए कुछ है। फिलहाल एंजॉय करते रहिए इस खूबसूरत से नगमे को, मिलते हैं सुनाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

हंजी तो आप सुन रहे हैं मोहब्बतें से आंखें खुली हैं या है बंद। हम आपको बता दिए गाना चाइना में बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग है और हर कोई इसको गुनगुनाता दिखता है। फिलहाल हम आपको चाइना लेके नहीं चलेंगे, हम आपको भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों में आज घुमाने वाले हैं, क्योंकि भैया आज हमारे पास एक ऐसी न्यूज़ जिसको आपको जानकर आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। आज हमने पूछा भी था कि आपने शहद कितनी बार ट्राई किया है और क्या आपने कभी सफ़ेद शहद ट्राई किया है, कि आपको पता है कि शहद कितनी तरह का होता है। तो हमारे कमल नयन जी ने हमें जवाब भी दिया है कि 300 से ज़्यादा होता है। जी हाँ, बेशक आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि भाई अगर शहद की बात करें तो 300 से ज़्यादा शहद के टाइप्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और एक तरह का आपको मार्केट में असल में देखने को मिलता है, जो आपको हर वक्त नज़र आता है, थोड़ा सा गोल्डन, थोड़ा सा रेड, और आपको लगता है कि भाई यही होता है रियल हनी। रियल हनी को टेस्ट करने के लिए आप उसे पानी में घुमाकर देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, ना जाने क्या क्या देखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वही एक शहद है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 300 से ज़्यादा शहद में कुछ ऐसे भी रंग आते हैं जो हमारे भारत के लोग उसको पहचानते ही नहीं है और उसको देखने के बाद कहते हैं कि भाई ये तो नकली हनी है। और वही शहद भारत से एक्सपोर्ट होकर जब अमेरिका और बाकी देशों में जाता है तो बहुत ही महंगी कीमत पर, प्लस उसको बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत में बेचा जाता है। लोग उसको ख़रीदते हैं, खाते हैं, अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं और इस बात का पता भारतीयों को है ही नहीं। तो भाई वो शहद कौन सा है? शहद है सफ़ेद शहद, यानी कि सफ़ेद रंग का हनी। आपने कभी सुना था? जी नहीं। तो आइए बताते हैं वो 8 तरह के शहद जो आपके लिए बड़े काम के हैं और आपको उनके बारे में अभी तक नहीं पता है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोरा, मैं हूं आपकी आरजी उन्नति। और

है बहुत ज्यादा शहद हमें देखने को मिलता है। कम से कम 20 लाख फूलों का दौरा किया जाता है और 55,000 मील की उड़ान भरनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ शहद को बनाने के लिए। और एक चम्मच शहद हम यूं उठाकर खा जाते हैं, पानी में मिला के खा जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि शहद के पीछे कितनी मेहनत है। और उनके इस कोशिश की जो नतीजे होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बड़े बढ़िया होते हैं, बट हमें ही नहीं पता होता कि हम जो शहद इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीनी का बना हुआ है, उसमें रंग है या फिर वो टोटली प्योर है। अब भाई मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक साइकिल पर अंकल आया करते थे जो शहद बेचते थे और शहद के अंदर हमें बड़ा शौक था उस शहद को लेकर के यूं ही खाने का। हालांकि बड़े होते जा रहे हैं और अब पैकेट या फिर डिब्बे वाले शहद को देखते हैं तो उतना मजा नहीं आता। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे शहद के टाइप्स की जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता है। सबसे पहले आती है चिछारी शहद, चिछारी शहद। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन हम आपको बता दें ये बोरेज शहद के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालयन क्षेत्रों में ज्यादातर मिलता है। इसका रंग हल्का सुनहरा लगभग पारदर्शी होता है, यानी कि इसके आप आर पार देख सकते हैं और इसका रंग थोड़ा सा सुनहरा होता है। हम आपको बता दें ये इसकी कीमत की अगर बात करें तो 760 से लेकर ये 1,500 तक के करीब में मिलता है, सिर्फ 250 या फिर 500 ग्राम शहद। इस शहद के दुर्बल होने का कारण सिर्फ इतना है कि इसका रंग बहुत ज्यादा हल्का होता है, ये पारदर्शी होता है और ताजा फूलों से बनता है। मधुमक्खियां इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, मैंने आपको बताया भाई 55,000 मील की उड़ान वो भर रही हैं और उसके बाद न जाने कितने लाखों फूलों का दौरा कर आपके लिए वो एक प्यारा सा शहद लेकर आती है। और इस तरह के शहद जो हमारे आम मार्केट में नहीं मिलते हैं उनकी कीमत ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाती है, प्लस अगर वो ऑर्गेनिक होते हैं तो उनकी कीमत मार्केट में और भी कई गुना बढ़ जाती है। तो चाहे तो आप शहद का व्यापार भी कर सकते हैं, यानी कि घर में बैठकर भी शहद बना सकते हैं क्योंकि शहद का भी व्यापार होता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं दूसरे तरीका शहद, वो भी हिमालय से ही आता है, नाम है बेरी हनी। हिमालय में उगने वाली विभिन्न प्रकार की जंगली बेरीज को इकट्ठा करने के बाद मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाने वाला जो शहद है उसका नाम होता है बेरी हनी। ये शहद मीठा और बिल्कुल फल जैसा स्वाद देता है। इसे कई लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि खाने के बाद ये शहद की तरह कम फलों की तरह ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें जो रस का इस्तेमाल होता है वो बेरीज का होता है, यानी कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और जितने भी इस तरह के बेरी आप देखते हैं, मलबेरी, रसबेरी, इन तरह की जंगली बेरीज का इस्तेमाल किया जाता है। और बेरीज खट्टी मीठी होती है जिसकी वजह से इसका स्वाद मीठा प्लस फ्रूट जैसा होता है, यानी कि फल जैसा होता है। रंग इसका हल्का एम्बर कलर का होता है, यानी कि हल्का येलोइश गोल्डन होता है। और इसकी कीमत की अगर बात करें तो 270 ग्राम से 500 ग्राम के लिए आपको 700 रुपये से लेकर के 1,090 रुपये तक भरना पड़ सकता है। अब ये मिलेगा कहाँ? अगर आपको इसका ऑर्गेनिक फार्म चाहिए या फिर ऑर्गेनिक ही चाहिए कि बिल्कुल शुद्ध हनी मुझे मिले, तो ये आपको हिमालयन क्षेत्रों के जंगली बेर के पौधे के आसपास मिलेंगे या फिर जो हिमालय क्षेत्रों में रहते हैं अगर आप उनसे संपर्क करते हैं तो हो सकता है ये शहद आपके घर तक आ जाए। आपको बता दें भाई बेरी हनी एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर होता है जो आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान से बचाता है और आपकी सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, और इसीलिए इसकी कीमत मार्केट में ज्यादा है बट आपको देखने को बहुत कम मिलता है। इसी के बाद आता है सफेद रंग का शहद। सफेद रंग का शहद वो शहद होता है जिसका उत्पादन भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है लेकिन इसका इस्तेमाल भारतीय करते ही नहीं है। जब ये मधुमक्खियों के छत्तों से निकाला जाता है तो इसका रंग इस एकदम नॉर्मल शहद की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और इसको कुछ देर बिना छेड़े रख दिया जाता है ये मक्खन की तरह जम जाता है। इसीलिए कई बार लोग इसे बटर हनी, क्रीम हनी भी कह देते हैं। जहां भारत में इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि लोगों को लगता है कि सफेद हनी का मतलब है कि हनी में शुद्धता नहीं है, ये केमिकल द्वारा बनाया गया है। वहीं अमेरिकन्स और बाकी देश के लोग इस हनी का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। हम आपको बता दें ये शहद मेनली सरसों के फूलों से बनता है और सरसों के फूलों का रस लेकर जब मधुमक्खियां आती हैं उसके बाद इस हनी का उत्पादन किया जाता है, यानी कि ये शहद बनता है और इसी कारण इसका रंग सफेद हो जाता है जब ये जम जाता है। तो भाई अगर आपने कभी सफेद रंग का शहद मार्केट में देखा तो ये परेशान मत होइएगा कि ये केमिकल का बना है, हो सकता है वो आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक हो। और हालांकि इसकी कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलती है क्योंकि ये रेयर है। भारत में उत्पाद

0: काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय मार्केट में देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसकी कीमत आपको ज्यादा मिलने वाली है। तो ये वो शहद है जिसके बारे में आपने सुना, और हम आपको बता दें कि लीची का भी शहद बनता है। लीची शहद नाम से जाना जाता है, जिससे लाइची हनी भी कहा जाता है। लीची के पेड़ के फूलों के रस से बनाया जाता है शहद। का रंग हल्का एम्बर या फिर हल्का गहरा सुनहरा हो सकता है। मीठा फूलों जैसा स्वाद और लीची फल की सुगंध से मेल खाता हुआ शहद है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में उत्पादन किया जाता है। हम आपको बता दें, मुख्य रूप से बिहार में आपको ये लीची के बगानों या फिर कहें तो लीची के बागों के आसपास इस तरह की शहद का उत्पादन ज्यादा होता है। भैया, आपके पड़ोसी राज्य में अगर कोई शहद मिल रहा है और आपको पता चल गया है, तो जरूर मंगाइएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि जिस तरह से कहते हैं कि लीची शहद में लीची की खुशबू आती है, आती भी है कि नहीं आती है। फिलहाल ये थी इन्फॉर्मेशन आपको शहद को लेकर के। शहद आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल एक सही क्वांटिटी में करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो शहद भी आपको नुकसान कर सकता है। एक चम्मच काफ़ी होता है अगर आप हर एक चीज़ में बस शहद डालकर खाना पसंद करते हैं। चीनी की जगह पर तो आपको बता दें भाई, चीनी और शहद ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आते हैं। अगर आप मार्केट से पैकेट वाले या फिर बॉटल वाले लेकर आ रहे हैं, जिसका रंग एक्चुअल गोल्डन या फिर ब्राउन होता है, और आप सोच रहे हैं कि अगर ये शहद को डाल के मैं पीऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा या फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि शहद भी फ्रुक्टोज का ही यानी कि शुगर का ही एक फॉर्म होता है, तो जिस तरह से आप चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं, उसी तरह से शहद का भी इस्तेमाल एक लिमिटेड तरह से करें, तभी आपके सेहत में चार चांद लगाएगा। अदरवाइज ये आपको बीमार भी कर सकता है। इवन अगर कई लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट की समस्या से बीमार होते हैं, शहद उनके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का भी काम करता है। और शहद का इस्तेमाल इतिहास में पनिशमेंट देने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि शहद डाइजेशन को बहुत स्मूथ कर देता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा शहद इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको लूज मोशंस आने लगते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए पहले के राज्यों में, यानी कि पहले जब राजा हुआ करते थे, तो बहुत ज़्यादा शहद और दूध पिलाकर वो लोगों को पनिशमेंट देते थे। फिलहाल पनिशमेंट काफ़ी अतरंगी है। आप बताइए आपके क्या ख्याल हैं इसके बारे में, और हम लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी मॉर्निंग रेडियो जॉकी के साथ, जिसका नाम है उन्नति। स्टे ट्यून्ड।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है। कीजिए जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

हां जी भाई, डिंग डांग डांग करते हुए हम वापस आ चुके हैं आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग ओना में। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम मॉर्निंग का स्पेशल शो गुड मॉर्निंग ओना। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। भाई अब तक हमने बात कर ली शहर की, हमने बात कर ली बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम आपको बता दें कि एक इंसान है जिन्हें आपसे कुछ चाहिए, और क्या चाहिए आइए बता देते हैं आपको, वो भी कि आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। यूं तो आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हर कोई परेशान है ये सोच कर कि भाई अगर इसी तरह से तापमान में बढ़ोतरी होती गई, जो कि इनकम में होनी चाहिए, हो कहीं और रही है, तो आगे जाकर क्या होगा। अब भाई लोग तो कह देते हैं कि सर्दियां हमारे यहाँ पहले 6 सीज़न हुआ करते थे, लेकिन अब जो महसूस होता है वो ये है कि सर्दियां ख़त्म होते ही ऐसे तय सूरज देवता ने दोनों हाथ फैलाकर कर दिया हो स्वागत कि आ जाओ भाई गरम गरम भट्टी के अंदर और पॉपकॉर्न बन के अब तुम लोगों को फोड़ दूंगा मैं। इस तरह की अगर आपको भी फीलिंग आ रही है तो भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं भारत में पेड़ लगाने के लिए। अब आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ जाएंगे जो कहते हैं एक लाइक करो मैं पेड़ लगाऊंगा, एक मैसेज करो मैं पेड़ लगाऊंगा। अब ये बात सच है नहीं है, वो पेड़ लगाने के बाद क्या वो पेड़ों को पानी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन एक भाई साहब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं आपसे बीज कलेक्ट करने की। जी हाँ, जो फल आजकल आप गर्मियों में खाने वाले हो, जिसमें आम आ रहा है, लीची आ रहा है, जिसके बीज आप आसानी से इधर उधर फेंक देते हो, जो पेड़ तो बनते हैं लेकिन सही न्यूट्रिशन सही पानी ना मिलने की वजह से वो पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है, मर जाता है या फिर उसे कोई ना कोई खा जाता है। तो भाई ऐसे पौधों को वो बचाना चाह रहे हैं। अब क्योंकि आजकल डेवलपमेंट के नाम पर हमारे सारे पेड़ पौधे सारे जंगल काटे जा रहे हैं, फिर चाहे वो आपके शहर की बात की जाए या फिर पहाड़ों की बात की जाए या फिर बात की जाए अंडमान निकोबार आइसलैंड की, जहां पर सुनने में आया है कि लोग अब डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर मौजूद पेड़ों को भी काटने वाले हैं। अब अगर पेड़ों की संख्या इस तरह से कटती जाएगी तो गर्मी ज़रूर बढ़ती जाएगी। तो भाई वो कौन है चलिए बता देते हैं और उन्हें किस तरह से आपकी मदद चाहिए ये भी हम आप तक पहुंचा देते हैं।

0: हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं उन भाई साहब की जिनका इंस्टाग्राम हैंडल कहता है गिव मी ट्रीज ट्रस्ट, यानी कि मुझे पेड़ों का भरोसा दो। वो आपसे चाहते हैं कि इस गर्मी जब भी आप कोई फल खाएं जिसमें आम, जामुन, लीची या फिर कटहल हो, तो उसके बीज फेंकने की जगह पर उसके बीज उन्हें कुरियर कर दे, क्योंकि आपको नहीं पता आपके द्वारा जो बीज भेजे जाएंगे वो आने वाले भविष्य के पेड़ हो सकते हैं। पेड़ों की अगर बात करें तो बहुत सारे पेड़, बहुत पुराने पुराने पेड़ आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो 108 साल 100 साल तक ज़्यादा हो चुके होते हैं, और इंसानों की खुरापात को देखते हुए बेचारे वो काट दिए जाते हैं, क्योंकि इंसानों को डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट का दूसरा नाम है पेड़ों की कटाई, न जाने क्यों, बट ऐसा होता जा रहा है। जब भी कोई कहता है कि हम सिटीज़ डेवलप करेंगे, हम मॉल्स बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये भूल जाते हैं कि ये मॉल्स हमें सांस नहीं देने वाले हैं। हो सकता है आपका शहर सुंदर दिखे, लेकिन शहर तो तब भी सुंदर दिख सकता है जब आपके शहर के चारों तरफ पौधे हों, पेड़ हों। भाई ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आप डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ नहीं काट रहे हैं, इवन वो उन पेड़ों के बीच से रास्ता बना रहे हैं। दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं और उन्हें पता है कि पेड़ों की ऊंचाई कितनी होगी, और वो पेड़ों को काटने की जगह पर उसके नीचे से रास्ता बना देते हैं, यानी कि जहाँ पर पेड़ नहीं है उस जगह पर रास्ते बनाए जा रहे हैं, या फिर बिना पेड़ों को छेड़े हुए उनकी सीधी सिधाई पर उन्हें खड़ा कर दिया जाता है और उनके बीच में घर बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब पेड़ों को काट नहीं रहे हैं, अगर उनके ज़मीन पर जहाँ पर उन्होंने ज़मीन या प्लॉट खरीदा है वहाँ पेड़ पौधे हैं तो वो उन्हें काटते नहीं हैं, वो उस पेड़ पौधों को अपने घर के अंदर रख कर उसको साइड में छोड़ते हुए एक बढ़िया मकान खड़ा कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीपल के पेड़ को ना काटते हुए उसके चारों तरफ घर बना लिया, और अब वो पीपल का पेड़ उनके घर को अच्छी खासी छांव दे रहा है, उन्हें एसी की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि तापमान अपने आप कम हो रहा है। तो जहां डेवलपमेंट के नाम पर लोग पेड़ काट रहे हैं, वहीं कोशिश करें कि अगर आप पेड़ लगा नहीं पा रहे तो जो फल आप खा रहे हो जिसमें आम आ रहा है, लीची आ रहा है, या फिर आप कटहल ले रहे हो यानी कि जैक फ्रूट जिसे हम कहते हैं, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी बीज है, आपने अभी भी खाया है, क्योंकि गर्मियों में जो भी फल आते हैं उनके बीज काफ़ी बड़े होते हैं और उन्हें हम यूं ही फेंक दिया करते हैं, तो भाई इस बार फेंकने की जगह पर उन्हें अपने पास रखें, धोकर सुखा कर, प्लस एक पॉलिथिन में पैक करके रख लीजिए। जब आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाए तो उसे कुरियर कर दीजिए। कहाँ, आइए वो एड्रेस भी बता देते हैं कि आपको कुरियर करनी कहाँ है। हम आपको बता दें, मोहन नगर नियर राजीव कॉलोनी गाजियाबाद इंडिया, UPSIDC लोनी इंडस्ट्रियल रोड 339 हर्षा कंपाउंड, यहां पर आपको करना है कुरियर। आप एक बार एड्रेस दोबारा से लिख सकते हैं, 339 हर्षा कंपाउंड, UPSIDC लोनी इंडस्ट्रियल रोड मोहन नगर नियर राजीव कॉलोनी गाजियाबाद इंडिया, पिन नंबर है 201007। आप यहाँ पर अपने कलेक्ट करे हुए सीड्स भेज सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बीज भेजने तक की मेहनत करनी होगी और उसके बाद आपके भेजे गए बीज कल के पेड़ ज़रूर बनेंगे, ये वो वादा करते हैं, दावा करते हैं। प्लस अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो हम आपको बता दें भाई, गार्डनिंग का शौक़ काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि जो आपके भारतीय वातावरण को सूट करे उस तरह के पौधे लगाएं। और हम आपको बता दें, भारतीय वातावरण में आपको ऐसे बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे, जैसे फिलहाल के लिए गोल्डन शार नाम का पेड़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आपको पीले फूल देखने को मिलते हैं, हिंदी में से अमलतास कहते हैं। अमलतास, कचनार, ये वो पौधे हैं जो आपके वातावरण के लिए बहुत अच्छे हैं, प्लस जिस तरह से भारत की गर्मी होती है वो उनमें बढ़कर पौधे फूल देते हैं, फल देते हैं, प्लस वो नेक्टर कलेक्ट करने वाले यानी कि मधुमक्खियाँ, भवरे, इन तरह के कीटों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके बाद आपको शहद जैसी चीज मार्केट में मिलती है। तो कोशिश करें कि आप पेड़ बचाना शुरू कर दें, नहीं तो आज जो 48 डिग्री आप मई में परेशान हैं वो 48 डिग्री आगे जाकर 50 या 52 के ऊपर निकलेगी और आप सब पॉपकॉर्न बन जाएंगे। और अगर आप पॉपकॉर्न नहीं बनना चाहते हैं तो पेड़ों को लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास आसपास कोई पेड़ काटता है तो उसे रोकना भी शुरू कर दीजिए कि भैया ऐसा ना करो, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन अपने कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमे, ये अच्छी बात तो नहीं। आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तो देखिए आप अपने ख्याल अपने थॉट्स जरूर बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लस आप क्या सोचते हैं पेड़ों को लेकर कि आपके क्या ख्याल हैं। एंजॉय करते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग होना अपनी रेडियो चौकी नोटी के साथ और ये है रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM आपकी अपने गोना शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: अरे ओ मेरे प्यारे शिष्य सद्गुणी
2: जी गुरुदेव,
1: कबीर का कोई दोहा तो सुनाओ।
2: अभी सुनाता हूँ। कबीर तेरे दुनिया में, कबीर तेरे दुनिया में कैसे कैसे हैं इशू, कोई मांगे कपड़ा लता तो कोई मांगे टिशू टिशू टिशू।

हंस जी और आपके होठ भी यूं ही सिलने वाले हैं। नाजनी के लिए नहीं, कुछ ऐसी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके भी होश उड़ा देंगे। जहां हम यहां वार से परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं, वहीं एक नई चीज़ है जो आउटब्रेक होने जा रही है, यानी कि एक ऐसा वायरस फैलने का डर अब लोगों के बीच में है जो बहुत ज़्यादा गंभीर प्लस जानलेवा है। तो वायरस कौन सा है हम आपको बताते हैं, और कहाँ मिल चुका है, यानी कि दो भारतीयों के शरीर के अंदर ये वायरस दिख चुका है, उन्हें कर दिया गया है क्वारंटाइन। और कमाल की बात ये है कि भाई ये इंसानों से इंसानों में फैलता है और इंसानों को होता है चूहों से। तो ये वायरस का नाम क्या है हम आपको बताते हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, अपनी आज के साथ आपके अपने एफएम रेडियो कैन असली 9.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके मॉर्निंग के स्पेशल वाले प्रोग्राम में।

0: हां जी, तो आपको बता दे भाई, आज एक ऐसे वायरस के बारे में मैंने पढ़ा है जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम है हंता वायरस प्लमरोरी प्लमोनरी सिंड्रोम, यानी कि HPS। इसका संक्रमण आपको बीमार के साथ साथ जानलेवा साबित कर सकता है। ये फैलता कैसे है, अगर इसकी बात करें तो ये वायरस संक्रमित चूहों के यूरिन से, सलाइवा से या फिर फीसिस के संपर्क में आने से फैलता है, यानी कि पेशाब से, लार से और मल से। अगर आप किसी ऐसे चूहे के आसपास रह रहे हैं जो इस यानी कि हंता वायरस से संक्रमित है, तो ये आप में भी हो सकता है। जब लोग चूहों से दूषित बंद जगहों की सफाई करते हैं तो हवा में उड़े बारीक कणों में सांस लेने से ही आपके शरीर में ये वायरस प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, लेकिन डर इस बात का है क्योंकि दो लोग पहले से ही इसके चपेट में आ चुके हैं। एक क्रूज के अंदर उनके अंदर ये वायरस मिला था, यानी कि वो सफर कर रहे थे और उस सफर के अंदर जब टेस्ट हुए, यानी कि उनको जब बुखार, पेट में दर्द और जो सिम्टम्स दिखने वाले थे जब वो दिखे और उनका टेस्ट किया गया, तब समझ में आया कि भाई ये हंता वायरस के सिम्टम्स हैं और उन्हें कर दिया गया है क्वारंटाइन, यानी कि बंद कर दिया। भाई कोविड में आपको याद होगा जब किसी को क्वारंटाइन करते थे तो कैसे किया जाता था। अब अगर आपके आसपास भी चूहे रह रहे हैं तो आप चूहों की शक्ल देख के तो नहीं बता सकते हो कि भाई इस चूहे के अंदर हंता वायरस होगा कि नहीं होगा, क्या बता सकते हो? क्योंकि मैं नहीं बता पा रही आज तक। और चूहे हर जगह मौजूद हैं, चूहों की वजह से न जाने कितने लोगों के घरों में स्मेल तक आती है। चूहे रात में आपके किचन में आते हैं, आपके रूम्स में आते हैं, आपके कपड़ों को काटते हैं और साथ साथ अब आपको बीमार भी कर रहे हैं। अगर किसी ऐसे संक्रमित चूहे के आसपास आप रहते हैं और उसके जाने के बाद या फिर अपने कमरे की सफाई करते हैं और सफाई के दौरान वहां पर फैली गंदगी जब हवा में उड़ती है तो उसके बैक्टीरिया, उसके कण भी आपके सांस के जरिए आपके फेफड़ों में जाते हैं और ये आपको संक्रमित करता है। अगर शुरुआती लक्षण की बात करें तो शुरुआती लक्षण में आपको तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में भयंकर दर्द, खासतौर पर आपकी जांघों में और पीठ, चक्कर आना और उल्टी होना, ये सारी लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। रोग बढ़ने पर फेफड़ों में पानी भर जाता है जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और इसका डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर की बात करें तो इस बीमारी से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर लगभग 36-40% तक रहता है। भारत में सबसे पहले 1964 में देखा गया था और अब ये वापस आ चुका है, यानी कि मिड मई 2026, यानी कि मई के इन्हीं हिस्सों में, यानी कि आजकल के ही हफ्तों के बीच में वैश्विक स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्लस भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय भी एहतियात कदम उठा रहे हैं पर निगरानी बढ़ा चुकी है, यानी कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अब इस बात को लेकर चिंता में है कि अगर ये बीमारी भारत में फैलेगी तो ये काफी बड़ी मात्रा में फैलने वाली है। भारत में हर जगह चूहे आपको नजर आते हैं, फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, होटल्स हो, शॉप हो, घर हो, कहीं ना कहीं आपको चूहों की आबादी जरूर देखने को मिलती है। अगर चूहे संक्रमित हैं तो संक्रमण होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अब एहतियात बरतने की ओर निगरानी बढ़ा चुकी है और बता भी रही हैं कि आपको बचना है। अगर आप कहीं ऐसे रूम में सफाई करने जा रहे हैं जहां चूहे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं तो उस कमरे में जाने से पहले खुद की सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें, अपने मुंह को ढक कर जाएं क्योंकि ये आपके सांस के ज़रिए ही आपके शरीर के अंदर जाता है, तो कोशिश करें कि आप अपनी नाक को और अपने मुंह को ज़रूर ढकें ताकि जब आप सफाई करें तो जो उड़ते हुए कण हैं वो आपके सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों में ना जाए। और अगर आपको लगता है कि आप इससे संक्रमित हैं या आपको कहीं ऐसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं जिसमें चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द होना, तेज़ बुखार आना, तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, देरी ना करें क्योंकि किसी भी बीमारी का 40% मृत्यु दर होना कोई छोटी बात नहीं होती है। फेफड़ों में पानी भरने से सांस लेने में तकलीफ होती है, प्लस आपके ब्लड प्रेशर में भारी गिरावट देखने को मिलता है। तो ये वो बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हाल फिलहाल में ही मेरे हाथ लगी थी। वायरस का नाम है हंता वायरस और ये काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है अगर आप एहतियात नहीं बरतते हैं तो। आई होप आपने इस जानकारी को ध्यान से सुना होगा और अगली बार जब रूम की सफाई करने जाएंगे, चूहा भगाने जाएंगे, तो सबसे पहले आप अपने हाथ पैरों को और अपने मुंह को जरूर ढकेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जिन तक ये बात नहीं पहुंची है उन्हें जरूर अवेयर कीजिए कि भारत में अभी क्या चल रहा है। फिलहाल आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, फिर चलते हैं आपके चैट बॉक्स में आए मैसेजेस की तरफ कि आपने क्या कुछ लिखकर भेज दिया है आपके अपने एप्लीकेशन वाले चैट बॉक्स में। स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

हाँ जी, आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। हाँ, पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर वक्त हो चला है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, क्योंकि जाने से पहले कुछ मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। जो भी हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, फ्रीक्वेंसी से या एप्लीकेशन से, आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। और चैट बॉक्स में मैसेजेस जो आए हैं, कमल नयन जी का मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। मीनू जी जो हमें सुनती हैं गोंडा से ही, उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ओके। कमल जी ने बोला है, तरल, दानेदार, मलाईदार, तीन प्रकार या उससे अधिक। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, तीन तरह के होते हैं शहद, कैटेगरी वाइज देखा जाए तो। और अगर आप देखना चाहते हैं कि रंग और स्वाद में कैसे हैं, तो भाई 300 से ज़्यादा होते हैं, आप एक ही पे क्यों अटक रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर ट्राई कीजिए हनी के। मीनू जी लिख रही हैं, ओके गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ मीनू जी, आप बताइए आप कैसी हैं, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। कमल नयन जी ने बहुत सारे डांसिंग इमोजीज भेजे हैं, थैंक यू सो मच। नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू टू। कमल नयन जी लिख रहे हैं, मैम हमारे गांव में पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ते से निकाला जाता था देशी शहद। ओके भैया, हम भी ऐसे ही शहद खाने वाले इंसान थे, बट फिर हम बड़े हो गए और अब हम शहद नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट वाला जो शहद आता है उसकी स्मेल मुझे बहुत तेज लगती है, जिसकी वजह से मैं उसे कंज्यूम नहीं कर पाती। फिलहाल अगर किसी के पास सफ़ेद रंग का शहद हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं लेने आ जाऊँगी आपके घर तक। नागेश्वर जी ने किया है डिस्को वाला डांस एंड इसके बाद लिखा है कि एक इंसान को अपने जीवन में और क्या चाहिए, ढेर सारा पैसा और सुकून भरी नींद। वैसे बात तो सही है, सुकून भरी नींद की तलाश आई थिंक हर कोई कर रहा है, लेकिन जब ढेर सारा पैसा आ जाता है तो सुकून भरी नींद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं आवाज़ विकास से, लिख रहे हैं, उन्नति जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू एंड जी, कोई बात नहीं चलता है इतना तो। एंड इसके बाद लिखा है नागेश्वर जी ने कि मेरे हिसाब से इंसान को ऐसा करना चाहिए कि एक झूठ अनजाने में गलत काम की सज़ा एक पेड़ लगाना चाहिए। वैसे काफ़ी अच्छी तरकीब है आपकी, और देखा जाए तो कुछ ही दिनों में हमारा भारत भी किसी जंगल से कम नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत में हर कोई इतनी गलतियाँ करता है, लोगों के इतने दिल दुखाते हैं और इतने झूठ बोलते हैं कि भाई हर एक घंटे में आपको लाखों पेड़ दिखाई पड़ेंगे। एंड ओके, क्या खजूर के बीज भी कुरियर कर सकते हैं, बेशक करके देख लीजिए, अगर उग सकता है तो उगा दिया जाएगा। इसके बाद लिखा, अगर हम आज फलदार पेड़ लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी फल खाएगी, वरना आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा कि आम कहाँ लगता था। वैसे बात तो आपने एकदम सही फरमाई है कि अगर हम आज अपनी चीज़ों को नहीं सुधारते हैं तो आगे आने वाले समय में

बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनजान रह जाएंगे, भारत जैसे देश में वो फलों के नाम से अनजान रह जाएंगे। जैसे आप ही को बता देते हैं, एक फालसा नाम का पेड़ आता है जिसके छोटे छोटे छोटे छोटे बीज या फिर कहें तो फल आते हैं, गर्मियों में स्पेशली आता है और बहुत ठंडक देता है, लेकिन आजकल उसका नाम कोई नहीं जानता। और अगर जो जानते हैं, जिनके घर में ये पौधा लगा है, वो इंजॉय कर रहे हैं उसका जूस बना करके, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका नाम भी पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो भाई नागेश्वर जी लिख रहे हैं, अगर आज हम आम की गुठली लगाएंगे तो उसको उसकी अच्छी तरह से केयर करके एक पेड़ बनाएंगे तो 10 साल बाद फल लगेंगे, और 10 साल बाद आपको आम खाना है तो पेड़ आज लगाना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, सिर्फ 10 साल नहीं लगते हैं, 6 से 8 सालों में भी आपका आम का पेड़ आपको आम देना शुरू कर देता है, लेकिन बात यह है कि लगाने तो आपको आज ही पड़ेंगे और उन पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पौधे को आपकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड ओके, इसके बाद डांसिंग इमोजीज हैं, थैंक यू सो मच। उस्मान खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, जी एम आज मैम गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गुना में, वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और नागेश्वर जी ने किया हा हा हा फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा, आपके मैसेज पढ़ते पढ़ते घड़ी भी बता चुकी है कि अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले शो के असली लाइफ में, तो सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो कैनस 99.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। जो अभी भी बिस्तर के आगोश में है वो उठ जाएं और जरा नाश्ता पानी कर लें भाई, क्योंकि आपकी बॉडी को अब जरूरत है एनर्जी की। अभी तक आप इंजॉय कर रहे थे गुड मॉर्निंग गोंडा, आपका अगला कार्यक्रम है गाँव की गूंज, जिसमें आपको सुनाई पड़ेगी गाँव की वो धुन जो कहीं कहीं मिस हो चुकी है और आप उन्हें याद आज भी करते हैं। तो अपने बचपन की यादों को ताज़ा बनाए रखिए, और हम मिलते हैं अगले वाले प्रोग्राम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी समता गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद एक बार एक और नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों की माला को पिरोया गया है, जिसमें श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर मधुर आवाज में है और उनका साथ देने आ रही हैं जिमी जी, श्वेता जी और समता। आज का यानी कि नया एपिसोड हमारा गांव की गूंज का विषय है नैहर। नैहर का मतलब होता है कि जब अपनी बेटी जो होती है वो अपनी माँ के घर जाती है। तो आइए हम सभी गीतों के साथ एक बार फिर से आनंद उठाते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे वाह, सब आ गए पर किरण दीदी नहीं आई। वो तो टाइम पर आ जाती है, आज कहाँ रह गई? जिमी जरा फोन लगा के पूछो तो।
7: ठीक है, पूछती हूँ समता जी। अरे रुको रुको, हम जानते हैं किरण दीदी कहाँ है। वह रूट कर नैहर चली गई है।
8: ये नैहर कहाँ है, कौन सी जगह है ये?
6: अरे बुद्धू, नैहर का मतलब मायका, अपनी मम्मी का घर होता है।
7: जीजा जी आजकल बाजार में समोसे बहुत खाने लगे हैं, किरण दीदी बस इसी बात से नैहर चली गई है।
8: मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं उनके गांव।
6: हाँ हाँ चलो, शीतल ठंडी हवा, पेड़ों की छाव का आनंद लेने। यहाँ तो एसी में भी गर्मी लग रही है।
7: भैया किरण दीदी नहीं है, पर उनका लोकगीत।

0: किरण दीदी, कहाँ हो?
1: घर पर तो नहीं है। अरे बगिया से गाने की आवाज आ रही है, उधर चलते हैं।
2: देखो कितने लोग हैं, रेनू भाभी भी आई है दिल्ली से।
3: समता, नेहा बुआ भी आई है, यह तो मुंबई रहती है, वहाँ से इतनी गर्मी में आई है।
1: पहले गाना सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि हम लोग आ गए हैं।

नेहा बुआ, आपको याद है रेनू भाभी हम लोगों के लिए हमरी गुलाबी चुनरिया खूब गाती थी और आज ही कितना गुस्सा होती थी ना, आपको याद है?

0: अरे तुम लोग कब आए और कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
1: अरे हम वो हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं।
2: हम लोग रूठी दीदी को मनाने चले आए।
0: ये है हमारी गांव की गूंज की टीम, समता, श्वेता, जिम्मी। नमस्ते नमस्ते।
3: यहाँ आप मस्ती कर रही हैं और बेचारे जीजा जी सूख कर काटा हुए जा रहे हैं आपकी याद में। किरण दीदी वह गाना पहली पठौनी ससुर मोरे आए सबको सुना दीजिए ना।

0: थैंक यू रेनू भाभी, लो सिकंजी पियो और ताजा खोया खाओ।
1: किरण दीदी, ये सारे बच्चे कितने शौक से शिकंजे पी रहे हैं, जबकि रहते मुंबई और दिल्ली में हैं।
2: डिम्पी, सौम्या, गोलू सब इतने खुश हैं, सुबह सुबह झील में जाकर तैरते हैं, गिल्ली डंडा खेलना सीखा इन्होंने, और आंधी में दौड़ दौड़ कर अमिया बटोरा है। शहरों में तो खुली जगह के लिए हम लोग तरस जाते हैं।
0: नेहा बुआ बता रही है कि दादी को सांस की तकलीफ है, रोज सुबह शाम इनहेलर लेना पड़ता है, पर जब से यहाँ आई है एक बार भी उन्होंने इनहेलर यूज नहीं किया है।
3: बच्चा पार्टी ने हमको भी अमिया खाने को दी, लो तुम लोग भी खा लो। पर प्लीज प्लीज प्लीज किरण दी, बगिया माँ छैया अपार हो गाना सुना दीजिए ना।

0: लो देखो, रूठी दीदी को मनाने जीजा जी भी आ गए, पर किरण दीदी ऐसे थोड़ी ही जाएंगी।
1: अरे क्यों तंग कर रहे हो इनको?
2: लो जी, हम तो आपका साइड ले रहे थे और आप हैं कि आपने पाला ही बदल दिया।
1: शर्त तो माननी पड़ेगी, पर पहले पानी तो पूछ लो। लीजिए, शिकंजी पीजिए।

0: क्या बात, आप सॉरी बोलिए जीजा जी को और कहिए दीदी की हर बात मानेंगे हम।
1: किरण दीदी की ननद रानी अरुणी भी आई है भाभी को मनाने।
2: ननद रानी बहुत दिनों बाद आई है। किरण दीदी, ननद जी के लिए कुछ गाना हो जाए।

0: यह क्या खुसुर खुसुर हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है?
1: अरे दीदी कान छोड़िए, बताते हैं। आप सबको गांव घूमने का बहुत मन था ना? अरुणी को कच्ची अमिया खाना था और जीजा जी को तो खेत के मुलायम भुट्टे।
2: हमको गन्ने खाने का और जिमी को बरे। अरे वो देखो दादी बरे ले आई।
3: सॉरी किरण दीदी, हम सब ने मिलकर प्लान बनाया था, पर यहाँ आकर रेनू भाभी और नेहा बुआ सीधे मिल लिए।
2: दीदी गुस्सा मत होइए, तो एक बात बोले, जीजा जी बता रहे थे कि जब आप शादी के बाद आई है ना, तब से दो गाने आप बहुत सुनाती थी, तो प्लीज वो गाने आज सुना दीजिए।

0: जिमी, देख देख देख अरुणी, तुम भी आओ, देखो कैसे तालाब में भैंस और बच्चे एक साथ नहा रहे हैं।
1: किरण दीदी, अब तो मुस्कुरा दो, अरुणी बोल रही है, जो गाना है वो सुना दीजिए।

0: चलो चलो, रात हो रही है, तुम सबकी तो शहर पहुँच कर खबर लेंगे और आप और अरुणी को तो खाना ही नहीं देंगे। चलिए बताते हैं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
6: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
5: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
6: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
5: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
6: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
5: जी।
6: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
5: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
6: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
5: जी
6: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहां स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच कम है, वहां जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
5: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
6: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
5: जी।
6: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
5: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांव में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने, मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
6: आकांक्षा जी यह बहुत गंभीर खतरा है
5: जी।
6: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं
5: जी,
6: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
5: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
6: जी जरूर
5: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
6: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
5: जी।
6: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
5: जी,
6: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
5: जी।
6: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
5: जी,
6: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
5: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
6: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
5: जी।
6: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं।
5: जी,
6: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
5: मैम, अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
6: देखिए खानसा जी,
5: जी
6: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा,
5: जी
6: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं,
5: जी
6: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
5: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
6: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका।
5: जी,
6: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
5: बिल्कुल,
6: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
5: बिल्कुल,
6: याद रखिए बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
5: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
6: जी आकांक्षा जी।
5: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
6: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
5: जी,
6: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
6: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
5: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
6: देखिए आकांक्षा जी,
5: जी
6: मेरा संदेश बहुत साफ है।
5: जी,
6: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए।
5: जी,
6: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
5: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
6: जी धन्यवाद मैम।
5: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: और ये इश्क वाला लव डिस्को दीवाने के बीच में कहाँ से आया भाई, किधर से आया? वैसे आ गया है तो हम भी आ चुके हैं। घड़ी में वक्त तो चला है 12:16 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आर्जनती मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले FM एंड ऑफ कोर्स लेकर के आपके आफ्टरनून का वेरी स्पेशल शो जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्लस मेरी को होस्ट जिनका नाम है सुहानी एंड संध्या, उनके साथ आपका अपना प्रोग्राम। तो हाई हेलो हो जाए थोड़ा सा।
1: यस मैम।
0: थोड़ा हाई हेलो के लिए करीब आना पड़ता है।
1: कितना काफी है?
0: जी बेशक इतना काफी है। फिलहाल के लिए कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ, मैं भली चंगी हूँ। और आज का टॉपिक का आइडिया लगा सकते हो कुछ? मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? इतना सोच के जवाब कौन देता है बॉस? लिसनर्स आपको भी आज सॉन्ग सुनाई पड़ रहे होंगे और यूं तो जब भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूं तो कहीं ना कहीं सॉन्ग मिसिंग होते हैं, बट क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड स्टाइल, बॉलीवुड की बातें, क्योंकि आज है थर्सडे, थर्सडे को बात होती है बॉलीवुड की। सो स्पेशली ये म्यूजिक यूं ही चलेगा बी फ्रैक की आवाज़ में। ऐसे मत देखिए, मुझे डर लग जाता है। ओके ओके, लेट इट बी, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये अभी, मुझे हजम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए भैया आइए चलते हैं आलिया भट्ट की तरफ। और सुनने में आया है कि कैंस प्रोग्राम 2026 में उनकी एंट्री बड़ी धमाकेदार हो चुकी है और उनकी एंट्री ने इंटरनेट को हिला रखा है। अब क्यों हिला रखा है ये भी हम आपको बता देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रेड कार्पेट पर उन्हें इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, कितने भी हेटर्स आपके आसपास क्यों ना हो, आपके जो फैंस होते हैं वो हमेशा आपके सपोर्ट में होते हैं।
1: Yes,
0: है ना?
1: Yes,
0: अब भाई वो फैंस कहाँ है मेरे जो मेरे सपोर्ट में रहेंगे, मैं उनकी तलाश में ढूंढती रहती हूँ हमेशा। वो अलग बात है कि जैसे ही ट्रोलर्स ने कहा कि आलिया भट्ट को तो कोई पसंद नहीं कर रहा था, रेड कार्पेट पे उन्हें इग्नोर कर दिया गया, वो सिर्फ कैमरे को लेकर पोजेस दे रही थी, नहीं क्या क्या बातें उन्होंने कर ली होंगी। इसके बाद उनके फैंस ने फुल सपोर्ट दिखाते हुए ऐसा ट्रोल किया है ट्रोलर्स को कि वो अपने घर जाके कम्बल के अंदर मुंह डाल के बैठ चुके हैं, बाहर निकलने के बारे में सोच नहीं रहे। वैसे आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? आपकी कोई फेवरेट हीरोइन ही नहीं है?
1: नहीं मैम, है पर वो हीरोइन नहीं, वो एक अच्छी सी लड़की है जो है उन्नति मैम।
0: ओह माय गॉड, ओके, इसको बटरिंग कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कोई तो ऐसी होंगी ना जिनकी फिल्में आप बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं?
1: कृति सुरेश।
0: ओके, वेल, आलिया भट्ट की हाल फिलहाल में कौन सी फिल्म देखी है आपने? आप बताएंगी संध्या जी?
1: आलिया भट्ट की हम लोग कई मूवी देखे हैं।
0: कई में से मैंने पूछा हाल फिलहाल में कौन सी देखी है।
1: अभी इधर जल्दी में तो कोई नहीं देखा।
0: सोचो, मैंने गंगूबाई देखी थी।
1: हाँ मैम, मैंने भी देखी थी।
0: अभी याद आ रहा है?
1: नहीं मैंने नहीं देखी। गंगूबाई मैंने देखी है।
0: एंड मैं आपको बता दूं भाई, आलिया भट्ट वो हीरोइन है जिनके नाम पे कहा जाता है कि भाई इस एक्टर को किसी लीड एक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी होती हैं और ये इकलौती ऐसी फीमेल एक्ट्रेस हैं जिनके साथ कोई अपोजिट में लीड एक्टर ना होने के बाद भी इनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात होती है। फिलहाल आलिया भट्ट के इंटरनेट पर और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। कांस में, कांस फेस्टिवल के अंदर उन्होंने कुछ और भी ऐसी चीज़ें की जो आपको बताने वाले हैं, लेकिन इस गाने के कंप्लीट होने के बाद इसको आप एंजॉय करें। ओम शांति ओम से धूम ताना ना ना ना। तब तक आप एक्सरसाइज कीजिए और इस गाने को एंजॉय करते रहे। आप सुन रहे हैं गैस लाइव अपनी आरजी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, हम आपको बता दें भाई, आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव अपनी आरजी उन्नति के साथ, और ये है आपका रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। एंड हम बात कर रहे थे भाई आलिया भट्ट की, जो कांस फेस्टिवल में जा चुकी हैं और अल्टीमेट क्रॉसओवर किया है उन्होंने कार्लोस सेंस के साथ, प्लस वायोला डेविस से भी मिलकर बढ़ चुकी हैं आगे, प्लस उन्होंने एक ऐसा बॉम्ब तोड़ा है जिसके बारे में सुनकर आके भी होश उठ जाएंगे। यूँ तो मैंने कह दिया कि आलिया भट्ट एक ऐसी फीमेल एक्ट्रेस हैं जिनको मेल की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने बॉम्ब गिराते हुए बोला है कि भाई आज भी बॉलीवुड मेल सेंट्रिक है, यानी आज भी बॉलीवुड में लड़कों को ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा अहमियत मिलती है और लड़कियों को उतना नहीं मिलती। क्या वैसा सच है सुहानी जी? हो सकता है, इसे क्या मतलब है?
1: मतलब ये तो हर जगह यही होता है ना कि लड़कों को ज्यादा होता है कि कम,
0: लेकिन हर जगह तो नहीं होता है,
1: यहाँ नहीं होता है।
0: चलिए तो भाई बॉलीवुड में जी हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई आज तक जितनी भी फिल्में हिट जाती हैं उनका क्रेडिट कहीं ना कहीं मेल को जाता है, बट आलिया भट्ट एक ऐसी फीमेल हैं जिनकी फिल्मों के क्रेडिट सिर्फ उन्हें जाते हैं, उनकी कमाल की एक्टिंग को जाते हैं। आलिया भट्ट को कहाँ इतने लोग ट्रॉल किया करते थे कि आलिया भट्ट को एक्टिंग नहीं आती है, और उन्होंने जवाब में सफाई ना दी, उन्होंने अपनी एक्टिंग सुधारी और ऐसा जवाब दिया कि अब उन्हें कोई ट्रॉल नहीं कर पाता, ये कह करके कि उनकी एक्टिंग में दम नहीं है।
2: और हाँ, आलिया भट्ट की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है
0: ना। कुछ सालों पहले तक उन्हें लोग ट्रॉल कर रहे थे, और मैं इसीलिए कहती हूँ जब भी आपको कोई हेट करे ना तो उसको जवाब बोल कर नहीं, अपनी कामयाबी से देना चाहिए, क्योंकि जब कामयाबी बोलती है तब कुछ और नहीं सुनाई पड़ता।
1: जब कोई बोलने लगे तो उसको बोलने दो, हाँ ठीक है बोल दो जो तुम कहो, फिर बाद में कमबैक करो अच्छे से।
0: हाँ जी, तो भैया न्यूज़ 2 आ रही है दीपिका पादुकोण की किंग शूटिंग से। ओहो हो, भैया हम आपको बता दें दीपिका पादुकोण नाम ही काफी होता है ना, SRK के साथ किंग की शूटिंग को रैप अप करके मुंबई वापस आ रही है मैडम, और फैंस का रिएक्शन बिल्कुल वही है, यार ये तो और भी ज्यादा गॉर्जियस लग रही है, फिटनेस के लुक में दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं, दीपिका पादुकोण कितनी सुंदर लग रही है, SRK कितने बिंदास लग रहे हैं, उन्हें जाने इतनी कितने कॉमेंट्स उनके फैंस कर दिया करते हैं, प्लस एक्साइटमेंट में इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फिल्म आने वाली है। तो फिल्म आएगी दिसंबर में 2026, क्या ख्याल है, देखना तैयार हो?
1: Yes,
0: yes, वैसे अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि दीपिका पादुकोण और SRK की कोई पसंदीदा फिल्म बताओ जिसमें दोनों नजर आए हो और आपकी बहुत फेवरेट हो, तो आप कौन सा नाम लेने वाले हो?
2: हैप्पी न्यू ईयर,
1: चेन्नई एक्सप्रेस सबसे बढ़िया।
0: क्या बात है भाई, ये बात तो है, SRK के साथ दीपिका पादुकोण की आई सारी फिल्में हिट हैं, चाहे फिर वो हैप्पी न्यू ईयर हो, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो, या फिर हो ओम शांति अम, उनकी पहली फिल्म
2: जवानी पठान भी है मैम।
0: बिल्कुल सही बात तो एकदम सही है, और मुझे लगता है ना मुझे चेन्नई एक्सप्रेस जैसी 2-3 फिल्में और मिलनी चाहिए। क्यों वो डायरेक्टर वो फिल्में नहीं बना रहे हैं, मेरा सवाल है डायरेक्टर से। एक चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म वापस से बननी चाहिए। फिलहाल लिसनर्स आपका क्या ख्याल है, आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कोई फिल्म देखना वापस से चाहते हैं, या फिर अभी आप एक्शन के मूड में ही हैं और आप एक्शन वैक्शन ही देखना चाहते हैं। बताते रहिए, सुनते रहिए आपका अपना शो ज्ञान असली लाइव न्याय ज्योति के साथ, और मेरी को हो संध्या सुहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: और मैं कैसे बताऊं भाई कि आजकल बॉलीवुड में चल कैसे रहा है। बॉलीवुड ने यूं तो धमाल मचा रखा है, आमिर खान की न्यूज सामने आ रही है और यहीं पर एक न्यूज जो बड़ी वायरल हो रही थी, हाँ, कि रणवीर सिंह जा रहे हैं बनने महादेव। और हालांकि इस न्यूज के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज्यादा बहस चल रही है, कोई कह रहा है न्यूज झूठ है, कोई कह रहा है न्यूज सच है। अब भाई आप इमेजिन करिए रणवीर कपूर एज अ महादेव कैसे लगेंगे। बेशक, और जब से उनकी द्वंद्व फिल्म पॉपुलर हुई है तब से लोगों का डिमांड था, या फिर कहें तो लोगों की आस थी कि रणवीर सिंह बनने वाले हैं महादेव के रोल में। बट एक्चुअल में ये न्यूज झूठ सुनने को मिल रही है कि वो ऐसा कोई रोल नहीं निभा रहे हैं। अब जिनको इंतजार था महादेव के रोल में देखने के लिए कि किस तरह से लगेंगे रणवीर कपूर, उनका दिल तो गया है, टूट हो गया है चकनाचूर। और जिनका नहीं था भाई वो खुश हो रहे हैं। फिलहाल आप बताइए आपको इंतजार था कि नहीं था, और आपको ये न्यूज़ आप तक पहुंची भी थी या अभी पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि कई बार ऐसी होती है जो न्यूज़ होती है वो हो जाती है 7 साल पुरानी और हमको पहुंचती है 7 साल बाद, है ना, बासी न्यूज़ हो चुकी होती है अब तक।
1: सच कहूं तो मुझे तो अभी तक नहीं पहुंची थी।
0: चलिए तो हमने पहुंचा दी, और इसी में एक और खबर हमारे पास है आपके लिए, वो ये है कि आमिर खान अपने डायरेक्टर आशुतोष के साथ जुड़ने जा रहे हैं। जी हम आपको बता दें आशुतोष वही डायरेक्टर हैं जिनके साथ आमिर खान ने मिलके आज से 25 साल पहले लगान फिल्म बनाई थी। 1952 में दोनों की हिस्टोरिक जोड़ी नजर आई थी, और हम आपको बता दें अब ये दोनों वापस आ रहे हैं और 1952 की हिस्टोरिक इंडिया और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर एक ग्रैंड स्पोर्ट्स ड्रामा बनाने जा रहे हैं। अब जो हैं क्रिकेट के बहुत बड़े वाले फैन, जिन्होंने 1992 के आसपास इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा होगा, और अगर वो हैं अभी तक, तो उनकी एक्साइटमेंट डबल होने जा रही है क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस एक बार वापस से आमिर खान लेकर आ रहे हैं बड़े पर्दे पर। तुमने देखा ना मैच? वेल, मेरी नानी कहती थी जब पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो भाई बिजली वालों को भी डांट पड़ जाती थी अगर वो लाइट काट देते तो, कि तुमने काटी कैसे, वापस करो। रेडियो पर लोग कान लगाकर बैठा करते थे ये सुनने के लिए कि पाकिस्तान के कितने रन हैं, इंडिया के कितने रन हैं, और इंडिया के जीतने पर वो उछाल होती थी, ये लोग ना दिवाली मना रहे हैं।
1: और उस वक्त अगर इंडिया जीतती है तो उसमें बहुत खुशी मिलती है
0: ना, आज भी होता है वर्ल्ड कप,
1: अभी भी वेट ही करते हैं कि इंडिया ही विनर हो।
0: और मेरे साथ इसका भी उल्टा होता है, मैं वहां बैठ जाती हूँ और वर्ल्ड कप देखने के लिए, जितना वहाँ स्टेडियम में कोई नहीं चिल्लाता उतना मैं घर से चिल्ला रही होती हूँ। मेरी मम्मी पीछे से कहती है बेटा टीवी के अंदर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, मैं कहूँ नहीं नहीं मेरी आवाज पहुंच जाएगी। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होता है, मुझे पता है ये फाइनल चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और मैं वर्ल्ड कप ही देखने बैठती हूँ हमेशा, कि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, नहीं जीतेगा तो बहुत मारूंगा इसको मैं। और मेरी मम्मी कह रही ये क्या बात होती है, तुम्हें खेलना था कि तुम खेल लो, मैं कहता नहीं भैया खेलना नहीं है, बस मुझे मजा आ रहा है, देखने में मजा आ रहा है। वहां पर मैं बैठ के विश कर रही हूँ कि शिवम दुबे प्लीज सिक्स, छक्का छक्का छक्का छक्का छक्का, मम्मी कह रही है भाई ऐसे नहीं होता है मैच, ऐसे नहीं होता है। और कोई बॉल छोड़ता है तो पता नहीं क्यों, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखता है, ये अच्छी खासी बॉल थी आप कैच कर सकते थे, आपने छोड़ दी, बताओ ये कैसी फील्डिंग हो रही है। हाँ ये भी होता है, तो भाई जो क्रिकेट का क्रेज रखते हैं ना उनके लिए फिर से वापस आ रहे हैं आमिर खान और उनके आशुतोष, उनके डायरेक्टर साहब, और 1952 के वो हिस्टोरिक मैच को एक बार दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा आपके लिए बड़े पर्दे पर, तो तैयार रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त सीन होने वाला है, और रियल क्रिकेट फैंस के लिए तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। वेल, मैंने सुना था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत टक्कर का होता था, अब देखने का मौका जब मिलेगा तो छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। आप एंजॉय कीजिए आशिकाना आलम है भाई हिमेश रेशमिया अपने जमाने के सबसे हिट सिंगर जिनके गाने आते ही मार्केट में धूम मच जाया करती थी।
1: हाँ, इनके गाने सारे अच्छे होते हैं,
0: डीजे वाले भैया फुल वॉल्यूम में बजाते थे इस गाने को, तो आप एंजॉय करते रहिए आशिकाना आलम। इमरान हाशमी पे फिल्माया गया खूबसूरत सा गीत, हम मिलते हैं इस गाने के उस बाद, अब तक गेट स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
1: हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM, यह गोरा शहर की धड़कन पर आपकी आरजी उन्नति। और मेरे साथ मेरी को होस्ट जिनका नाम है सुहानी और संध्या मौजूद हैं। फिलहाल आइए बता देते हैं, सुहानी और संध्या हैं कौन जो दो दिन से आपको नजर आ रही है। ये है हमारी DMC यानी कि डिजिटल मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स और ये फिलहाल ले रहे हैं ट्रेनिंग एक आरजी बनने की।
2: जी मैम, बिल्कुल सही बताई हैं,
1: बिल्कुल सही बताए हैं हम। और हम आपको बता दें कि आरजी इतना कम नहीं बोलते हैं।
2: नहीं, मैं बोलती हूँ लेकिन अभी आई हूँ तो सीख रही हूँ।
1: ऑल राइट, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। तो फिलहाल आपके पास भी है चांस, आपके पास भी है मौका डिजिटल मास कम्युनिकेशन में अपना नाम खींचे एनरोल और बनिए एक आरजे या फिर डिजिटल क्रिएटर। क्या ख्याल है, बन रहे हो ना?
2: यस मैम, हम लोग तो बन रहे, कुछ तो बनेंगे ही,
1: कुछ तो बनेंगे ही।
2: यस,
1: ऑल राइट। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम बता दें आपको कि नवीन राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मैं सुनते हैं MP से और उन्होंने हमें नमस्ते बोला है। नमस्ते जी आपको भी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं यहाँ से लाइव में। इसी के साथ आइए चलते हैं, अब आपसे विदा लेते हैं और अब मुलाकात होगी आपसे मेरी कल आपके अपने कॉलेज इन गोना में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ओके ओके, फिलहाल आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव और आपका अगला कार्यक्रम है सेहत या सिंह, जिसमें बात होगी सेहत की। सुनना मत भूलेगा, रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं थी आपकी आरजी, एंजॉय करते रहिए आपका अपना रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
0: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बात करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी के सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है, कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं और कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी यानी कि हमारी टीकन भाभी जी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुँचने की कहानी। टीकन भाभी, उससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद आरजे, और मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा करें तो माँ बाप डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि गांव के लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इन सभी अफवाहों के बीच छिप गया है। आज हम उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
1: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलती हूँ आज मैं।
2: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
3: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस यह कागज मुझे पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।
2: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं हो पाती होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
3: अरे भाभी, ये एक HPV है या जो भी नाम है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन कर दिए हैं और कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं, कोई कह रहा है बांझ हो जाएगी बेटियां, किसकी सुने, यह तो बहुत बड़ा निर्णय लेना है।
2: और तुमने वीडियो देखा?
3: देखो, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे मान लें कि क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े ही हैं।
1: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता है। हमारे पास अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है। ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और आखिर में क्या क्या चल रहा है।
3: टीकन भाभी, एक बात कहूँ, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर क्यों आजमाते हैं, यह भी मन में आता है। ऊपर से यह भी सुनने को मिलता है कि पहले 3 डोज लगी थी, अब बोल रहे हैं, कोई कह रहा है यह जल्दबाजी है।
2: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा, निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
3: पर हमें तो यही डर लगा रहता है कि कहीं आगे चलकर शादी ब्याह में बिटिया को या बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
2: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है। वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और
1: माँ है। ये वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक

0: जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री से कैंसर रोका जा सकता है, ये उन कुछ कैंसर संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकते हैं।
1: भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगता है।

0: सुरक्षा किसी के जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
1: मुफ्त दिल सच में मुफ्त है।
0: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब
2: उसकी गली में दिल को
0: सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल से पूछो, डॉक्टर से पूछो, एएनएम से

0: ठीक समझो, लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर ही आकर गिरती है।
1: इसलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो, ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, लज रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। ऐसा डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी
2: के लिए स्कूल से सूचनाएं, और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुने। इसलिए सही जानकारी,
3: तुम्हारे हाथ दिल पहलता है।
0: पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मतलब यह बताओ क्या माने क्या ना माने।
1: कभी कभी हल्का बुखार, जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, संभव है। इससे ये साबित नहीं होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात तो ये प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा
3: निगरानी।
1: अफवाह क्या करती है, एक घटना उठाती है।
0: वहाँ क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी

0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
1: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूर दृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों जिनमें सरकारी महकमों जानकारियों मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम

0: टीकन भाभी, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। यह बात तो मेरे मन में अटक गई।
1: मुझे सताओ तुमसे होके दिल ये
2: महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है,
1: न दे हमको गाली
2: के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
0: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और
2: महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचते हैं? ये बदलना होगा।
3: सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं कि आखिर में सुनीता ने क्या फैसला लिया।
0: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहाँ डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना कहूँगी ना हाँ कहूँगी, लेकिन एक बात पक्की है, हाँ फॉरवर्ड मैसेज देखकर फैसला नहीं करूँगी।
2: बस यही जीत है, सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
0: और अगर डॉक्टर वही कहें जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कह दूंगी कि फालतू के इधर उधर के तथ्यों को ना देखो और ना उन पर ध्यान दो।
2: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
3: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित ना रहे।
0: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों को होती है, पर जब घर में किसी को कुछ होता है तो समझ में आता है कि बीमारी जात, धन और जगह देखकर नहीं आती।
2: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुँच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
0: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
2: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो भी पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो, जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
3: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी तो उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, वैज्ञानिक यानी विज्ञान और प्रमाण से गाइडेंस होने के बाद ही होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
0: सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वह तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
2: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुँचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुँचाती है।
3: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोसी, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोलें।
0: अच्छा भाभी, अगर मेरी बेटी मुझसे पूछे कि अम्मा आप पहले डर क्यों गई थी, तो मैं क्या कहूँ उससे?
2: कहना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
3: बहुत सुंदर बात कही आपने भाभी, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की भी बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
2: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती है हमें ये सब नहीं आता, वहाँ भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
0: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
2: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंच सकता है।
3: शुक्रिया टीकन भाभी, आपका और सुनीता जी का, आप दोनों का ही शुक्रिया। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातों को संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी बात, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी बात, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी बात, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठवीं बात, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
2: और मेरी तरफ से भी एक बात, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुँचना, वही असली जिम्मेदारी है।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ में पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर सही फैसला करूंगी।
3: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही है, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक के लिए याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की सही जानकारी लें। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं है, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM के साथ सीधा संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
4: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
5: प्राथमिकता देंगे,
4: क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई

गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
1: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: गोंडा शहर की धड़कन।
9: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। तो कैसे हैं आप सभी भाई, आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। भाई इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बस ईश्वर की हम पर, हम सभी जीवों पर इतनी बढ़िया वाली एक कृपा छाई हुई है कि इस बार मई जून नहीं लग रहा है, मतलब बार बार नहीं बोलेंगे हम। पता लगा कि फिर ऐसा हो जाए कि कहीं फिर आंधी तूफान आ जाए या फिर कहीं तेज धूप हो जाए, तो लग रहा है कि इस बार ना भगवान जी थोड़ा भूल गए हैं कि भैया ये मई जून है और ये अगस्त सितंबर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि उन सभी जीवों पर दया बिल्कुल बरकरार है, पेड़ पौधों पे, तो जानवरों पे, तो हम सभी पे। तो भाई कल का मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया था, हम लोग तो यहाँ से जब निकले थे ओ माई गॉड, मतलब निकलते ही जैसे लग रहा था हम लोग हवा में उड़ने लगे और उड़ते उड़ते मुझे लग रहा है कि हम लोग घर ही पहुँच जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने फटाक से कुछ ऐसा इंतजाम किया कि हम लोग घर पहुंचे सुरक्षित। उसके बाद बारिश हुई थी बारिश,
1: यस मैम बारिश
0: तो बारिश हुई थी और इतना प्यारा सा मौसम था। और उसके बाद में एक जो धूप का जो जब धूप निकली थी तो वो धूप ना मन को छू लेने वाली धूप थी, है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को और इस प्यारे सी मौसम को, प्यारे से दोपहर को एक साथ विश करते हुए एक ही साथ फ्रेम में क्या बोलेंगे, शुभ दोपहरिया।
1: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आ गए हम आपका बहुत ही प्यारा सा दिन लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है थर्सडे और हमारा थर्सडे जो होता है वो होता है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर। तो आज उनके ही बारे में कुछ, उनके बिहेवियर को लेकर के कुछ और बाकी बातों को लेकर के हम बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। पर सबसे पहले जो कि हमारा सेगमेंट होता है स्टार्टिंग का, यानी कि पोइट्री। तो आज भी एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री कर रही है, आपका इंतजार तो फटाफट से हो जाए तैयार।
0: बिल्कुल, तो जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में आ जाएं एंड थैंक यू सो मच कि आप जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं वो, और जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए भाई आज की जो पोयम है वो है अनुभव की छाया। ओ माई गॉड, अनुभव की छाया, इसका मतलब बताओ क्या होता है
1: अनुभव की छाया, यानी कि जो भी आपने चीजें सीखी हुई है,
0: अनुभव किया है अभी तक,
1: जो भी आपने अनुभव किया है उसकी एक छाया।
0: एक जो बड़ी एज के लोग होते हैं ना, तो जैसे आज का हमारा जो आज के प्रोग्राम का जो सेगमेंट होता है वो होता है बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के लिए। तो अनुभव की जो छाया होती है ना, ये बड़ी ही क्या कह दें, जैसे कि एक बरगद का पेड़ होता है या एक जो बहुत ही पुराना पेड़ होता है, अगर हम उसकी छांव में बैठते हैं तो एक शीतलता प्रदान होती है, एक सुकून होता है कि मतलब ये जो पेड़ है ना, इनके नीचे बैठ करके हमें वो सब कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं जो एक घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके हमें प्रतीत होता है। तो वैसे ही अनुभव की छाया वो झुर्रियाँ नहीं तजुर्बे की रेखाएँ हैं, वो झुर्रियाँ नहीं तजुर्बे की रेखाएँ हैं, थकी हुई आँखों में न जाने कितनी दास्तानें हैं, थकी हुई आंखों में न जाने कितनी दास्तानें हैं, कभी घर की रौनक कभी जिम्मेदारियों का बोझ, कभी घर की रौनक तो कभी जिम्मेदारियों का बोझ, अब ठहरी हुई सी जीवन की ये शामें हैं, बालों की सफेदी उम्र का इकरारनामा, बालों की सफेदी उम्र का इकरारनामा, भीतर यादों का एक हसी खजाना है, उन्हें जरूरत नहीं बहुत से उपहारों की, उन्हें जरूरत नहीं बहुत से उपहारों की, बस अपनों के साथ एक छोटा सा बहाना है, छू लो उनके पैर ले लो आशीर्वाद, जो वो दे सकते हैं वो कहीं और नहीं, वरिष्ठ हैं, सम्मान के अधिकारी हैं, उनके बिना घर परिवार पूर्ण नहीं, के बिना घर परिवार पूर्ण नहीं, सम्मान करें बुजुर्गों का ये नींव है हमारे घर की, सम्मान करें बुजुर्गों का ये नींव है हमारे घर की, इनकी यादों की महक सबसे निराली है, इनकी यादों की महक सबसे निराली है। जैसा कि हमारा आज का प्रोग्राम का एक सेगमेंट होता है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो मैं इस पोयम के माध्यम से आप सभी को केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, वो हमारे लिए एक छांव होते हैं, एक ठंडी छांव होते हैं, क्योंकि जब ठंडी छांव के सरहाने हम बैठते हैं ना तो हमें वो सुकून मिलता है। चाहे वो माँ हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, या घर के कोई भी बड़ा आपके घर पे है, तो उनकी छाया में बैठना अपने आप को एक महफूज साबित करना होता है। और एग्जैक्टली इसीलिए कहा जाता है कि उस घर में, जिस घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, वो घर भी घर नहीं कहलाता है। इसीलिए आज का जो हमारा प्यारा सा ये कविता का जो मेन एक भावार्थ निकल के आता है वो यही है कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी कर लो सेवा और उन्हें दे दो सम्मान।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी होता है कि हम समझें उन्हें। और कहते हैं ना कि जब एक एज गैप होता है तो कई बार समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, लेकिन उस एज गैप को हटा करके आपको उन्हें समझना है। अगर दो लोग एक दूसरे को समझेंगे तो आई थिंक कि वो बेटर एक अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को एक बेटर वे में लेकर के जा पाएंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे, जो कि होता है रियल लाइफ फैक्ट्स, यानी कि कुछ लाइफ के ऐसे सच, कुछ हम आपको हर दिन बताते हैं कि जिनसे आप मोटिवेट भी हो सकें, कुछ सीख भी सकें, और साथ ही साथ में आपको ये भी लगे कि हाँ ऐसा होता है, कुछ ऐसे लाइफ के सच हैं। तो आज का हमारा जो रियल लाइफ फैक्ट है वो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को ही लेकर के है, और वो ये है कि कठिन परिस्थितियों से उभरने के लिए जो एक मानसिक क्षमता चाहिए होती है वो युवाओं की तुलना में बुजुर्गों में अधिक होती है, क्योंकि वे अपने जीवन में कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव देख चुके होते हैं जिनकी वजह से वो आसानी से कठिन परिस्थितियों से उभर जाते हैं और साथ ही साथ में बहुत ही अच्छे से उनसे निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जबकि यूथ्स में ऐसा नहीं होता है, वो
0: जल्दी पैशनेटिक हो जाते
1: हैं।
0: हाँ, मतलब ज्यादा वो पैशनेटिक हो जाते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि वो ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा वो अभी हमारी एक बच्ची आई थी, हम लोगों की बात उससे हो रही थी, तो जैसे ना ज्यादा उतावलापन, तो उतावलापन क्यों होता है, वो टीनेजर्स में तो होता है, क्यों होता है भाई, टीनेजर्स में ही तो होता है कि बहुत ज्यादा उतावलापन हो जाता है, मतलब एक स्टेज को अभी क्रॉस नहीं किया और नेक्स्ट स्टेज की हमें लालसा हो जाती है,
1: एक साथ बहुत कुछ पा लेने की जो चाह होती है कि हम एक ही साथ में सब कुछ कैरी कर लें या सब कुछ पा लें, तो वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक स्मूथ वाला वे होना चाहिए कि हम धीरे धीरे धीरे धीरे करके जो भी लाइफ में गेन करना है वो गेन करें।
0: बिल्कुल, और वैसे भी जिन बच्चों के अंदर ये आदत होती है ना कि एक सब्र की आदत होती है, तो वो लोग ना बहुत दूर तक चलते हैं, मतलब बहुत कुछ पाने और बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली यस, मतलब बहुत ही रियल फैक्ट है कि सब्र और उतावलापन, मतलब सब्र तो होना ही चाहिए, उतावलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में हमारा यही है कि हमें किसी भी तरीके से उतावलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यही है ना।
1: बिल्कुल मैम, यही है, और इसी से आप सीखें, समझें और इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो चलिए लिसनर्स, इसी बहुत ही प्यारे से फैक्ट के साथ आज के लिए अभी के लिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पर। बस यू गए और यू आए स्टूडियो।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है।

0: मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404095 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो भाई आज हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसी डिजीज को। क्या होता है ना कि एक तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अगर किसी का कुछ सुन लेते हैं ना, या फिर घर में ही कुछ होता है या फ्रेंड सर्किल में कुछ होता है ना, तो मैं उसको कंपैरिजन करने लगती हूँ कि कहीं मेरे साथ तो ये सिम्टम्स नहीं हो रहे ना। मतलब एक सर दर्द भी किसी का सुन लेंगे ना, और फिर उसको अगर माइग्रेन होगा या फिर कुछ भी होगा, तो वो सारे सिम्टम्स पता है क्या करते हैं अंशिका, मैं अपने ऊपर उसको फील करने लगती हूँ।
3: आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको भी वो चीजें हो रही
2: हैं। अब नीचे अभी हम जब कॉलेज में बैठे हुए थे तो हमारी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है, उसने बोला मुझे कि मुझे सर्वाइकल हो गया है। अब बात हो रही थी कि सर्वाइकल की, तो बोला उसके सिम्टम्स क्या है। बोली जो ज्यादा मोबाइल देखता है, ज्यादा झुक के देखता है, अपनी गर्दन को झुका के देखता है, और हमेशा सर में चक्कर आता रहता है, हमेशा सर में दर्द होता रहता है, बेचैनी होती रहती है, तो उसको सर्वाइकल होता है।
3: ओके
2: ठीक है। तो सारे सिम्टम्स, मैं वहीं 5 मिनट बैठी थी और 5 मिनट के अंदर ये सारे सिम्टम्स मुझे होने लगे
3: सारे।
2: हाँ, चक्कर भी आ रहा था, उसके बाद सर में दर्द हो रहा था।
3: okay.
2: हाँ, और उसके बाद में मेरी पीठ में दर्द होने लगा। मैंने झट से मैं उठी और मैंने पानी पिया, मुझे लगा हटाओ, मतलब ये जो है ना ये चीजों को हटाओ, और तुरंत उसके बाद मुझे फिर अच्छे से रिलीफ होने लगा। तो ये सारा सिस्टम जो होता है ना हमारे माइंड का होता है।
3: बिल्कुल,
2: कि हम जो सोचते हैं वही
3: होने लगता है, वैसा हमें महसूस होने लगता है कि हमारे साथ वही वही सारी चीजें हो रही हैं जो हम सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं सोच का बहुत बड़ा
2: सोच का फर्क होता है। तो आज हम कुछ ऐसी डिजीज के बारे में भी बात करने वाले हैं जो कि खास करके हमारे घर के बड़े बुजुर्गों में पाई जाती है। अब मुझे तो बस डर यही है कि अगर वो सिम्टम्स हमसे मैच कर गए तो मैं सोचने पे फिर से मजबूर हो जाऊंगी। तो सिम्टम्स पहले सुनेंगे और उसके बाद उस डिजीज का नाम जानेंगे।
3: तो सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचना पहला, और दूसरा होता है कि डाउटफुल हो जाना। डाउटफुल का मतलब
2: बच
3: है
2: गए।
3: कि कोई भी चीज मान लीजिए सामने सब्जी रखी हुई, ठीक है, वो आपने
2: धोई आलू की है नहीं, वो मतलब उसको क्या कहते हैं, मैंने पहले से उसको धो लिया है पर मुझे लगता है कि मैंने नहीं धुली है।
3: हाँ,
2: ऐसा नहीं है, चलो बच गए,
3: एक नहीं है।
2: नहीं तो सोचने वाले भी नहीं है।
3: तो आपने ऐसे एक्सप्रेशन किया,
2: हाँ,
3: तो मतलब, मुझे लगा वो है,
2: तो अभी तो चलो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट।
3: ओके, नेक्स्ट है कि जो चीजें नहीं है वो भी आपको लगती हैं, और कहीं ना कहीं इस डिसीज में ये देखिए, पहली बात तो ये डिसीज नहीं है, ये कंडीशन होती है कि हम अपनी चीजों को किसी के साथ खुलकर कह नहीं पाते,
2: तो फिर ये बड़े बुजुर्गों की है, अभी हमारी नहीं है।
3: हमें ये लगता है कि वो हमारी बातों को उस तरीके से नहीं ले रहा है। एक ये आ जाता है, कहने का सेंस ये है कि हम इसको अगर बहुत सीधी भाषा में आपको मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ तो पैरानॉइड बिहेवियर का मतलब होता है कि 60 से ऊपर या 50 से ऊपर एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा माइंड टोटली डाउटफुल हो जाता है, एक तरीके से पूरा वो डाउट्स से भर जाता है। हम कोई भी काम करेंगे, हम किसी के भी साथ बैठे होंगे, हम किसी टॉपिक पे डिस्कस भी कर रहे होंगे, तो अपनी बातें रखने से पहले हमें ये फील होगा कि अरे नहीं, कहीं मुझे उस टॉपिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास
2: वो गलत
3: ऐसा तो नहीं है कि वो गलत है।
2: तो अब आपने नाम सुनी लिया है कि ये पैरानॉइड डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है जो कि कभी ना कभी बड़े बुजुर्गों के दिमाग में जब कोई बात बैठ जाती है, और सेम जो भी ये सिम्टम्स अभी बताए गए वो मेरी दादी माँ को थे। उन्हें ना वो हमेशा से उनको कुछ ना कुछ लगता रहता था कि यहाँ पर ये जानवर है, यहाँ पर ये है, और जैसे कभी भी मतलब सब्जी को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, कि अरे बहुत मैला है कपड़ा और इसको तो क्या कहते हैं, नहीं मैं इसको अभी जाके धुलूंगी, और जबकि धुला हुआ होता था। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये एग्जैक्टली मतलब एक बड़ी एज के बाद ही ये सारी चीजें आती हैं। तो चलो मैं अभी बच गई हूँ।
3: बिल्कुल, और आप बची रहे ऐसे ही हम चाहेंगे। पैरानॉइड बिहेवियर का मतलब एक बहुत सीधा सा होता है कि ये एक असुरक्षा की भावना है।
2: सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नागेश्वर जी और नवीन राजपूत एंड मीनू गुप्ता मीनू जी, तो भाई मेरे मेरे अनमोल रतन जो हैं, गीता जी एंड प्रीति जी, अनुष्का जी और सविता जी एंड कौन है,
3: आशु जी,
2: आशु जी, मतलब कहाँ है
3: नेहा, नेहा,
2: नेहा, हमारे कितनी फीमेल्स जो कि क्या कहते हैं लिसनर्स हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं, क्या है वजह जो हो गई है हमसे खता और आप आ नहीं रही हैं। तो जल्दी से आ जाएं, अगर आप सुन रही हैं तो मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, फटाफट आइए चैट बॉक्स में और एक प्यारा सा मैसेज डालिए।
3: तो चलिए आगे हम इसे और अभी आपके लिए बताएंगे कि पैरानोइड बिहेवियर तब आता है जब हमारे अंदर इनसिक्योरिटी एक लेवल के अप चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत इनसिक्योर तो सभी होते हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी हो जाना, एक ये हो जाना कि मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ऐसा एक ख्याल मन में होना, या फिर इस तरीके की चीज़ों का बहुत बढ़ जाना। कई बार घर के बड़े बुजुर्गों को लगता है कि बच्चों को सिर्फ अपने काम से, सिर्फ अपनी एक अपनी लाइफ से उनको मतलब हो गया है और मुझे वो नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं पूछ रहे हैं या मुझसे नहीं कह रहे हैं या मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो धीरे धीरे आपकी मेंटल कंडीशन पैरानॉइड बिहेवियर में
2: चेंज हो जाती है। हाँ,
3: एक मेंटल कंडीशन का पैरानॉइड बिहेवियर में चेंज होना ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि तब हर चीज़ डाउन, अगर कोई, एक बहुत नॉर्मल बता रही हूँ कि अगर कोई आपके लिए कुछ खाने की चीज़ भी लाया, मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे ही लाए, तो वो हमारे मन में आता है कि अरे रोज तो नहीं लाते थे, आज ये क्यों लाए हैं, कोई बात तो नहीं है। तो ये एक पैरानॉइड बिहेवियर का लक्षण होता है कि धीरे धीरे हम हर चीज़ को लेकर डाउटफुल हो जाते हैं। लेकिन ये एक पीरियड है, मतलब एक पीरियड के बाद जब आप गुजरेंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप ही आपके बिहेवियर से हट जाता है। लेकिन इसे हटाने के लिए भी कुछ टिप्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्निक की, तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो यही है कि आपको अपने आप से, सबसे पहले खुद से बातें करनी होंगी और अपने थॉट्स को क्लियर करना होगा। और दूसरी बात कि जब हम पैरानॉइड बिहेवियर की कंडीशन में होते हैं तो हमारे दिमाग में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। गलतफहमी किसी भी पॉइंट को लेकर बढ़ सकती है, किसी रिश्ते को लेकर बढ़ सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर बढ़ सकती है। मान लीजिए कि आप आलू टमाटर की सब्जी खाना चाह रहे थे और आपने कहा था गरम मसाला डालना, हम इसको इस तरह ले लेते हैं और गरम मसाला ही पड़ा हुआ है, बट आपको क्या डाउट हुआ कि अरे उसने ये भी मसाला भी तो उठाया था, कहीं ऐसा तो नहीं था
2: ये डाल दिया,
3: ये डाल दिया, वो है। तो वो, और एक ठीक होने का तरीका होता है कि जिन भी चीज़ों पर हमें डाउट है हम उन्हें क्लियर आउट करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, मुझे किसी चीज़ पर डाउट है, मान लीजिए किसी भी चीज़ पर, तो अगर मैं वो पॉइंट क्लियर कर लूँगी तो मेरा वो डाउट वहीं ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि शक का कीड़ा अगर दिमाग में आपके हो रहा है तो अगर आप किसी चीज़ को क्लियर कर लेंगे तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली हम हमारे रिश्तों में या किसी भी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं कि अरे चलो रहने दो, हटाओ। तो जब आप छोड़ देते हैं तो वो कीड़ा बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि जब हम शक करते हैं किसी पर तो वो पूरा हमें हमारे शक के अकॉर्डिंग ही लगने लगता है। जब तक आपने उस पर शक नहीं किया है तब तक वो बहुत अच्छा इंसान होता है आपके लिए। लेकिन अगर एक बार हम किसी सिचुएशन पर या किसी पर्टिकुलर वे में शक करने लगते हैं तो चीज़ें खराब होती हैं। इसलिए उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप क्लियर कर लेंगे, आपके दिमाग में जो उठ रही होंगी चीज़ें वो वहीं पर शांत हो जाएंगे। क्लियर करें। और दूसरी चीज़ है कि एक इनसिक्योरिटी की जो भावना है ना, उसे हटाइए। वो आपके बच्चे हैं, वो आपका घर है, वो आपकी फैमिली है, वो आपको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देंगे? देखिए, बड़े बुजुर्गों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि आज की जो ये कंडीशन है ना, इसमें काम करना, खुद को मैनेज करना और उसके बाद आकर के फैमिली को भी टाइम देना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यूथ्स के लिए स्पेशली, क्योंकि देखिए उन्हें ऑफिस भी देखना है, उन्हें घर भी देखना है।
2: लेकिन अंशिका, अगर हम ये माने कि उनके लिए मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सब चीज़ों को देखना, बट सारा टाइम तो वो घर पे ही रहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो क्या अपनी 24 घंटे की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हम बड़े बुजुर्गों को 5 से 10 मिनट नहीं दे सकते हैं?
3: नहीं, बिल्कुल।
2: इस बात को बड़े भी समझें और इस बात को छोटे भी समझें कि भाई उनको नीड है हमारे साथ 5 से 10 मिनट बैठ करके टाइम स्पेंड करने की। और ये बात बड़े भी समझें कि अगर मेरे बच्चे को आज टाइम नहीं है तो वो कल बैठ जाएगा। मतलब एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग पे ही पूरा, मतलब मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी चलती है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ही हम जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन एक बात अगर इसका उल्टा अगर हम लोग सोचें तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, क्यों कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक समान, तो उन्हें समझाना और उनकी तरफ ये बातों को मोड़ के जाना, उनकी तरफ रुख मोड़ के जाना भी कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट का काम हो जाता है।
3: बिल्कुल मैम, और एक चीज, एक लास्ट पॉइंट मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा बिहेव कर रहा है तो सबसे पहले तो उस पर लाउडली रिएक्ट नहीं करना है। कई बार घर के बच्चे क्या, अरे तुम्हें हर चीज में यार दिक्कत थी, तुम्हारी तो यही एक आदत बन गई है, तो इस तरह उन्हें मत कहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को क्लैश करते हैं ना तो वो बढ़ती चली जाती है। आपको उनको कहना है कि अच्छा ठीक है ये, अरे हो सकता है हमने इन्हें धुला हो, भूल गए होंगे, हम मम्मी आपके सामने धुल देते हैं, या इसमें गरम मसाला ही पड़ा है, अरे वो हल्का सा कुछ और पड़ गया होगा तो आपको टेस्ट बदला, मतलब उस चीज को वो करने की कोशिश करिए कि वो उस पॉइंट मतलब को लेकर सोचे
2: हाँ, नहीं, डिनाई नहीं करना है, बट मुझे लग रहा है कि इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करके हम उसको अलग रूप में ले
3: थोड़ा सा बदल करके आप उन्हें बताएं ताकि वो उस पॉइंट को सोचे ना, और कोशिश करें कि आप प्यार अटेंशन दोनों उनको दे सके, और थोड़ा सा घर के बड़े बुजुर्गों में अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार ये पीक पॉइंट पे चला जाता है कई लोगों में, तो आप फिर काउंसलर की सलाह लीजिए, क्योंकि जब ये पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो काफी दिक्कत होती है। इसलिए अगर ज्यादा बढ़ गया है तो आप काउंसलर को दिखाएं और काउंसलिंग से आपको पूरी हेल्प मिलेगी, और कोशिश कीजिए कि आपके घर के जो भी बड़े हैं वो अच्छे से स्मूथली रहें और आप अपना और उनका रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें।
2: तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से हम नए किसी एक टॉपिक पर। तब तक के लिए इस प्यारे से गाने को सुनते हैं और हम लेंगे ब्रेक, लेकिन हमारी नज़रें जो होती है ना वो हमेशा से चैट बॉक्स में ही होती हैं, इसीलिए जिन्होंने भी अभी एंट्री नहीं की है वो प्लीज़ जल्दी से आ जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं सुन रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आइए सुना देते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि होने वाला है बहुत ही अच्छा। भाई कोई भी ऐसी डिजीज हो, कोई भी ऐसी मतलब हैबिट हो, कोई ऐसा बिहेवियर हो, ऐसा नहीं हो सकता है जो कि हर एक ह्यूमन बॉडी में सेम टू सेम हो। ऐसा नहीं हो सकता,
3: ऐसा नहीं होता
2: है ना। जैसे मेरा नेचर कुछ और है, इनका नेचर अंशिका का कुछ और भी जो हमारे यहाँ स्टाफ मेंबर हैं उनका अलग अलग है। कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा सोता है, कोई कम सोता है,
3: कोई जागता ही रहता है,
2: कोई जागता ही रहता है। तो भाई सबकी अलग अलग वो है ना पर्सनालिटी,
3: नेचर, नेचर अलग होता है।
2: कोई योगा करता है, कोई नहीं करता है। किया तुमने योगा?
3: नहीं।
2: अब बस यही है, यही नहीं मानने वाली हरकत है, बस इसी पे गुस्सा आती है।
3: नहीं एक्चुअली मैम, मैं स्टार्टिंग करना चाहती थी, बस कुछ इधर अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है उस वजह से।
2: 10 मिनट के लिए तुम्हारा बिजी शेड्यूल है, तुम उठती सुबह 9 बजे हो तो कहाँ से तुम काम कर पाओगी?
3: नहीं मैम एक्चुअली मॉर्निंग का थोड़ा सा है अभी बिजी।
2: मुझे पता चला है तुम सुबह 9 बजे उठती हो।
3: नहीं मैं 9 बजे
2: ना, सुबह 9 बजे उठती हो तुम। सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अमृत का काम है। उसके बाद जब आप सुबह जल्दी उठेंगे और एक फिक्स कर लीजिए टाइमिंग की, हमें उतने में इतना मुझे नाश्ता करना है, उसके बाद इतना गैप करके हमें लंच करना है, फिर गैप करके हमको डिनर करना है, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, ना कहीं से बढ़ेगी ना घटेगी, कुछ नहीं होगा।
3: फिटनेस के लिए वाकई में सुबह की जो एक्सरसाइज है मॉर्निंग वो,
2: तो योग से याद आ गया कि मॉर्निंग में जो योगा है वो जरूर करना चाहिए।
3: और मॉर्निंग में योगा करने के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत ही अच्छी एक सीरीज कह लें या ये कह लें कि योगा बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। और वो किस में बताया जाता है ये तो आप भी जानते हैं, यानी कि आपका अपना मॉर्निंग वाला शो योगशाला।
2: योगशाला
3: आपकी अपनी आरजे, कौन सी आरजे?
2: योगिनी समता।
3: किसके साथ?
2: हाँ योगिनी समता,
3: योगिनी समता के साथ।
2: तो भाई आप लोग भी सुबह जरूर सुना करिए, क्योंकि हम ऐसे बताते हैं जैसे ना कि कोई अगर स्क्रीन पे नहीं भी है तो वो सुन करके आप योगा बहुत ही इजीली वे में आप कर सकते हैं। तो जरूर से किया करिए, अपने आप को मानसिक शांति, शारीरिक फिटनेस और जैसे कहते हैं ना कि बौद्धिक भी कई चीजों को हम ले करके आते हैं।
3: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सुनकर करना ज्यादा एक बेनिफिशियल होता है, क्योंकि देखिए नॉर्मल मतलब जितने भी योगासन होते हैं उसमें कुछ में ये होता है ना आंख बंद करें, और तो अगर आप देख कर करेंगे तो आंख बंद करके फिर कैसे कर पाएंगे, और सुनने से ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको स्मूथली फॉलो कर पाते हैं। तो इसलिए सुने करें और अपने आप को फिट रखें और कोशिश करें कि अपने लिए टाइम निकाल सके। मैं भी करूंगी, ठीक है थोड़ा सा है टाइट, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकूं।
2: ठीक है सुन लिया।
3: अमल भी करेंगे,
2: अमल भी करेंगे, वो पता नहीं कब अमल करेंगे है ना। तो चलिए फिलहाल के लिए शुरू करते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है बहुत ही ज्यादा वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक।
3: ओके, तो अब हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो ये टॉपिक है कि गार्डनिंग करना, यानी कि हमें, मुझे लगता है अमूमन सभी को पसंद होता है,
2: बहुत पसंद है। पर ऐसा क्या है कि गार्डनिंग हम लोगों से वैसी वाली हो नहीं पाती है, जैसे ना वो माली करते हैं, जो गार्डनर होते हैं वो करते हैं, बट हम लोगों से ऐसी क्यों नहीं हो पाती है, उसका कुछ कारण है क्या?
3: ऐसा कोई कारण नहीं है, मतलब ऐसी स्पेसिफिक कोई बात नहीं होती है, बस थोड़ा सा ये होता है कि जो माली होते हैं और जो गार्डनर होते हैं उनको थोड़ा मतलब टेक्निक्स पता होती है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, और हमने पहले कभी मतलब वो चीज़ें की नहीं होती। हम तो रफली हमारे घर में जो पौधे हम लगाते हैं उन्हीं की केयर करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो हमें मालूम है। बट कहते हैं ना कि एक काम के लिए अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको थोड़ी ज़्यादा उस चीज़ पे टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन होती है, बस ये बात है।
2: चलो अच्छा है, जान लिया आज, बहुत बड़ी गुण जानकारी दे दी आपने।
3: आपने पूछा तो हमने
2: नहीं नहीं बड़ी बड़ी गुण जानकारी थी, जो जानकारी मुझे पहले थी ही नहीं। टॉपिक पे आ जाए, टॉपिक पे आ जाए।
3: अच्छा ओके, तो देखिए लिसनर्स, आज हम हमेशा आपको बताते हैं ना कि ये पौधे लगाइए, अगर ये पौधे लगाए हैं तो इसकी केयर इस तरीके से करिए, गार्डनिंग करिए गार्डनिंग करिए, हमने आपको कई बार कहा, लेकिन आज हम ये लेकर के आए हैं कि फायदे क्या है, क्यों करना चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्यों करना चाहिए, मतलब उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ लॉस होगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई लॉस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट होता है। आजकल आपने देखा होगा कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम एक 15 साल के बच्चे को भी हो रही है, बुजुर्गों में भी हो रही है, उनको तो मानना जा सकता है कि भाई एक एज क्रॉस हो रही है, तो हाँ उनको हो रही है, ठीक है। मिड एज के जो लोग हैं यानी कि 30, 20, 25 उन्हें भी हो रही है, और जो कि ये कहा जाता है कि अरे ये तो यंग है ना, बट मेंटली एक जो कंडीशन कहीं ना कहीं खराब होना वो सबके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण जो होता है वो स्ट्रेस है। हर किसी को अपने लेवल का स्ट्रेस है। आप देखिए आजकल बच्चे का जितना वजन नहीं होता उतना उसके बैक का होता है।
2: बिल्कुल,
3: इतनी बुक्स दे दी जाती है, मुझे तो लगता नहीं कि इतना वो बच्चा केजी में या फर्स्ट में सेकंड में वो पढ़ भी पाता है उतना जितना उसे दे दिया जाता है। होमवर्क इस लेवल पे दिया जाता है कि जैसे लगता है कि बस इसी क्लास में उन्हें सब पढ़ लेना है, तो वो एक स्ट्रेस है बच्चे का कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। जो जॉब में है उन्हें अपनी जॉब मेंटेन करनी है, जो घर में है मतलब घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें उनकी कुछ कंडीशंस को जो उस एज में होती हैं उनको उस वजह से स्ट्रेस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तनाव हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सब फंसे हैं और हर कोई बाहर निकलना चाहता है। तो आज गार्डनिंग हम जो लेकर के आए टॉपिक वो ये है कि फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि नेचर के साथ टाइम बिताने से आपका स्ट्रेस 95% कम होता है।
2: और अगर घर में गार्डनिंग ना हो तो मतलब घर में अगर वो उस नेचर वाला माहौल ना हो तो
3: ऐसा नहीं,
2: तो हमें जाना चाहिए और किसी गार्डन में, गांधी पार्क में बैठ करके।
3: नहीं, जैसे छोटे छोटे छोटे छोटे पौधे मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं,
2: हाँ
3: छोटे छोटे पौधे तो आई थिंक सभी के घरों में इतना प्लेस मिल जाता है कि आप दो चार गमले में या चार पांच तो आप रख ही सकते हैं। देखिए नेचर के साथ टाइम बिताने का मतलब लोग बहुत सीधा समझ लेते हैं कि गार्डन जाना है, एक घंटे घूमना है, वो पेड़ पौधे के साथ रहना है, वो नहीं है। एक ये है कि अगर आपने चार पांच गमले भी घर में रखे हुए हैं तो आपको उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ी उनकी केयर, थोड़ी उनकी काट छाट करिए, थोड़ा उनको समय दीजिए। तो क्या होगा ना कि पौधों के साथ जब हम बैठते हैं तो हमारे माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स का जो एक स्तर होता है वो 95% कम होता है। और ये सिर्फ प्लांट्स के पास आप थोड़ी देर बिताएंगे 5 से 10 मिनट और ऐसा होता है। ऐसा होने का एक बहुत ही अच्छा कारण होता है कि जब हम पौधे लगाते हैं या जब आप पौधों के पास होते हैं तो हम उनकी पत्तियों को छूते हैं, टच करते हैं या पानी देते हैं, तो हम कभी कभी बात करने लगते हैं कि अरे इतने बड़े मतलब एक टेक्निक होती है इस तरह से, तो उससे हमारा स्ट्रेस बहुत तेज कम होता है। अगर आपके पास बड़ा गार्डन है मतलब किसी के घर में बड़ा गार्डन है तो वो तो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि फिर घास भी अगर है तो हम उस पर चलते हैं, कुछ पानी देते वक्त आपके ऊपर भी थोड़ा पानी होता है, मतलब एक तरीके से उस वेदर को, उस नेचर को महसूस करना है। कभी आपने फील किया होगा कि आप अपनी बैल्कनी में खड़े हुए और अचानक बादल गिर जाते हैं, अचानक से ये लगता है कि अरे बारिश होने वाली, तो एक बहुत अच्छी सी सॉफ्ट फीलिंग अंदर से आती है।
2: अच्छी वाली नहीं, बहुत ही एक नेचर को देख करके ना खुद भी मतलब एक बढ़िया वाला फील होता है। हाँ। कि हम बाहर अगर आसमान में देख रहे हैं या फिर पेड़ पौधों को देख रहे हैं, अच्छा चलो सब कुछ छोड़ो, इस समय आप लोगों ने पेड़ों में अगर आप लोग छोटी छोटी ग्रीन अमियां देख रहे हैं तो उसको तोड़ करके खाने में से ज्यादा बेटर उसको देखने में बहुत सुंदर लगता है। मतलब एक मन की जो खुशी होती है ना, अरे यार मतलब आज हमने अमियां देखी है, मतलब इतना पेड़ पूरा लदा हुआ था। आप लोग कभी भी जब ऑन द वे कभी भी जाते हैं, मतलब आप हाई कभी भी मतलब वे टू मतलब आप अपने गाड़ियों से या कहीं जाते हैं तो रास्ते में कभी भी आपने देखा होगा जो खेत खलियान हमें दिखते हैं बहुत बड़े बड़े पेड़, तो इस समय तो बहुत ही अच्छे से हमें अमियां दिख जाती है, आम दिख जाते हैं, तो उन लोगों को क्या हम जा करके तोड़ लेते हैं? नहीं तोड़ते हैं ना, बट वो देख करके मन में खुशी होती है, अरे आम का पेड़ देखा मैंने, आम का बगीचा देखा मैंने, तो एक ना अंदर से एक अच्छी वाली एक हैप्पी वाली एक फीलिंग आ जाती है।
3: बिल्कुल, कहते हैं कि जैसे जिन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसे इंसान भी होते हैं जिनको मेंटली बहुत खिंचाव रहता है, वो कभी नॉर्मल नहीं रहते, तो वो जो एक इस तरह के लोग
2: ऐसे
3: होते
2: हम तो नहीं है ना,
3: नहीं ऐसे आप तो नहीं है,
2: ये मतलब पूछ लेना,
3: नहीं नहीं आप ऐसी नहीं है, मैंने जस्ट एक कैटेगरी बताई कि मतलब ऐसे मतलब भी
2: हम,
3: लोग होते हैं,
2: मतलब हम किस कैटेगरी में आते हैं?
3: आप नॉर्मल
2: एंड माइंड,
3: आप नॉर्मल में आते हैं। तो चलिए हम ये कहना चाहते थे कि ऐसे लोगों को डॉक्टर भी ये सलाह देता है कि आप थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताइए, क्योंकि देखिए हमारी जो नेचर है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन हम देखते नहीं है। जैसे एक मुझे एक ही लाइन याद आ रही है कि जो एक कोई पोयम थी तो उसमें कहा जाता है ना कि तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पे है न पान, तो इसका मतलब ये होता है कि पेड़ अपना फल कभी खुद नहीं खाता है और जो नदी होती है वो अपना पानी कभी खुद नहीं पीती है, वो औरों को देती है।
2: okay.
3: तो ठीक उसी तरह हमारे नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, हम क्या सीखना चाहते हैं। आप कभी किसी पौधे को लगाते हो, बहुत प्यार से आपने उसको लगाया हो और कुछ हो जाए मान लीजिए, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, वो दुख भी धीरे धीरे, लेकिन फिर जब आप देखते हो कि उसमें से नन्ही कली निकल रही है थोड़ा आपकी मेहनत करने के बाद, तो हम ये सीखते हैं कि ठीक है अगर कुछ खराब हुआ तो उससे कुछ निकला। तो इसी तरीके से नेचर के साथ टाइम बिताना और गार्डनिंग करना दोनों बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको आधे घंटे, 10 मिनट 20 मिनट जो आपके पास हो वो आपको गार्डनिंग के लिए निकालने चाहिए। कुछ लोगों की से सुनने में आता है अरे ऑफिस जाए घर का काम करें या गार्डनिंग करें, तो आप 20 मिनट शाम को निकाल लीजिए, 10 मिनट निकाल लीजिए ऑफिस से आने के बाद, और आपके बैल्कनी में ही अगर आपने कुछ पौधे रखे हैं या कहीं भी घर पे आपको प्लेस है आपने वहाँ पे रखे, तो बस उनके साथ थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ी
2: मतलब जैसे कहते हैं ना कि कटिंग शटिंग के लिए। भाई मैं तो एक बहुत अच्छा सा काम करती हूँ, अगर अगर आपको वाकई में अगर ऑर्गेनिक खाद अगर आपको बनानी है ना, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक खाद अगर आपको बनानी है तो आपके घर में हफ्ते भर के जितने भी सब्जियों के छिलके निकलते हैं उन छिलकों को आपने इकट्ठा करना है और एक पॉलिथिन में आपको भरते जाना है। फिर आप कोई भी जब पौधे में आपको लग रहा है कि वो सूख रहा है कुछ भी हो रहा है तो उसमें बस भर देना है। ऊपर से आपने नॉर्मल सी कोई भी मिट्टी और एक कोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाद डाल करके ये इतनी अच्छी ऑर्गेनिक खाद बन जाती है आपके पेड़ पौधों के लिए और कुछ भी खर्चा नहीं है। कहाँ खर्चा हुआ भाई, जो सब्जी आप बनाते हैं ना
3: जी मैम,
2: तो वो सब्जियां सब्जियों के छिलके ही तो हुए और क्या मांग रहे हैं।
3: तो वो एक तो ये चीज हो गई कि आपके घर में जो चीजें आप उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी टेक्निक है। चलिए पौधों पे बहुत कुछ हमने आपको बता दिया, अब बता देते हैं कि कौन कौन से पौधे आप अपने घर के कम प्लेस में भी लगा सकते हैं। मतलब लोग ये भी तो पूछेंगे कि मैम इतना ज्ञान दिया ये तो आपने बताया ही नहीं कि कौन से पौधे, तो कुछ ऐसे पौधे बता देती हूँ। और सबसे पहला जो मैं बताने वाली हूँ वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कम पानी में, कम मिट्टी में आप आसानी से लगा सकते हैं और इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है और ये जगह भी काफी कम लेता है। दूसरा आता है एलोवेरा। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप घर में लगा देंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में वो यूज हो सकता है, काफी रेमेडीज हो सकती है, या ऐसे एलोवेरा जेल तो खाली भी अगर आप मतलब उसमें कुछ भी ना मिला के रॉ भी लगाते हैं तो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। थर्ड मैं बता देती हूँ कि पुदीना जरूर लगाना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पुदीना लगा सकते हैं और पुदीने के साथ मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का पौधा लगा सकते हैं और माय फेवरेट मतलब मुझे तो बहुत पसंद है रोज़ भी लगा सकते हैं। रोज़ भी एक ऐसा पौधा होता है फूल का जो बहुत कम जगह लेता है और अगर आप उसको केयर करेंगे तो वो बहुत जल्दी बढ़ता भी। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप अपनी बैल्कनी में या छोटे से प्लेस
2: मतलब
3: में भी।
2: अब तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सिटीज में ना जो क्या कहते हैं घर होते हैं वो बिल्डिंग्स में होते हैं, तो क्या होता है कि क्या मतलब जैसे ये मानना होता है कि छत पे हम अपनी गार्डनिंग कैसे करें, तो अब तो ये एक फैशन हो गया है कि बहुत छोटे छोटे जैसे घर जो होते हैं वो अपार्टमेंट के रूप में होते हैं, तो क्या होता है कि क्या वो लोग गार्डनिंग उसमें नहीं करते हैं। मेरे ही किसी मतलब ऐसे दो चार हैं रिलेटिव जिनके जो घर हैं वो उसी उसमें रहते हैं कंपार्टमेंट में, थोड़ी सी धूप आती और पूरी बालकनी में उन्होंने क्या किया हुआ है कि पूरे उन्होंने प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं, अच्छे से वो लोग क्या कहते हैं उनकी केयर करते हैं और वो अपना एंजॉय भी करते हैं। मतलब उन्हें वहीं पर दो चेयर रखी रहती है और अपने नेचर को भी मतलब जैसे वो लोग मतलब जैसे रहते हैं कनेक्ट रहते हैं, चाय पीना, बारिश आ रही है तो मतलब एक ना एक कितनी ऊंचाई पर भी घर अगर है तो उसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं।
3: एक जुड़ाव बहुत जरूरी होता है और अगर आप कोशिश करें और आसपास मौजूद हो तो कोशिश करें कि वीक में एक बार आप किसी गार्डन में या किसी ऐसी जगह जाएं जहां से आप नेचर के करीब रह सकें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है और ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और साथ ही साथ में अगर आप नेचर के साथ होते हो तो आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है।
2: हीलिंग पावर बढ़ती है बिल्कुल। तो चले अंशिका यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे फिर से नेक्स्ट टॉपिक पर। और रियल फैक्ट्स हो गया है लेकिन टिप ऑफ द डे भी है, लेकिन अभी हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के उस पार आते ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है उसको सुनना ना भूलिएगा। मतलब ये नहीं कि हाँ चलो हो गया अब हम लोग खाना खाने सोने ऑफ कर दें, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सुनना ना भूलिए। बस हम यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से वापस आ गई हैं आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि हमारी बातों में है क्या।
3: ओके, तो बातों में तो है ये तो गाना है एक, तेरी बातों में क्या है, मेरी बातों में है शरारत, मेरी बातों में है हंसी और मेरी बातों में है प्यार। तो चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं छोटी शुरुआत लेकिन बड़ी खुशी। इसका मतलब समझ में आया,
2: यानी कि छोटी शुरुआत से आपको बड़ी खुशी मिल सकती है।
3: हाँ, बट उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकती हैं ये मुझे बताओ पहले। ये प्रेरणा टिप्स है, मतलब ये आज का टिप ऑफ द डे में अगर हम मान के चलें तो ये आज आपका टिप ऑफ द डे में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब क्या होता है कि अगर हम छोटी शुरुआत बड़ी खुशी, अगर हम अपने आप को मानो अंशिका तुम अपने लिए ये बता रही हो तो कैसे बताओगी।
2: अगर मैं अपने लिए बताऊंगी तो कोई भी, जैसे कोई भी काम है, अगर हम इसको इस तरह ले लें कि छोटी सी खुशी आपकी किसी काम से जुड़ी हुई है तो आपको उस काम की शुरुआत बहुत छोटे एक साइज से, मतलब जैसे अगर मान लीजिए गार्डनिंग को ही हम ले लें कि आप पौधे ही लगा रहे हैं तो एक दो गमलों से शुरू करें। अगर वो आपको खुशी दे रहा है फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है हम बता रहे हैं गार्डनिंग करना पर हो सकता है कि आपको वो एक जॉय ना फील हो या खुशी ना फील हो। तो छोटी खुशी और उसके बहुत सारे फायदे, छोटे कदम का यही मतलब है कि छोटी छोटी चीजों से थोड़े से कम से आप शुरुआत करें।
3: बिल्कुल, और साथ ही साथ एक छोटी सी तकनीक ये भी है कि एक साथ बहुत सारे पौधे न लगाएं। अपने घर का एक छोटा सा कोना जिसको हम कह सकते हैं किचन गार्डन, है ना, जहाँ सिंक है, जहाँ डस्टबिन होता है और जहाँ पर हम कुछ ऐसी चीजें रखते हैं, वहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐसी पॉट्स रखते हैं जो इंडोर प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है
2: जी।
3: एंड एक और मेरे पास बहुत ही अच्छा है जो कि इतना नाम इतना प्यारा है कि कचरे से कंचन। जैसे मैंने बताया था ना अभी,
2: हाँ,
3: कि वेस्ट मटेरियल आपके पास जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, तो इतना अच्छा नाम दे दिया कि कचरे से कंचन। आप इसको कचरे से कंचन कैसे है बताऊं?
2: बताइए।
3: जब आप अपने रसोई घर के बहुत सारा जैसे फल के सब्जियों के कचरा निकलता है, उनकी सब्जियों के छिलके निकलते हैं, तो पौधों के लिए ये जीवन बनते देखा है मैंने। और इसी से जो वहाँ की जो बागवानी होती है उसका जो मजा है वो दो गुना बढ़ जाता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो छिलकों में और फलों के छिलकों में, सब्जियों के छिलकों में जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाँ जो होती हैं, वो ऑर्गेनिक खाद कंपोस्ट के नाम से हम उसको बना सकते हैं और घर में ही अपने पौधों की, अपने जैसे पेड़ पौधों की बहुत छोटे छोटे पेड़ लगाए। अगर आपके पास जैसे फ्लोर पे है मकान, मानो कि मतलब जैसे ग्राउंड फ्लोर पे है
2: जी मैम,
3: तब तो आप आराम से आप अपनी क्या कहते हैं जमीन से जुड़ करके आप पौधे लगा सकते हैं। लेकिन मानो कि उसका किसी का सेकेंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, तब हमें अगर गार्डनिंग करनी है तो हम कचरे से कंचन कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: मतलब ये नाम हमेशा से याद रखेंगे हम लोग, कचरे से कंचन।
2: एक यूनिक वाला जो एक कहते हैं ना सेगमेंट की कुछ चीजें आप सुनते हैं तो याद रह जाती
3: हैं। कचरे
2: तो
3: से कंचन
2: उसमें
3: है, ठीक है। तो एक पुरानी बाल्टी या डब्बे में सूखे पत्ते और किचन का गीला सूखा कचरा जितना भी है उसको मिलाकर आप ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, जो कि ये पेड़ पौधों के लिए सुपर फूड का काम करती है, सुपर फूड का काम करती है। ठीक है, तो मैं नाराज हूँ प्रीति जी, आशु जी, आप दोनों से, क्या आप लोग अपने मायके में गई हैं छुट्टियां मनाने के लिए, मुझे बताएं पहले। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग मायके में हैं, छुट्टियां सेलिब्रेट करने गई हैं, इसी वजह से आप सुन सहेली में मैसेज नहीं कर पाती हैं या फिर कोई और कारण है। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है वो भी पौधों में खाद का काम करती है
2: जी। नागेश्वर
3: कभी कभी नागेश्वर जी बहुत अच्छी अच्छी बात
2: अच्छी बातें करते हैं।
3: नागेश्वर जी ये टिप मैंने बहुत टाइम पहले मैंने ही बताई थी आपको, और ये टिप हम लोग हमेशा से करते हैं, मतलब मैं तो हमेशा करती हूँ कि चाय पत्ती का जो हो गया ना उसको, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं, मतलब गरम गरम नहीं और उसमें दूध के कुछ कण हो वो नहीं। क्या करते हैं जब चाय बन जाती है और उसी फ्राई पैन के ऊपर उस छन्नी से वो पूरी चाय पत्ती को छान लेते हैं और थोड़ी देर के लिए वॉश बेसिन का जो नल है उसको खोल देते हैं, और ताकि जो चाय पत्ती से और भी जो दूध का मटेरियल है वो निकल जाए, मीठा निकल जाए और केवल केवल चाय पत्ती बचे। बस वो छन जाता है, उसको छान करके फिर मैं अपने जो क्या कहते हैं घर के पौधे हैं मैं उसमें उनको डाल देती हूँ।
2: बिल्कुल, तो टिप ऑफ द डे आपने अभी जान लिया और बहुत ही प्यारा सा था आज हमारा टिप ऑफ द डे जो कि गार्डनिंग को लेकर के।
3: और प्रीति जी आ रही हैं, धीरे धीरे उनकी ट्रेन चल चुकी है, देखते हैं कि क्या लिख रही हैं, क्योंकि शुभ दोपहर या एंड गुड आफ्टरनून आशु जी एंड प्रीति जी, बट मैं आपसे नाराज हूँ कि आप लोग मायके में हैं या शादी पे गई हैं या बच्चे आए हैं, कुछ तो ऐसा काम हो रहा है चल रहा है
2: क्यों? जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल रहा,
3: हमें टाइम नहीं दे, नहीं नहीं आ रही है, सुन तो रही है, ये तो मुझे 100% मुझे पता है, बट चैट बॉक्स में नहीं
2: हो रहे हैं मैम, ये कह रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब मैसेज भी कर दिया करिए, जैसे एक स्टार्टिंग में कर दीजिए फिर बीच बीच में।

0: ऐसी हैं और हमेशा से देखिए हमसे जुड़ी हुई रहती हैं।
1: हम काफी कुछ मोटिवेटिंग भी बताते हैं, तो अगर वो सुनेंगे तो थोड़ा मोटिवेट भी, मतलब कहीं ना कहीं हील भी होंगे। और कहते हैं कि जब ऐसी किसी मतलब आपकी तबीयत ठीक ना हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो तो थोड़ा हील होना भी कहीं ना कहीं जरूरी है।
0: हाँ, सॉन्ग्स लगा दीजिए या फिर मतलब जैसे लगता है ना कि थोड़ा सा मन को अलग अलग चेंज में मूड में चेंज होना चाहिए। नागेश्वर जी लिख रहे हैं, जी मैम मैंने अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से ही सीखी हैं, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आशू जी आप कहाँ हैं? चलो प्रीति जी ने तो बता दिया, बट आप कहाँ हैं? आपके बच्चे आए हुए हैं। एंड मीनू फ्रॉम गोंडा, आप दोनों कैसी हैं? जी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं मीनू जी? एंड मनी शर्मा जी हेलो,
1: बहुत सारे हार्ट्स भेजे आपने, थैंक यू।
0: और नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि मैं तो बिना वजह भी मैसेज करता रहता हूं ताकि आप लोगों को मैं याद रहूं।
1: आप नहीं, आप हमें याद रहते हैं नागेश्वर जी,
0: वैसे भी याद रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो बेवजह ही जब एंट्री करते रहते हैं ना, बेवजह ही मैसेज करते रहते हैं, तो वो हमेशा से याद रहते हैं। और वैसे भी जब से सुन सहेली शुरू हुआ है तब से नागेश्वर जी एक और प्रीति जी आशु जी एक ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअसली 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे लिसनर्स हमें याद रह जाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप हमें याद। तो चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, जाते जाते हम एक छोटा सा पॉइंट आपको बताते जाते हैं कि हमने आज हमारे थर्सडे में एक सोचा था, एक टॉपिक जो कि टॉपिक नहीं है ये, बस एक एडवाइस है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा से क्या होता है ना कि हम कई बार बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ जो कि आपकी स्ट्रेस को रिलीज करने की बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, और ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको मस्ती भी, थोड़ा मजा भी देती है और आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है। जो कि होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको बस किसी भी कोई भी ऐसी चीज या कुछ भी जो आपको खुशी देती हो, जो आप जिसमें आपको अच्छी फील होती हो, उसके पास आप जाइए। कहने का मतलब है कि कई बार हमें बातें करना बहुत पसंद होता है किसी फ्रेंड से या कुछ भी है, तो हम उधर चले जाते हैं कि हम उनसे बातें करेंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर मोस्ट द टाइम ऐसा हो कि आप बहुत खुश हैं और आप कुछ करना चाहते हैं बट कोई है नहीं, कोई आपके पास बताने के लिए नहीं है, या कई बार होता
0: है तो सुन सहेली है ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: सुन सहेली है, आप वहाँ पर आएं और अपने मैसेजेस करें और आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, हम लोग उसका बिल्कुल निदान करेंगे। मुस्तफ़ा जी आ गए हैं एंड आशु जी एंड कमल नयन जी। तो आशु जी लिख रही हैं कि मैम मैं गांव गई हूँ, वहाँ नेटवर्क नहीं है इसलिए ज़्यादा आ नहीं पा रही हूँ। ओके आशु जी, कोई बात नहीं, और आप लोग ने देखिए बता दिया ना, तो ये बड़ा एक सुकून वाला हो गया। एंड कमल नयन जी, आपके नयन आ गए हैं लेकिन आप नहीं आए, देर से आप आए हैं, कोई बात नहीं। चलिए आप सभी लोग आ जाते हैं, मैसेजेस कर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जाते जाते आपका पसंदीदा सॉन्ग जो कि अभी चेंज हुआ है, क्या हो गया वकील साहब को, नागेश्वर जी ने पूछा है। ठीक है, मुझे लगता है कि उनको लू लग गई इसलिए झाड़ू से लू उतारो।
1: अब ये
0: नागेश्वर जी कभी तो सीरियस हो जाया कभी
1: तो, मतलब
0: चलिए कोई नहीं, हम मिलेंगे आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पानी की मात्रा को बढ़ाएं क्योंकि पानी की वजह से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो पानी पिएं और धूप में हो सके तो कम निकलें। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
7: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
8: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
9: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
10: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
9: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
11: अरे सुना?
12: क्या?
11: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
12: वाओ!
11: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
13: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
14: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
13: और जेंट्स के लिए?
14: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
13: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
14: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
12: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
15: मतलब?
12: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
14: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
16: हो गया है वो वक्त जो है आपके अपने फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम का, यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा का, जो लेके आ गई आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। और आपकी भी आकांक्षा है अगर कोई गाने को ट्यून करवाने की, नंबर वही है स्टूडियो वाला 6393316429। हाँ जी, 6393316429। और इस सफर को शुरू करेंगे हम आप लोगों के साथ में, लेकिन उससे पहले अपनी पसंद का एक गाना प्ले करके। अपनी पसंद का गाना आज हम इसलिए प्ले करेंगे क्योंकि हम दौड़ के आए हैं, बहुत तेज हमको लगी है गर्मी, और गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास दिलाएगा अपनी पसंद का नगमा। अगर ऐसे ही आपके भी पसंद का कोई नगमा हो और आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो और आपने मूड को करना चाहते हो एनहेंस, यानी कि खुश खुश खुश, तो खुश हो जाइएगा, लेकिन उससे पहले कॉल मिला लीजिएगा उसी नंबर पे जो मैंने भी आपको बताया है, आपने ट्यून करके रखा हुआ है। जी हाँ, रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन को। और फिलहाल के लिए ये गाना आप तक पहुंचता है, फिर आते हैं नेक्स्ट वाली पहली डिमांड लेके जो होगी हमारे कमल नयन जी की, उसके बाद होंगे हमारे शाकिर जी, और उसके बाद हमारी दरक्षा अंसारी जी, फिर होंगे हमारे प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी, जिन्होंने आज सोचा है कि दुख को कैसे भगाते हैं इसका निवारण लेके आए हो अपने गीत के माध्यम से। फिलहाल बने रहिए, और उसके बाद बहुत सारे नगमे हमारे पास में हैं आप सभी के लिए, मूड को करिए इनहेंस, लेकिन उससे पहले हमारी पसंद का, हमारी प्लेलिस्ट का ये गाना आप सभी के लिए। थोड़ा सा रोमांटिक है तो थोड़ा उसल मूड में चले जाइएगा। एंजॉय द ट्रैक।

दोस्तों, क्योंकि ये गाना मैंने इसलिए प्ले किया, मेरा मन था थोड़ा सा सुनने का। मैं बहुत धूप से आई थी और इसी तरह से मुझे पता आप सभी की पसंद भी हमारे पास में पहुंच चुकी है, तो इस पसंद में थोड़ी सी आपकी पसंद वाले को मिलाते हैं। वैसे तो आपकी पसंद से हमारा शो बनता है। फिलहाल के लिए फीडबैक आपका हमारा मिल गया, आप लोगों की खिलखिलाते हुए चेहरे, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट हमें देख गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं सफरनामे के साथ में, इस वाले गाने के साथ में जो कि हमारे पास में पहुंचा कमल नैन जी की तरफ से, और उसके बाद में होंगे हमारे शाकिर जी, फिर होंगी हमारी दर्शा जी, उसके बाद में पंडित जी, फिर होंगे हमारी सबीहा जी, दीपक जी और सुरेंद्र यादव जी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे, गाने बहुत सारे हैं, वक्त हमारे पास में हमेशा की तरह बहुत कम, यानी कि स्टूडियो के क्लॉक के हिसाब से हो रहा है 3:11। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, आते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ, एक और रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए, आपकी प्ले लिस्ट से। यार कितना एनर्जेटिक हो जाती हूँ मैं एक ही टाइम पे।

हमारे प्यारे प्यारे नए वाले लिसनर्स, आपसे कृपया निवेदन है, ऑपरेटर साहब ने नंबर मेंशन कर देना है, प्लीज कॉल कर ले ताकि हम आपके गाने को ट्यून कर पाए। फिलहाल ये गाना बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग है 90s का, बेहद दिल अजीज हमारा।

खुद से प्यार करेगा, वो खाना खाएगा और स्वस्थ नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे शाकिर साहब की है, और शाकिर साहब को सुनना है वो गाना जो आप कभी बहुत ही क्या बोलूं, तन्हाई में नहीं लेकिन हाँ, जब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे होंगे और दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपने कई दफा इसको सुना होगा, 90s के चाइल्ड तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने। फिलहाल देखते हैं आप में से कितनों ने सुना है, जरूर बताइएगा आपने इस गाने को एंजॉय किया है या नहीं। फिलहाल चलते हैं इस गाने की ओर।

भाई आज के नगमे सारे एक से बढ़के एक है, और सबीहा जी आपने तो हमारे बचपन का डांसिंग सॉन्ग ही चुन लिया है। वेट करिएगा, वक्त आने पे हम बजाएंगे और थोड़ा सा थिरकना भी चाहेंगे, उस जोन में जाना चाहेंगे जहाँ से आपने यहाँ तक वो नगमा पहुँचाया है। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए शाकिर जी की डिमांड पे। 3 से 4 के सफर में मैं आपकी होस्ट हूं दोस्त आर्य आकांक्षा।

हाँ जी श्रोताओं, तो अभी आपने मोहम्मद शाकिर जी की इस डिमांड को एंजॉय किया और काफी देर से बहुत सारी कॉल्स भी हमारे पास में लगातार आ रही है, तो आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा प्लीज। एक ही टाइम पे कई सारी कॉल्स आ जाती हैं, तो थोड़ा सा पहले कोई उठ जाता कोई बाद में, तो फिर से मिला लीजिएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारी दरक्षा अंसारी जी की, उसके बाद आएंगे हम पंडित जी की ओर और पंडित जी के बाद सबीहा जी। फिलहाल देखते हैं आज क्या सुनना चाहती हैं हमारी दरक्षा जी फ्रॉम सीतापुर।

हाँ जी, अभी आपने बहुत ही फीलिंगफुल सॉन्ग सुना है भाई। और ये गाना अगर आप ओहो क्या बोलूं मैं, अगर ओ माय गॉड मैं कुछ कह ही नहीं सकती, स्पीचलेस, इतना फीलिंगफुल सॉन्ग है ये। किसी के सामने अगर आप बैठ के गा देना, उसके लिए अगर ये कहते हो कि ये बस तुम्हारे लिए है और चारों तरफ बस चांदनी रात हो, पर कुछ कहना ही नहीं है जनाब, लाइफ अपने आप ही खूबसूरत हो जानी है आपकी। कितनी खूबसूरत हो जानी है वो आप कहने के बाद ही जान पाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने पंडित जी की डिमांड की ओर, और इन्होंने भेजा है दुख भूल गया। तो भैया दुख भुलाने का कौन सा मंत्र है इनका, आइए सुनते हैं और हम भी जानते हैं, थोड़ा सा मंत्र हम भी अपनाएंगे अपने जीवन में उतारेंगे। फिलहाल 3 से 4 के सफर में मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अगर आपको भी अपने गानों को ट्यून करवाना है तो मिला लेना है 6393316429 यानी कि 6393316429। तब तक के लिए ये सॉन्ग आप कॉल मिलाइए, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं।

हाँ जी, तो उम्मीद है आप सभी ने सीख लिया होगा दुख को भुलाने का मंत्र हमारे पंडित जी से। और अभी हम बढ़ेंगे उस गाने की ओर जिसकी हमने इतनी तारीफ कर दी। भाई हमने बचपन से नगमा सुना है, उसके बाद बस हमने थिरकना ही सीखा है, उसके आगे हमें कुछ याद ही नहीं। और उम्मीद है कि आप भी बस अब इस ओर आगे बढ़ेंगे और फिर थिरकने ही वाले हैं। फिलहाल गाना और म्यूजिक सुन के आपको इसका एहसास हो ही गया होगा। आइए नाचते हैं भाई मिलके 3 से 4 के सफर में आपके शो कॉलर ट्यून गुंडा के।

हाँ जी, और ऊंची नीची है डगरिया, ऐसा कहना है हमारा नहीं हमारी सभी हाजी का, इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना होगा। और जिंदगानी भी ऐसी होती है, काफी सारी उतार चढ़ाव के साथ में मिल के हमारे पास में आती है। सीधा सीधा अगर रास्ता होगा ना तो आप बोर हो जाएंगे जनाब, ये बात भी तो है सोचने वाली। फिलहाल अभी हम चलेंगे उस सॉन्ग की ओर जो कि हमारे पास में आई है आज पहली दफा। हाँ जी, रिक्वेस्टेड सॉन्ग है ये हमारे प्यारे नए वाले लिसनर का जो कि हमें सुनते हैं जयपुर से, और आज इन्होंने पहली कॉल की है और इनका नाम है विनोद भरद्वाज। चलिए फिलहाल इनके सॉन्ग की ओर बढ़ेंगे, फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम दीपक जी की। दीपक जी के बाद होंगे हमारे सुरेंद्र यादव जी, और सुरेंद्र यादव जी के बाद होंगे हमारे मनीष शर्मा जी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहें और सुनते रहें क्या रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर आपका अपना फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम में आने की कॉलर ट्यून गोंडा।

भाई हमारे सामने बलम जी यानी कि हमारे सब सावन जी का कहना है जाम वो है जो आंखों से छलकता है। अच्छा जी हमें तो पता ही नहीं था, आपने लिख के मिटाल दे दिया फटाफट से। अच्छा हमारे जितने भी चेक बॉक्स वासी हैं बड़े एक्सपर्ट हैं, हम आज तक ना सीख पाई है गुर, आप लोग हमें जरा सिखाएंगे फुर्सत में मिलिएगा तो हम आपसे सीखना चाहेंगे ये वाला गुर। फिलहाल बढ़ेंगे हथियागढ़ से आई डिमांड की ओर यानी कि हमारे दीपक जी की डिमांड की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे विनोद राठौर जी का बचपन वाला, बहुत दिनों बाद ये वाला नगमा सुना, शादियों में जरूर बजता था, बैंड बाजे बारात के साथ में निकलते हुए ये गाना, तो ऐसा लगता था कि दूल्हे की शादी नहीं हो रही उसकी बर्बादी हो रही है, क्यों ये गाना लोग प्ले करते थे आज तक मुझे नहीं समझ आया। फिलहाल कहिए वो दौर गुजरा और हम दूसरे दौर में आगे जहाँ केवल हाई बीट्स है और हाई एनर्जी होती है, वरना तो आज भी मुझे वही फील आता कि शादी हो रही है या बर्बादी। फिलहाल ये गाना जो आया हुआ है हथियागढ़ से हमारे पास में, और अगर हम कहें तो हमारे पास में केवल और केवल 31 मिनट और है, उसमें आप लोग के पैगाम भी अभी हमें देखने हैं कौन कौन आज हाजिरी दर्ज करा चुका है। फिलहाल

आज जो डिमांड हमारे पास आई है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, यकीन नहीं मानेंगे आजकल हम इस गाने को इतनी दफा सुन रहे हैं, इतनी दफा सुन रहे हैं कि हमें भी नहीं पता कि कितनी दफा सुन रहे हैं। तो भाई इस सॉन्ग के उस पार सुरेंद्र यादव जी का सॉन्ग है, दिल लगा के सुनिएगा क्योंकि हम तो दिल लगा के वाकई सुनने वाले हैं। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए हमारे प्यारे दीपक जी की डिमांड पर।

भाई मैं तो यही कहूंगी, मोहब्बत प्यार इश्क इससे जितना दूरी बना के रखी उतना अच्छा होता है। मालूम तो हो जाता है एक दफा, बटरफ्लाईज भी आती हैं, फेरी टेल जैसी लाइफ हो जाती है, उसके बाद जो बर्बादी होती भगवान न करे, ऊपर वाले ही बचाए, अल्लाह मियां बचाए आप सभी को, हमको भी। हाँ फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट साइड डिमांड की ओर, और इस डिमांड के लिए भाई प्रेम मौर्य जी ने स्पेशली फीडबैक भेजा है और सभी ने इसको काफी एंजॉय किया, तो हथियागढ़ से सुनने वाले सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया भाई उनकी ओर से, हमारे प्यारे दीपक जी ने इतना रोमांटिक वाला सॉन्ग जो भेजा था। और अभी हम बढ़ेंगे सुरेन जी की डिमांड की ओर, जो हम आजकल बहुत बहुत बहुत ज्यादा ही सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप सुन के बता सकते हैं अगर किसी के दिमाग में खुराफात चल रहा हो। मुझे मालूम है हमारे चैटबॉक्स वासी बड़े ही खुराफाती हमारी ही तरह, भाई हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग हमारी तरह होगा ही। फिलहाल ये गाना

भाई हमारे लिए सुझाव आ रहा है, हमारी चंगू जी का कहना है कि मोहब्बत बड़ी अच्छी होती है, करके देखिए। आपसे तो कर ही ली है ना, और किसी से क्या जरूरत है। आपके व्हाइट रसगुल्ले हम दोबारा जरूर देखना चाहेंगे। और हाँ जी नागेश्वर जी, आपको कैसे पता चला कि हमारा भतीजा 6 महीने का पूरा हो गया? उसका अनप्राशन अभी कल ही हुआ है, 13 तारीख को उसका बर्थडे रहा 6 महीने वाला, और वो आइसक्रीम मांगने लगा है, पैसे मतलब आइसक्रीम के लिए पैसे मांगने लगा है। हमने तो बता दिया भाई, आपके चच्चू आपको देंगे जब नागू बाबा आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

क्या बात है भाई, बहुत सारा आशीर्वाद आपको सुरेंद्र जी, यकीन नहीं मानेंगे। इतनी दफा मैं इस गाने को सुन चुकी हूँ फिर भी मेरा जी नहीं भर रहा है, पता नहीं क्यों मैं इतना इस गाने को सुन रही हूँ। फिलहाल एक गाना और हमने कई दफा सुना अपनी लाइफ में, जब इसका दौर आया था यानी कि 90s का जब वक्त आया हुआ था, उस टाइम की बात है। और ये गाना है तू ही डब तू ही दुआ, डेंजरस मूवी से, और राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में, साथ ही साथ में तुलसी कुमार जी की आवाज में। और अगर हम एक फीडबैक की बात करें तो हमारे पास में एक फीडबैक आया हुआ है प्रेम मौर्य जी का, जिनका कहना है सीतापुर से ही हमें हर गांव से चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं, क्योंकि असली मजा सबसे छुपके सुनने में, इनका ऐसा कहना है एफएम को। फिलहाल बढ़ते हैं 3 से 4 के सफर में, और लगातार आपकी कॉल्स भी आ रही है तो मैं उसे रुक करूंगी, और आप एंजॉय करिए इस नेक्स्ट वाली डिमांड को।

अच्छा बताइए, सच सच बताइएगा, ये गाना किस किस के दिल के करीब है? एक तो ये और एक है तेरी मेरी प्रेम कहानी। भाई राहत जी सभी के दिल की राहत उसी वक्त से बने थे जब ये दोनों नगमे आए थे। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आपके पैगामात की ओर, उसके बाद आएंगे हमारे पास में आज फर्स्ट दफा फिर किसी नए कॉलर ने कॉल किया जिनका नाम है मोहिनी तिवारी जी। जी हाँ, और उनके नगमे को ट्यून करेंगे, फिर होंगे हमारी दरक्षा अंसारी जी, और फिर होंगे हमारे प्यारे लिसनर जिनका नाम है रीना शर्मा फ्रॉम रुड़की उत्तराखंड, फिर होंगे हमारी समरीन जी, फिर हमारे रमेश जी होंगे महाराष्ट्र से, सबलू सावंत जी, सार्थक साहू जी, निब्बर जी, और फिर बाकी लिसनर्स। भाई बड़ी लंबी लिस्ट है आज हमारे पास में, क्या बात है। सोचने की बात है कि आप सभी का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस शुक्रिया को हम कुछ मैसेजेस को ले करके भी अदा करना चाहेंगे। सबसे पहला मैसेज हमारे पास में आया हुआ है हमारे नागेश्वर धाकर जी का। जी हाँ, रतलाम की गलियों से। उसके बाद में हमारे मुस्तफा जी सऊदी अरेबिया से, यानी कि इंटरनेशनल हमारे लिसनर, और फिर हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से। नेक्स्ट की बात करें तो प्रीति शुक्ला जी हैं बहराई से, द्रक्षा सारी जी हैं सीतापुर से, कमल नयन जी हमारे जी हाँ गोंडा की धड़कन शहर यानी कि गोंडा से ही। और अगर अगली मैसेज की बात करें तो रिंकू जैन जी हैं शुभ दोपहर, इन्होंने बोला शुभ दोपहर आपको भी। गुलाबशान सारी जी हैं सीतापुर से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रबल मिश्रा जी हैं सबलू सावंत जी बोरेवली से, नेहा जी यानी कि हमारी मंगू जी और चंगू जी की जोड़ी हुई यही कंप्लीट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशनुमा बनकर यादों में बस जाएंगे, तुम भूलना भी चाहोगे तो याद आएंगे। आहा, क्या बात है, जबरदस्ती है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम याद कर लेंगे। और ये प्यारी लाइन थी हमारे नागेश्वर जी की, और उसके बाद में पानी पिलाने वाली। ओके हाँ जी, पानी पिलाने वाली, क्योंकि क्या करें गर्मी बहुत ज्यादा, मैं तो भूल जाती हूँ। देखिए आज आपने मुझे याद दिलाया, हर दफा मैं याद दिलाती थी, और आज हमारे मुस्तफा जी ने हमें याद दिला दी कि पानी भी पीना है। जस्ट शो ओवर होते ही मैं पीऊंगी, मैं भूल गई थी, वाकई मुझे प्यास लगी थी। आज बड़ा हाफा दौड़ी वाला मेरा दिन बीता है। फिलहाल दीपक जी हैं हथियागढ़ से। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज की बात करें, आप लोगों ने काफी गाने को एंजॉय किया, और नीना जी ने तो हमारा दिल ही जीत लिया, क्या लिख दिया है, वाह वाह थैंक यू। हाँ मेरा ही पसंद का गाना था, और मैं ऐसे ही गाने सुनती हूँ, थैंक यू ये हम तक बताने के लिए। शैलेंद्र जी हैं हमारे बीच में खजुराहो एमपी रीवा से, नहीं एमपी रीवा से नहीं है भाई, एमपी से ही हैं, खजुराहो से ही हैं, और इनको भी गाना काफी पसंद आया था, थैंक यू सो मच। और मनी शर्मा जी हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज आप ही सभी के हैं, और देख लूं मैं कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। जी हाँ, छूटता हो तो कोई नहीं नजर आ रहा है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और इतना ज्यादा आप लोगों ने एंजॉय कर कि हमको एक मैसेज ढूंढना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप ही का शो है, आप ही के गाने, और आपके गाने जब खुद के गाने होते हैं तो हमारी तरह आप भी हो जाते हैं थोड़े से ओवरफ्लो। फिलहाल ये गाना हमारी मोहिनी जी की ओर से, जो हमें सुनती हैं अपने ही शहर यानी कि गोंडा से।

जी, और ये सॉन्ग है हमारी मोहिनी तिवारी जी की डिमांड पे, जिन्होंने पहली दफा आज हमको कॉल किया था। और इसके बाद में हमने जो नेक्स्ट मैसेज देखा है वो हमारे राहुल तिवारी जी, बड़े दिनों बाद हमारी युवा पत्रकार महोदय हमारे बीच में। और शैलेंद्र जी, वाकई हमें भी कभी कभी याद आती है, याद नहीं भी आती तो कभी कभी हिचकी आ जाती, तो मैं सोचती मुझे याद कौन कर रहा है आखिर में। मुझे मालूम है आप सभी का प्यार है जो कभी कभी हिचकी बनकर हम तक आ जाता है। फिलहाल ऐसा ही एक यादगार नगमा आप

भाई इतना दर्द भरा नगमा, इतनी यादें कहाँ से सजो खिलाई थी मोहिनी जी। हम भी कहीं गुम होने को तैयार हो गए। हमने कहा भैया बस अब इससे ज्यादा सैलाब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये नेक्स्ट वाली डिमांड होगी हमारी प्यारी गुलफशान अंसारी जी की। उससे पहले चंद लाइन है और उसको हम पढ़ना चाहेंगे। सब सावन जी लिखते हैं, मुंबई बोरीवली से हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने में मशहूर थे, जब अपना दिल टूटा तो हुनर ही भूल गए। वाह क्या बात है भाई, ये बात तो बड़ा ही 100% सच लगी हमको। और नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, किसी ने कहा था कि तुम किसी और का हाथ क्यों नहीं थाम लेते, मैंने कहा वह शख्स तन्हा कहीं मिल गया तो क्या जवाब दूंगा। ओहो क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूब। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। एंजॉय करिए इस ट्रैक को फ्रॉम मूवी गदर।

हाँ जी, स्टूडियो का क्लॉक बोल चुका है कि केवल और केवल 12 मिनट मेरे पास में और बचा हुआ है, तो चलते हैं रफ्तार को बढ़ाते हैं और रीना शर्मा जी की डिमांड आप तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे प्यारे लिसनर समरीन जी के, फिर होंगे हमारे रमेश जी महाराज से, फिर होंगे हमारे सबरी सावंत जी, और इतने गाने तो मैं पूरी तरह से लेने की कोशिश करूंगी, बाकियों के लिए हो सकता है मैं माफीनामा जारी कर दूंगी।

जी और अब बढ़ेंगे समरीन जी के उस डिमांड की ओर जो कि हमको बेहद पसंद है। भाई समरीन जी थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सी डिमांड के लिए, और हमें लगता है अब की सारी जितनी भी डिमांड आ रही है वो सब मेरी पसंद की है। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने अपना टेस्ट बताते बताते हमारे टेस्ट को भी उसमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू।

हम कुछ देख रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है मैम जी समझा लीजिए, तो हम यही कहेंगे हमारी प्यारी चंगोची के आप हैं महावीरा, और वीरानियां डरती नहीं है, भिड़ जाया करती हैं, वो आपको सता रहे तो आप भी उन्हें सता लीजिए, बस ऐसी जिंदगी कट जानी है नोकझोंक में। बड़ा अच्छा सफर होता है जब दोस्ती आती है किसी की, और दोस्ती में तो ये सब चलता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, हम कुछ नहीं

इनके नग में रह जाएंगे। उनका नाम है सार्थक साहू जी, निब्बट जी, इसके अलावा देव प्रसाद जी और उसके बाद में सबा जी हैं हमारे बीच में और मुस्तफा जी। आप सभी के गाने आज मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करिएगा, और जाते तो कोशिश करूंगी रीत लाल जी आपका गाना जरूर ट्यून करूं। इस गाने के बाद होंगे हमारे प्यारे सावरे बलम जी यानी कि सबलू सावन जी। एंजॉय करिए, बहुत खूबसूरत सा रोमांटिक ट्रैक है 90s का।

भाई का सिखाना मैं पूरा सुन पाती। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट और डिमांड की ओर, और चलते हैं सबलू सावंत जी की डिमांड की तरफ, और फिर आएंगे नेक्स्ट और लास्ट डिमांड लेके हम अपने प्यारे रीत लाल जी की।

भाई बड़ी ही मशक्कत करते होंगे आप गाना ढूंढने में, इतने मतलब पहली दफा मैं कोई गाना सुनती हूँ ऐसे वाले, तो मैं सोचती हूँ कहाँ से लाते हैं आप लोग। वैसे काफी अच्छा नगमा था, और आज की लास्ट डिमांड लेंगे हम नीत लाल जी की, और माफी चाहेंगे सार्थक साहू जी से, निबर जी से, और कौन कौन रह गया है भाई, और हमारे बीच में है शबा जी, और इसके अलावा देवी प्रसाद जी, निब्बर जी, और मुस्तफा जी। हाँ जी।

इतने सभी लोगों के गाने आज हम नहीं ट्यून कर पाएंगे और आज की लास्ट डिमांड हमारे रीत लाल जी की, और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलते हैं परसों, कल हमारा वीक ऑफ होगा, इसलिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ फन, अपनी जिंदगी को हरा भरा बनाते रहिए और पेड़ों में पानी डालते रहिए, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेत खलियान, और हर बृहस्पतिवार की तरह इस बार भी हम लोग बातचीत करेंगे कार्यक्रम में खेत खलियान में बकरी पालन पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मदन शुक्ला जी, जो कि रुपई डी ब्लॉक से आए हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपने बारे में बताएं।
1: सर, मैं मदन मोहन शुक्ला जी, रुपई डी ब्लॉक से आया हूँ। ग्राम पंचायत कुरासी है मेरा। मैं और पशुओं के साथ बकरी पालन भी करता हूँ। बकरी पालन से हर किसान को लगभग बकरी पालन और अन्य खेती या पशुपालन के साथ बकरी पालना चाहिए, उससे लाभ है। कम पूंजी में, कम लागत में अच्छी आय होती है। बकरी पालने से खाद मिलती है, हमें दूध मिलता है अगर हमें किसी प्रकार की आवश्यकता है, और धन लाभ बहुत ज़बरदस्त होता है
0: जी। तो सर, ये तो हुआ बकरी पालन से लाभ। आप सर, हम जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई अगर कोई नया बकरी पालन करना चाहता है तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले
1: पहले तो उसको उसके रहने के लिए शेड बनवाना होगा
0: जी।
1: शेड अगर कम पैसे में बनाना है तो कच्चा बना ले, घास फूस का बना ले। अगर ज़्यादा हाई पैमाने पर करना है तो अपनी व्यवस्था उसी तरह कर ले, पक्का बनवा ले
0: जी।
1: और कम बच्चे खरीदे, बकरियों का पहले बच्चे खरीदे, जो अपने क्लाइमेट मतलब अपने यहाँ अपने एरिया में जो बकरियाँ ज़्यादा सफल हो रही हों, ये उस विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि बकरियों की प्रजाति बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बेहतर प्रजातियाँ वही होंगी जो अपने यहाँ वातावरण में पलेंगी
0: जी।
1: इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके लिए अपने यहाँ ज़्यादातर बर्बरी बकरियाँ हैं, जमुनापारी हैं, ब्लैक बंगाल हैं, और देसी हैं। देसी मतलब जो हमारे आसपास क्षेत्रों में पाई जाती हैं उनको हम देसी बोलते हैं
0: जी।
1: इस तरह की बकरियां अगर किसान पालता है तो उससे बेहतर लाभ होता है उसको
0: जी। तो सर, अभी आपने सेट की बात की, तो अगर सेट बना रहे हैं तो कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, इसका माप कितना होना चाहिए?
1: अब माप तो जिस तरह से वो रखना चाहता है, ज्यादा बकरियां रखना है तो बड़ा बनाना है, कम बकरियां रखना है तो छोटा बनाना है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने पैमाने पर बकरियां पालना चाहता है
0: जी,
1: उस हिसाब से वो अपना बनावे
0: जी। सर, अगर मान लीजिए बकरी के कोटे या उसके बाड़े का रख रखाव जो है
1: जी, जी,
0: वो कैसे करें हमारे किसान भाई?
1: रख रखाव साफ सफाई थोड़ा विशेष ध्यान देनी होती है। बकरियों के लिए सबसे बेहतर होता है कि उनका साफ सफाई, उनके रहन सहन को विधिवत साफ किया जाए, चूना ब्लीचिंग वगैरह से उसको साफ किया जाए, और बराबर उस पर ध्यान रखा जाए, इस तरह बनाई जाए कि जिससे हवा उनको बराबर मिलती रहे, दोनों चारों तरफ से हवा उनको बराबर मिलती रहे, गर्मी हो या ठंडी। शाम को जब ठंडी का सीजन आएगा तो उसके लिए हम तिरपाल पन्नी जो भी व्यवस्था कर पाएंगे वो अपना लगाएंगे
0: जी। अब बकरी पालन की जो नस्लें हैं सर जी, वैरायटी जो है उसकी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं अपने यहाँ जो मंडल में?
1: प्रजातियां तो बहुत हैं, लेकिन अपने यहाँ तीन चार जिलों में मंडल मान लीजिए तो यहाँ बर्बरी बकरियाँ, जमुनापारी हैं, ब्लैक बंगाल हैं, उसके बाद अन्य वैरायटियां जो हमारे क्षेत्रों में गांव में पाई जाती हैं
0: जी,
1: वो ज़्यादा सफल होती हैं। तो अगर हम पहली बार बकरियां पालना चाहते हैं तो पहले अपने लोकल बकरियां ही पालें
0: जी,
1: जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हमें पहले अपने क्षेत्रीय बकरियों को ही पालना चाहिए
0: जी। तो ये सर, जो अभी जमुनापारी और वैरायटियां आप बताएं
1: जी,
0: तो जमुनापारी की सर क्या नस्लें हैं, इसमें क्या मतलब इसका वो है, जो अगर किसान भाई अगर पालना चाहते हैं जमुनापारी तो उनको इससे क्या क्या लाभ हो सकता है?
1: जमुनापारी बकरियां बड़ी होती हैं, वेट हाइट वेट उनका दोनों बहुत ज्यादा होता है
0: जी,
1: वजन में वो कम से कम 1-1 क्विंटल की हो जाती हैं
0: जी,
1: और बच्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं, दूध ज्यादा देती हैं, 1-2 लीटर दूध वो बच्चा पिलाने के बाद भी उनसे मिल सकता है हमें
0: जी,
1: ये फायदा हमें उनसे होता है। अत्यधिक मतलब अलग से भी आए उससे हमें, अगर हम बकरियां ठीक ठाक से पालें तो हो सकता है उससे
0: जी
1: जी।
0: इस समय सर आपके पास कितनी बकरियां हैं?
1: इस समय हमारे पास 62 बकरियां हैं
0: जी, 62 बकरियां
1: जी हाँ, जिसमें 30 बकरियां बर्बरी हैं, बाकी सब लोकल ब्रांड
0: जी
1: जी।
0: उनके पोषण का क्या सर आप इंतजाम करते हैं? अगर कोई किसान भाई पर बकरी पालन किए हैं तो उनका जो पोषण है, जो खान पान जो है, क्या आप देते हैं, चारा में क्या देते हैं?
1: चारा में उन्हें हम दाना देते हैं, जैसे मकई है, गेहूँ है, चना है, इन सबको हम एक में मिक्स करके उन्हें खिलाते हैं। बाकी हरे चारे में पत्तियां खिलाते हैं, पाकड़ है, जामुन है, बरगद है, पीपल है, सहतूत है, इनकी पत्तियां हम खिलाते हैं। अगर हमें फील्ड कहीं ठीक बड़ा मिला तो उसमें चराते भी हैं
0: जी
1: जी।
0: तो सर अभी आपने हरा चारा, जैसे ठंडक का मौसम चल रहा है तो चारा की जो मात्रा है कितना देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि किसान भाई हरा चारा दे देते हैं तो पशु को नुकसान पहुंचता है, मतलब उनको काफी जैसे ठंड लग जाता है।
2: जी जी।
0: तो ये किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें अगर बकरी पालन किए हैं तो?
1: गर्मी हो या ठंडी, हरा चारा तो हमें देना ही देना है
0: जी।
1: 30% हमें हरा चारा देना है, 70% मुझे ड्राई चारा देना है, जैसे भी हो
0: जी।
1: उसमें भूसा भी हो सकता है
0: जी,
1: उसमें दाना भी हो सकता है, हर तरह से मिला के उनको हम ड्राई सूखा चारा 70% ठंडियों में देंगे, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, दोनों में मुझे देना है। 30% से 40% उन्हें हमें हरा चारा देना है, चाहे पत्तियों के रूप में हो चाहे खेतों में चराई द्वारा मिले उन्हें
0: जी। सर चारे की बात हो रही है, अब जो गांव में बकरी पालन किए हैं
2: जी,
0: वो हमारे किसान भाई जब चारा दे रहे हैं तो उसकी कोई मात्रा भी होती? कभी कभी देखा गया है कि भूसा जो होता है, भूसा हम खिलाते हैं बकरी को, उसमें और कुछ भी जो मोटे अनाज होते हैं वो भी डालते हैं, तो क्या सर उसमें, अभी ठंडक चल रहा है तो ये किसान भाई अगर बकरी को दे रहे हैं तो उसमें भी कोई मात्रा होता है कि एक बकरी
1: ठंडक में? हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि
0: जो
1: दलहन की भूसी या दलहन जैसे चना, वो चना है, मटर है, मसूर है, उड़द है, सोयाबीन है, कुछ भी दलहनी चीजें हमें ज्यादा देनी है ठंडी में
0: जी।
1: उन्हें चाहे उसका छिलका दें या उसका दाना दें या उसको एक दूसरे में तोड़ा के दें, जैसे भी हमें देना है। भूसे के साथ अगर हमें देना है तो आधा 50% का अनुपात होगा, 50% भूसा होगा और 50% ये मिक्सचर दाना होगा हमारा, जिसमें कई प्रकार के दालें होंगी
0: जी,
1: ये हमें देना होगा
0: जी। तो नवजात जो बच्चे होते हैं बकरियों के
2: जी,
0: उनका देखभाल किसान भाई कैसे करें, कब करें इनका? जैसे मान लीजिए बकरी के जो बच्चे हैं, इस समय ठंडक है तो उनका देखभाल किन किन बातों का ख्याल रखें किसान भाई की जो बच्चे हैं बकरी के, वो बच सकें और उनका देखभाल अच्छे से हो सके?
1: ठंडियों में बच्चों को नमी से बचाना है हमें, सबसे पहले मुझे उन्हें नमी से बचाना है, किसी भी प्रकार की उन्हें नमी ना लगे, जहाँ हम उनको रखते हैं वहाँ नमी ना बनने पाए, हम हमेशा उसको सूखा रखें। दूसरी बात कि हमें उन्हें समय समय पे दूध पिलाना चाहिए, कम से कम दिन में 3 बार
0: जी,
1: दिन में 3 बार हमें उन्हें दूध पिलाना है। उसके बाद उन्हें बराबर देख रेख में रखना है, धूप में रखना है, शाम को हमें इस तरह से रखना है उन्हें कि हवा ना लगे उन्हें विशेष रूप से
0: जी।
1: माओ के साथ उन्हें कम से कम रखना है रात में
0: जी,
1: जब तक ठंडी बहुत ज्यादा होती है तब तक उन्हें कम से कम रखना है। उनके लिए हम अलग से कोई व्यवस्था करें जिससे उन्हें गर्मी लगे, जैसे हम बल्ब लगा दें, हाइड्रोजन लगा लें, या जैसे भी गर्मी पहुंचाने के लिए कोई भी व्यवस्था हमें करनी होगी
0: जी।
1: जी
0: तो सर अभी हम लोगों ने जाना कि बकरी के जो बच्चे हैं उसके रख रखाव, अब सर हम जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई किसान बकरी पालन करना चाह रहा है, नए नए जो हमारे किसान भाई हैं उनके मन में सवाल चल रहा होगा कि हम भी बकरी पालन करें, तो सर उसमें कितनी पूंजी लगती है? मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अगर मान लीजिए हम बकरी पालन करना चाहते हैं तो, अगर मान लीजिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितनी पूंजी लगती है, कितनी रकम लगती है जो किसान भाई बकरी पालन अच्छे से कर सकें?
1: देखो पूंजी तो लगेगी, पूंजी से हम कैसे डरेंगे, पूंजी से डर के तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे
0: जी, बिल्कुल।
1: इसलिए पूंजी तो लगेगी, लेकिन अन्य और पशु जैसे हम रखते हैं उनसे तो कम इसमें लगती है और आय बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम पूंजी से ना डर के और इसको करें। बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं, बहुत बकरियों पे बहुत खर्चा नहीं आता है
0: जी,
1: बकरियों पे अन्य पशुओं की अपेक्षा बहुत कम खर्चे आते हैं
0: जी,
1: और अन्य पशुओं की अपेक्षा इसमें लाभ भी बहुत ज्यादा होता है
0: जी।
1: पैसा तो लगेगा भाई, जब हम कुछ करेंगे तो पैसा तो लगेगा, लेकिन पैसे को ध्यान में न रखते हुए हम ये सोचें कि हमें करना कैसे है, करना है
0: जी।
1: जी
0: सरकार द्वारा भी सर इस पर कुछ लाभ या सब्सिडी भी?
1: हाँ, बहुत दिया जाता है। सरकारी योजनाएं बहुत हैं बकरियों पे
0: जी,
1: अन्य पशुओं की तरह बकरियों पे तो बहुत बेहतर है
0: जी,
1: लेकिन हमने अब तक इस पे कोई ट्राई नहीं किया है
0: जी।
1: जी
0: अगर अन्य किसान भाई अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो सर वो कहाँ से संपर्क करें?
1: ये मिलेंगे यहाँ जो हमारे वो होता है पशु चिकित्सा केंद्र
0: जी,
1: हर ब्लॉक में पशु चिकित्सा केंद्र है, वहाँ डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर उन लोगों को सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं। हमें भी बुलाया गया था लेकिन संयोग से हम नहीं कर पाए, अब तक उनसे संपर्क नहीं कर पाए और ना कुछ लिया
0: जी।
1: जी
0: सर बकरियों के रोग एवं बचाव, जैसे सर इसमें काफी बीमारियां भी होती हैं
1: जी, जी
0: खुरपका भी हो जाता है कभी कभी बकरियों में, तो सर इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है और उसका निदान क्या है?
1: जैसे बकरियों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे खुरपका होता है, मुंह पका होता है
0: जी,
1: और इनके नाक निकलने लगता है बहुत पतला होके इसको हम पीपीआर एफएमडी तरह तरह की बीमारियां कहते हैं
0: जी।
1: इनके इनको चेचक भी होता है
0: जी।
1: तो इन्हें बचाने के लिए हम समय समय पर टीका लगाते हैं
0: जी।
1: टीका जैसे हम पहला टीका लगाएंगे एफएमडी का
0: जी,
1: उसके बाद 21 दिन के बाद हम लगाएंगे पीपीआर का
0: जी।
1: ये टीका तो हमें नियमित लगाना ही लगाना है अगर बीमारी से बचाना है तो। ये दो टीके और कई प्रकार के टीके हैं, लेकिन दो तो बहुत ही आवश्यक टीके हैं जो हमें समय समय पर एक साल के अंदर एक बार लगाना ही लगाना है। वैसे इनका वो असर तो होता है 3 साल तक, जैसे पीपीआर का टीका है 3 साल तक काम करता है बकरियों में, लेकिन हम 3 साल का न बैठ करके समय समय से लगाते हैं, उससे नुकसान भी तो नहीं है हमारा कुछ
0: जी। बिल्कुल।
1: और हमारे स्वास्थ्य केंद्र ये जो है पशु केंद्र, वहाँ फ्री में लगता भी है
0: जी।
1: वो डॉक्टर जाते हैं, लगवाते हैं फ्री में, केवल हमें बताना है कि हमारी इतनी बकरियाँ अभी इस स्थिति में हैं
0: जी।
1: 3 महीने के बाद ही लगेगा ये सब टीके
0: जी।
1: बच्चे जो हैं वो जब 3 महीने की आयु क्रॉस करेंगे तभी सारे टीके लगाए जाएंगे
0: जी। सर और भी बीमारियां उसमें कुछ होने का, इस समय जैसे ठंडक चल रहा है तो इनमें और भी?
1: हाँ, ठंडक में लकवा की बीमारी ज्यादा होती है
0: जी। तो उससे हमारे किसान भाई को कैसे बचाएं अपने बकरियों को?
1: इनसे बचने के लिए हम टीका लगाएंगे
0: जी।
1: टीका लगाते हैं और इन्हें हम नमी से बचाएंगे
0: जी।
1: लकवा की बीमारी ज्यादातर नमी की वजह से होती है। हम कहीं दिन में सूखे में रखे उनको, खूब धूप लगी उनको, और शाम को गीले में बैठे, अगर बैठी तो सुबह कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा उन्हें सूखी जगह पे ही रखते
0: जी।
1: जी
0: जी। तो सर अब ये तो बकरियों के रोग एवं अन्य बचाव जैसे है या टीकाकरण है, इस पे हम लोग बातचीत कर लिए। अब सर इसका जो बकरी का सर प्रशिक्षण है
1: जी,
0: ये कहाँ पे दिया जाता है? मान लीजिए कोई किसान भाई इसका प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वो सर कहाँ पर लें?
1: इसके कई जगह प्राइवेट भी लोग देते हैं, लेकिन बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा
0: जी,
1: ये भारत सरकार वो उपक्रम है, और यहाँ हम भी गए हैं वहाँ 15 नवंबर से 21 नवंबर 2022 में मैंने वहाँ से प्रशिक्षण लिया है
0: जी।
1: और वहाँ का प्रशिक्षण बहुत ही बेहतर रहता है, वहाँ के बहुत वैज्ञानिक लोग बहुत ही मतलब जानकार लोग
0: जी,
1: और बहुत बढ़िया हम लोगों को बताए हैं, उसी तरह से हम लोग कर भी रहे हैं और बढ़िया अच्छा चल रहा है
0: जी।
1: जी
0: तो अभी सर जो टीका मतलब प्रशिक्षण जो मतलब हम लोग वहाँ मथुरा, किसान भाई अगर कोई लेना चाहता है प्रशिक्षण तो मथुरा जाना पड़ेगा
1: जी। मथुरा जाना पड़ेगा
0: जी।
1: उसकी ऑनलाइन तो कोई वो होता है, वेबसाइट होती है, पता लगा के उसको अपना रजिस्ट्रेशन करावे
0: जी,
1: और उसके बाद उनको वहाँ से मैसेज आएगा, उसी पे आप जिस दिन जब बुलाया जाएगा तो जाएंगे करेंगे वहाँ
0: जी। मंडल में भी सर कोई प्रशिक्षण यहाँ पे बनाया गया है सर कि जहाँ से किसान भाई ले सकते हैं?
1: बकरी का तो ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं
0: जी। अच्छा सर अपने मंडल में सर कौन कौन सी जो प्रजातियां हैं वो पाली जाती हैं, जैसे अपने यहाँ गोंडा अवध में सर बात करें यहाँ पर मतलब?
1: यहाँ सर सबसे सफल बकरियां हैं जमुनापारी और बरबरी
0: जी।
1: दो ये बकरियां बेहतर हैं और इनसे इनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, और ये कई कई बच्चे भी देते हैं
0: जी,
1: और 14 महीने में ये 2 बार बच्चे दे चुकी होती हैं
0: जी।
1: जी दो दो तीन तीन बच्चे भी देती हैं, लेकिन अगर 1 साल 14 महीने में इनको, इनका साल 14 महीने का मान लीजिए, लोग कहते हैं कि साल में बच्चा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में 1 महीना गैप नहीं होगा तो कहाँ से वो प्रेग्नेंट होंगी
0: जी। बिल्कुल।
1: तो ऐसा कुछ नहीं होता है, 14 महीने में 2 बार बच्चे देती हैं
0: जी
1: बरबरी बकरियाँ
0: जी।
1: जमुनापारी की भी यही स्थिति है, लेकिन जमुनापारी में एक दिक्कत है कि ये ज्यादातर 1 बच्चा देती हैं
0: जी,
1: लेकिन इनके बच्चे बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ और बड़े वजन होते हैं अपने समय पे
0: जी।
1: बाकी हम लोकल बकरियां पालें, लोकल बकरियां तो बहुत बेहतर हैं, जो हमारे गांव के आसपास
0: जी
1: पाई जाती हैं
0: जी।
1: वो बकरियां बहुत ही बेहतर हैं, इनमें रोग कम पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार के रोग ना के बराबर होता है। अगर इन्हें हम पालें और इन्हीं से हम आगे बढ़ें तो ये बहुत बेहतर काम होगा
0: जी।
1: जी
0: सर अब हम लोग बात कर लिए वैरायटी प्रजातियां और कौन कौन सी बकरियां जो हैं वो नस्लें जो अच्छी होती हैं। अब सर सर्दियों का मौसम चल रहा है इस समय
1: जी,
0: तो इस समय जो बकरियां जो गांव में हैं मतलब
1: जी,
0: तो उनमें सर जो गांव के सर किसान भाई हैं या बहन जो हैं बकरी पालन किए हैं सर, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें सर?
1: ठंडियों में उन्हें ठंडी से बचाना है
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात है कि ठंडी से उन्हें बचाना है, और ठंडी का मतलब कि नमी से बचाना है
0: जी।
1: वो जहाँ उनका रख रखाव जहाँ वो रह रही हैं वहाँ हम कभी भी किसी भी तरह से कभी उनकी जमीन गीली ना होने दें
0: जी,
1: कभी हम फर्श पे उन्हें ना रखें, कच्ची मिट्टी पे रखें, क्योंकि मिट्टी जब गीली होगी तो हम दोबारा उस पे मिट्टी डालते रहेंगे, वो सूखा करते रहेंगे
0: जी।
1: और अगर हम फर्श पे रखते हैं तो कहाँ से रोज फर्श खोदेंगे और कहाँ से रोज फर्श लगाएंगे, तो ये सब समस्या ठंडियों में होती है, इसलिए हम कच्चे ही फर्श पे उन्हें रखें
0: जी।
1: जी
0: इसकी मंडी सर कहाँ पे है?
1: मंडी हमारे बहराइच में है हरिद्वार को मंडी लगती है, आप बेच भी सकते हैं वहाँ, खरीद भी सकते हैं। बहुत बड़ी मंडी लगती है वहाँ, तो बहुत दूर दूर से बकरियाँ आती हैं बिकने के लिए। हम वहाँ से बकरी खरीद भी सकते हैं और अपनी बकरी बेच भी सकते हैं।
0: जी
1: जी
0: जी, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होते हैं। हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं बकरी पालन पर, और जानकारी दे रहे हैं मदन शुक्ला जी, जो कि रुपई डी ब्लॉक से हैं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
3: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लग ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है खेत खलिहान, और आप सुन रहे हैं खेत खलिहान में। आज का विषय है बकरी पालन। दोस्तों, बकरी पालन कई सारे श्रोताओं और किसान भाइयों का वो था कि बकरी पालन पे बातचीत किया जाए, तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मदन शुक्ला जी, जो कि रुपैरी ब्लॉक से आए हैं। सर, आपका एक बार पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सर्दियों के मौसम में बकरियों का देखभाल कैसे करें, और हम आशा करते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको जानकारी मिल गई है। अब अगला क्वेश्चन सर हम जो करेंगे वो गर्भधारण का समय क्या होता है। बकरियों में सर गर्भधारण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, और उसका जो समय है वो क्या होता है? सर,
7: इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता
6: जी।
7: बस हमें ध्यान रखना है कि हमारी बकरियां प्रेग्नेंट जब हों तो वो समय दिसंबर और जनवरी का हो, और उधर अप्रैल मई का हो
6: जी,
7: जिससे हमारे जो बच्चे उनसे होने वाले हैं, प्रेग्नेंट फीमेल मेल जो भी होने वाले हैं, उन्हें ठंडी का मौसम न मिले। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि ये कब प्रेग्नेंट होंगी
6: जी।
7: इसको हमें ध्यान में रखते हुए उनको क्रॉस करवाना चाहिए बकरियों को। विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जो बच्चे होंगे वो ठंडी में ना पड़े
6: जी।
7: इससे हमें काफ़ी कुछ रोग से, उनके मृत्यु दर से काफ़ी कुछ राहत मिलने वाली होती है
6: जी।
7: जी
6: सर, अभी आपने कहा कि जैसे ठंडक का वो क्रास ना हो, तो सर ये कैसे, मतलब ये जो किसान भाई हैं वो किन, मतलब क्या क्या बात का ध्यान रखें कि वो क्रास ना हो ठंडक के मौसम में?
7: बकरियां 5 महीने में बच्चा देती हैं
6: जी,
7: और हम इस व्यवस्था में हम ये ध्यान रखें कि हमारी बकरियां जब भी बच्चा देंगी तो वो ठंडी समय में ना आए। जैसे इधर दिसंबर जनवरी 2 महीना अगर हम बचा ले जाते हैं उनको
6: जी,
7: इससे पहले क्रॉस करवाने से पहले हम ये थोड़ा ध्यान रखें, 2 महीने आगे पीछे अगर कर लें तो हमें काफ़ी कुछ मृत्यु दर से राहत हो जाती है, क्योंकि ठंडी में बच्चों की मोर्टालिटी ज़्यादा होती है
6: जी।
7: जी
6: अब सर, हम गर्भधारण का समय जान लिए, और उसका जो है वो क्रास का जो आपने बताया जिक्र किया सर, वो भी जान लिए। असर अब हम लोग बात करेंगे सर नस्ल सुधार जो है, वो बकरियों में एक सर नस्ल सुधार है, वो हमारे किसान भाई कैसे करें?
7: हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है
6: जी।
7: इसमें यह है कि अगर हम चलो किसी तरह से बकरी पालना चाहते हैं, पैसे का अभाव है
6: जी,
7: कम पैसे से हम कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि हम बकरी खरीदें, अपने लोकल बकरियां खरीद लें जो सस्ती पड़ती हैं, बच्चे खरीदें, प्रेग्नेंट बकरियां कोई ना खरीदें, हम बच्चे खरीदें और फीमेल खरीदें। फीमेल खरीदने के बाद हमें ब्रीडर कहीं बाहर से लाना है
6: जी।
7: नस्ल सुधार करने के लिए हम कहीं से ब्रीडर ले आएं जो अच्छी प्रजाति का हो, जैसे बर्बरी हो, जमुनापारी हो, ब्लैक बंगाल हो, जो भी अच्छा लगे हमें हम ले आएं, और उसी से हम अपने बच्चों को जो यहाँ से खरीदे हैं लोकल से उनसे उससे क्रॉस कराएंगे। तो तीन बार अगर लगातार हम एक दूसरे को ऐसा करते रहे तो हमारी नस्लें, ये जो हम पुरानी बकरियाँ गांव वाली रखे हैं, ये हट जाएंगी, तब हमारे पास बकरियाँ हो जाएंगी वो जो हम बकरा लाए थे, जो ब्रीडर लाए थे, उस जाति के सारे लोग, सारी प्रजातियां हमारी बदल जाएंगी
6: जी।
7: इस तरह से हमें डबल राहत मिलेगी, एक तो पैसा बचेगा हमारा, अच्छी नस्ल खरीदने के लिए जो लगाना था वो बच गया
6: जी,
7: और दूसरा हमारे जलवायु वाली बकरियां हमारे पास पल बढ़ रही हैं, तो हम रोग से भी निदान पाते हैं उससे
6: जी।
7: ये स्थितियां नस्ल सुधार की होती हैं
6: जी।
7: जी
6: तो सर ये नस्ल सुधार में सर जैसे अभी आपने कहा कि मतलब अच्छा सर बात हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो गांव के किसान भाई या जो बहन बकरी पालन किए हैं वो अगर नस्ल की सुधार करना चाहते हैं, जो देसी जो गांव की बकरियां होती हैं उनके लिए क्या है मतलब?
7: जैसे बकरियां वो अपनी रखें जो उनके गांव में आसपास पाई जाती हैं वो रखें, लेकिन उस नस्ल सुधार के लिए हमें ब्रीडर बाहर से लाना होगा
6: जी। ब्रीडर
7: हमें बाहर से लाना होगा
6: जी,
7: मेल बकरा हमें बाहर से लाना होगा, और उसको हम जब लाएंगे उससे क्रॉस कराएंगे तो उसके जो बच्चे होंगे वो हमारे ब्रीडर के उसमें जाएंगे, ब्रीडर की सापेक्ष उनके बच्चे होंगे, तो हमारा नस्ल धीरे धीरे दो तीन बार में सुधर जाएगा, और ये हमारी बकरियां जो हम पहले से पाल रखे हैं ये लुप्त होती जाएंगी
6: जी।
7: जी
6: तो सर अब नस्ल सुधार के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब हम लोग बातचीत करेंगे सर जो बकरियां जो बीमार होती हैं उसकी पहचान किसान भाई कभी कभी होता है कि सर वो अनदेखा कर देते हैं और वो जाके आगे बीमारियां जो हैं वो रूप धारण करके उनको कभी कभी ये होता है कि वो बकरियां ख़त्म हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं उन बकरियों की, कभी कभी सर बीमारियां इतनी लंबी हो जाती हैं कि किसान भाई उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो ये उसकी पहचान जो है वो किसान भाई कैसे करें?
7: देखो बकरियों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं
6: जी,
7: बुखार भी होता है, पीपीआर भी होता है, लंगड़ाती भी हैं, मुँह पका, सर पका, खुर पका, तरह तरह बहुत बीमारियां होती हैं जिन्हें हम समय से देखते देखते रहते हैं, तो उससे हमें थोड़ा बहुत राहत होती है। बाकी जब बीमार हुई तो हमें देखेगा कि हमारी बकरी आज बीमार है
6: जी,
7: जैसे वो चारा नहीं खाएगी, झुंड में बैठेगी नहीं, अकेले कहीं जाके बैठेगी, बकरियों का एक स्वभाव होता है कि झुंड में बैठना, अगर कोई बकरी बीमार है तो वो झुंड में नहीं बैठेगी, वो कहीं अलग जाके बैठेगी
6: जी।
7: तो इस तरह से हम उसको पहचान लेंगे कि हमारी बकरी बीमार है। हाँ, जो बकरी बीमार है उसको हम उस शेड में बाड़े में नहीं रखेंगे जहाँ अन्य स्वस्थ बकरियाँ हैं
6: जी,
7: इसे हमें बहुत विशेष ध्यान रखना। एक बकरी अगर बीमार है तो उसके लिए हम अलग कहीं कोई कमरा बनाएंगे, ट्रीटमेंट कमरा कह लीजिए
6: जी,
7: दवा कमरा जो भी मतलब रखेंगे, उसकी देखरेख, उसकी दर दवा जो भी करना है हमें, हम अलग से करेंगे, ना कि अन्य बकरियों के साथ रखेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है
6: जी।
7: ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है
6: जी।
7: जी
6: सर अभी आपने कहा कि खुरपका और लकवा जैसे बीमारी हो जाती है
7: जी, जी।
6: तो इससे जो किसान भाई हैं इसको बचने के लिए जो बकरियों को उनको क्या करें शुरुआती में, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं कि ठंडक में या गर्मियों के दिनों में बकरियों पर वो क्या नाम है आ जाती हैं, तो इससे किसान भाई कैसे बचाएं?
7: इसके लिए सबके लिए मार्केट में टीके हैं
6: जी,
7: और टीके अगर हम समय समय से
6: जी
7: समय समय से लगाते रहेंगे
6: जी,
7: तो इतनी बीमारियां नहीं आएंगी, बीमारियां तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि बीमारियां नहीं आएंगी, तो चिटपुट आएंगी, उसको अपना दवा होता रहेगा, देखते रहेंगे, कई प्रकार की दवाएं हैं इनके लिए, होम्योपैथिक में भी दवा है, एलोपैथिक दवाएं भी हैं, और उससे काफ़ी राहत भी होता है, हम लोग तो कर रहे हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। लकवा हमें बचाना है तो नमी से बकरियों को बचाना है, रात की नमी से, जहां हम बैठाते हैं उनको रखते हैं वहां हमें अगर नमी से उन्हें हम बचाते रहे तो उन्हें किसी प्रकार का लकवा बीमारी नहीं आएगी
6: जी। सरकार द्वारा भी कोई टीका का वो प्रावधान किया गया?
7: हाँ, बहुत है, स्वास्थ्य केंद्र जो है, पशु स्वास्थ्य केंद्र जो हर ब्लॉक में होता है, वहाँ सारे टीके लगभग आते जाते रहते हैं
6: जी।
7: और हम समय से डॉक्टर के अगर संपर्क में रहते हैं या उनसे मिलते हैं तो वो लोग लगवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट
6: जी,
7: कोई पैसा भी नहीं पड़ता है
6: जी।
7: ऐसा हम करते हैं और हमारे यहाँ होता भी है
6: जी।
7: जी
6: सर, अपने यहाँ जो बकरियाँ हैं वो सब में टीका लग चुका है?
7: जी हाँ, टीका जी। लगता है, हम हर एक साल पे टीका लगवाते हैं, 6 महीने पे भी लगाते हैं कुछ टीके और कुछ 1 साल पे लगवाते हैं
6: जी।
7: जी कभी कभी अगर दवा नहीं मिली, नहीं आई है अस्पताल में, तो हम मार्केट से भी खरीद लेते हैं, बहुत महंगी है नहीं
6: जी।
7: जी सस्ती भी है।
6: अगर कोई किसान भाई टीका के लिए संपर्क करना चाहता है या लगवाना चाहता है वो, तो कहाँ जाए, कोई दुकान से ले?
7: नहीं, दुकान से क्यों खरीदे, जब हमारी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था है, हमारे पशु स्वास्थ्य केंद्र पे सारे टीके लगभग आते जाते रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, तो हम समय समय से अगर डॉक्टर साहब से मिलते रहेंगे तो हमारी व्यवस्था होती रहेगी, हम क्यों पैसा बर्बाद करने मार्केट को जाएंगे।
6: जी बिल्कुल। तो सर, अब ये हम लोग बातचीत कर रहे थे सर टीके के बारे में और उसके बचाव के बारे में
7: जी।
6: अब सर हम लोग जानेंगे कि सर बकरियों में कभी कभी देखा गया है कि सर उनके पेट में कीड़े हो जाते
7: जी,
6: हैं
7: हाँ, हाँ।
6: तो इसकी पहचान कैसे करें हमारे किसान भाई बहन?
7: इसमें ऐसा है कि कीड़े 2 प्रकार के होते हैं, इनके शरीर में भी ऊपर कीड़े पड़ते हैं जो इनके चमड़ियों में चिपके रहते हैं
6: जी,
7: और एक कीड़ा पेट में होता है
6: जी,
7: जैसे हम आदमियों के भी होता है उसी
6: जी,
7: तरह
6: जी,
7: उनको
6: जी,
7: भी होता है
6: जी।
7: तो उसके लिए हम हर 6 महीने पे
6: जी,
7: अंदर के कीड़े मारने के लिए हर 6 महीने पे
6: जी,
7: हम दवा देंगे उनको। अगर हम दवा देते हैं एलोपैथिक, तो एल्बोमार नाम से या कई नाम से दवा मार्केट में आती है, वो हमें वेट के अनुसार, बकरियों के वेट के अनुसार डॉक्टर से संपर्क करके देना होता है
6: जी।
7: और अगर हम उस तरह देना चाहते हैं जैविक तरीके से, तो उसके लिए नीम की पत्ती है, बकायन की पत्ती है, जो देहात में बहुतायत पाई जाती है
6: जी,
7: उसको उनको हम खिलाते हैं, 2-3 घंटे भूखा रखते हैं, जब वो काफ़ी भूख से परेशान हो जाती हैं तो उन पत्तियों को वो खा लेती हैं, तो उससे भी हमें कीड़ों से निजात मिल जाता है। रही बाह्य कीड़ों की, जो पीठ पे, देह सारी शरीर पे होता है, तो उसको हम पहचानेंगे कि जब वो बकरियाँ कहीं खड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं अपनी पीठ रगड़ते हुए चलेंगी, दीवार पा गई, पेड़ पा गई, तो हमें ये आभास हो जाता है कि अब इनके शरीर पे बाहरी कीड़े हैं
6: जी।
7: उसके लिए हम मार्केट से दवा लाते हैं और एक वो बनाते हैं टैंक टाइप का, जिसमें एक स्लोप होता है एक तरफ से और उसी में हम पानी भरते हैं, वो पक्का होता है, सीमेंटेड होता है
6: जी,
7: और उसमें हम उनको वो दवा डाल देते हैं
6: जी,
7: और एक एक बकरियों को उसमें डालते रहते हैं, वो थोड़ा सा तैरेंगी फिर ऊपर आ जाएंगी
6: जी,
7: उससे उनकी सारी शरीर भीग जाती है और उनके बाह्य कीड़े सब समाप्त हो जाते हैं
6: जी।
7: इस तरह की व्यवस्था से हम लोग उससे निजात पा लेते हैं। रही बात पेट के कीड़ों की, तो इसको कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम देखेंगे जब वो बीट करेंगी तो वो जैसे तुलसी का माला, लोग माला वाला पहनते हैं, उसे माले की तरह वो मतलब एक दूसरे से लिपट के निकलेगा
6: जी,
7: तो हम ये समझ लेंगे कि अब इनके पेट में कीड़े हैं
6: जी,
7: उसकी दवा हम देंगे। वैसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें 6 महीने पे देना है तो देना है, अगर हम 6 महीने पे देते रहेंगे तो यह समस्या कभी नहीं आएगी
6: जी।
7: जी
6: सर, अभी आपने कहा कि नीम का पत्ती और बकायन का पत्ती,
7: जी हाँ,
6: ये सर गांव की जो दवाई है, तो ये किसान भाई कब खिलाएं इसको, कितनी मात्रा में इसका पत्ता दें, क्योंकि
7: इसका कोई मात्रा नहीं है, आप सुबह देना होता है इनको खाली पेट
6: जी,
7: खाली पेट देने के लिए हम शाम को इनको खिलाएंगे चराएंगे जो भी करते हैं, रात में डाल देंगे बाड़े में, सुबह उनको हम 2-3 घंटा कोई चारा नहीं देंगे कि वो भूख उनको काफी तेजी से भूख लग जाए,
6: और
7: वो पत्तियां हम सुबह काटेंगे या शाम को ही काट के रख लेंगे और उसको उनको डाल देंगे, और जब डालेंगे तो भूख ही रहेंगी तो तेजी से खा लेंगे उसको
6: जी,
7: जब खा लेंगी तो उससे भी हमें राहत, काफी कुछ राहत मिल जाती है, और ये हमें हर 6 महीने पे करना होता है
6: जी।
7: अगर हम हर 6 महीने पे करते रहेंगे तो हमें किसी प्रकार का मतलब बाहरी दवा, एलोपैथिक दवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे बकरियां बच्चे सब स्वस्थ रहेंगे
6: जी।
7: जी
6: सर, कोई और घरेलू उपाय जो है जो हमारे किसान भाई दे सकते हैं बकरियों?
7: हाँ, बकरियों में और कई प्रकार के, जैसे उनको लीवर टॉनिक देना होता है, लीवर उनका जल्दी जल्दी खराब होता है
6: जी,
7: ऐसी स्थिति में हम उन्हें अगर घर से देनी है
6: जी,
7: एलोपैथिक नहीं देना है हमें, जैविक तरीके से देना है, तो हम उनके लिए इमली की पत्ती
6: जी,
7: इमली की पत्ती को उबालेंगे, जैसे 10 लीटर पानी ले लिया और उसमें 10 किलो 5 किलो जो भी हमें आवश्यकता महसूस हो रही है पत्ती डाल दिया, इमली की पत्ती
6: जी,
7: और उसको इतना गर्म किया, तब तक उबाला जब तक वो आधा नहीं होगा, 5 का 10 नहीं हो जाता तब तक उबालते हैं
6: जी,
7: और उबाल के उसको हम रख लेते हैं
6: जी,
7: और उसी को हम बकरियों के वेट के अनुसार
6: जी
7: पिलाते हैं, तो उससे हमारे उनके लीवर मतलब कभी ख़राब नहीं होता है, काफ़ी कुछ राहत होती है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें मार्केट से लीवर की दवा अलग से खरीद के उन्हें पिलानी होती है
6: जी।
7: लीवर पे हमें विशेष ध्यान रखना होता है बकरियों के, क्योंकि ये तरह तरह के घास फूस खा लेती हैं, ऐसे भी खा लेती हैं जो मतलब नहीं भी खाना चाहिए
6: जी।
7: तो उन्हें लीवर उनका कहीं ना कहीं से गड़बड़ होने लगता है
6: जी।
7: तो लीवर के लिए हमें विकल्प बहुत कुछ है, हम दवा भी दे सकते हैं जैविक तरीके से भी और एलोपैथिक तरीके से भी।
6: सर अभी जैविक और एलोपैथिक की बात हो रही है, तो सर अगर हम एलोपैथिक से दे रहे हैं तो सर इसका कोई सिरप है जो?
7: हाँ, बहुत सिरप है, जैसे लिप52 है
6: जी,
7: लिवोमाइंड है, लिवोकाइंड है, तरह तरह के मार्केट में बहुत नामों से आते हैं
6: जी।
7: सबका नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन है काफी कुछ दवा है जो हम उनके वेट के अनुसार डॉक्टर से संपर्क करके ही देना होगा
6: जी,
7: अपने मन से नहीं देना होगा, कम ज्यादा हो सकता है, नुकसान भी कर सकता है
6: जी।
7: बच्चे जब उनके होते हैं बकरियों के कम आयु वाले, तो उन्हें हमें मिनरल टॉनिक मार्केट से खरीदना होता है, मल्टीपर्पज जो भी
6: जी,
7: जिसमें तमाम प्रकार के वो होते हैं, और कैल्शियम ये भी हमें देना होता है। अगर हम जल्दी ग्रोथ कराना चाहते हैं बच्चों को तो ये सब समय समय पर डॉक्टर की सलाह से देते रहते हैं, हम लोग देते रहते हैं, तो उनका वेट थोड़ा जल्दी तेजी से बढ़ता है
6: जी।
7: जी
6: तो सर अभी हम लोगों ने जाना कि ये बकरियों में कीट जो हैं, कीड़े पेट के जो होते हैं सर, ये इनको काफ़ी नुकसान भी कर देते हैं, पाचन क्रिया इनकी ख़राब हो जाती
7: जी,
6: है
7: जी।
6: और बकरियां दुबली पतली हो जाती हैं।
7: कीड़े पेट के हों चाहे बाहर के हों
6: जी,
7: वो उन्हें एक तरह से कह लीजिए कि चूस रहे हैं
6: जी।
7: अगर वो उस पर हम लोग काबू नहीं पा सकते, जब तक नहीं पाते हैं तब तक बकरियों का वेट बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ खाती हैं वो भी तो खा रहे हैं वो लोग,
6: बिल्कुल
7: वो जो मेहमान लगे हैं अंदर बाहर वो भी तो उसको खा रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें ये चाहे एलोपैथिक करें चाहे जैविक कर, कुछ तो करना ही करना है
6: जी।
7: जी
6: सर अब बकरियों में के ऊपर, सर ऊपर की बात करते हैं तो सर उनके बालों में कभी कभी देखा गया है सर किलनी लग जाती है।
7: तो वही कह रहे हैं वाह कीड़े, अभी बताए
6: जी
7: वाह कीड़े वही होते हैं, उनके लिए हम वही एक टैंक बनाते हैं
6: जी,
7: बड़ा सा
6: जी,
7: या टैंक अगर हम कम बकरियां रखे तो टैंक नहीं बना पाए हैं तो कोई टब लेते हैं कि जिसमें बकरियां खड़ी कर दें तो पूरी बकरियां डूब जाएं
6: जी,
7: तो उनका सर पकड़ के हम ऊपर कर लेते हैं, उसको उसी में डुबा के बाहर निकाल लेते हैं
6: जी,
7: तो भीग जाती हैं वो सब, जितने कीड़े बाहर के हैं जितने भी वो सब समाप्त हो जाते हैं उससे
6: जी।
7: इस तरह से उनको हम बाह्य कीड़ों से निजात दिला देते हैं
6: जी। तो सर अब हम लोगों ने कीड़े पेट के कीड़े एवं बचाव के बारे में जाने, अब सर हम लोग जानना चाहेंगे कि दूध एवं मांस के लिए जो बकरियों का चुनाव है वो हमारे किसान भाई कैसे करें?
7: दूध और मांस
6: जी,
7: ये जब हम बकरियों का देख रेख रख रखाव खान पान बहुत व्यवस्थित रखेंगे
6: जी,
7: तो बकरियों का मांस भी उत्पादन अधिक होगा और दूध का भी। दूध के लिए तो हमारे यहाँ जमुनापारी बकरियाँ जो होती हैं वो काफ़ी कुछ मानी जानी जाती हैं दूध के लिए
6: जी।
7: और बर्बरी में भी दूध पाया जाता है पर्याप्त, क्योंकि उनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो अगर हम उनका दूध निकालेंगे तो बच्चों का भी तो पोषण होना है
6: जी।
7: तो इसलिए हम जब दूध, अगर हमें दूध की व्यवस्था करनी है तो हमें जमुनापारी बकरियां रखनी होंगी, क्योंकि जमुनापारी अधिकतम एक बच्चे देती हैं
6: जी,
7: और उनके पास दूध 1-2 लीटर होता है
6: जी।
7: तो एक बच्चा 1-2 लीटर दूध नहीं पिएगा
6: जी, नहीं जी,
7: उसकी खुराक दिन 24 घंटे में 0.5 लीटर से अधिक नहीं होगी
6: जी।
7: तो हमें 1-1.5 लीटर दूध का उत्पादन अलग से होता रहेगा उससे, इसलिए हम जमुनापारी बकरी अगर पालें तो वो हमारे लिए दूध के लिए बेहतर होगा, अब मांस के लिए भी बेहतर होगा, काफ़ी कुछ वेट की होती हैं वो बकरियां, तो 100 किलो तक जाती हैं
6: जी।
7: और हमारी ये बर्बरी बकरियां, इनका वजन 60-70-80 से ओवर नहीं हो सकता, लेकिन इससे ये लाभ है कि ये हमेशा 2 बच्चे देती हैं, 2-3
6: जी,
7: सिंगल बच्चे नहीं देती हैं। तो इनसे ये लाभ है कि अगर वेट गेन थोड़ा कम हुआ तो बच्चे 2 हैं
6: जी,
7: तो दोनों का अनुपात लगभग ठीक होता है
6: जी।
7: जी
6: तो सर हम लोगों ने जाना दूध एवं मांस के लिए बकरियों का चुनाव कैसे करें, और अब सर हम लोग जानना चाहेंगे कि एक बकरी से कितनी कमाई होती है?
7: देखो बकरियां 14 महीने में 2 बार बच्चे देती हैं
6: जी,
7: और 2 बार बच्चे देने के कारण आमदनी तो अधिक होबे करेंगे
6: जी।
7: भाई 4 बच्चे अगर हम साल में उनसे तैयार कर रहे हैं और एक बच्चे की कीमत हम मान लेते हैं कि 5,000 मिनिमम
6: जी,
7: वैसे तो हम जैसे खिलाए पिलाएंगे वैसे वजन बढ़ता रहेगा, लेकिन 5,000 पर बच्चा मान ले तो 20,000 रुपए की हमें बचत दिख रही है। बकरी हमारी जो मैंने 5,000 या 10,000 की खरीदी है वो सेफ है
6: जी,
7: वो तो वो कीमत लिए खड़ी ही है
6: जी।
7: अब जो उसके बच्चे साल में 14 महीने में 4 बच्चे हुए या 2 बच्चे हुए, तो आमदनी बकरियों से तो बहुत हाई ही, बकरी से ज्यादा बेहतर किसी पशु में मतलब आय का व्यवस्था इतना ज़्यादा नहीं है जितना बकरियों से है
6: जी।
7: और हम तो चाहेंगे कि हर किसान बकरी जरूर पाले
6: जी।
7: जी
6: सर, अब बकरी से इतनी कमाई है तो सर अब आप जानना चाहेंगे कि अगर बकरी के पालन की ट्रेनिंग है वो हमारे किसान भाई अगर ले रहे हैं तो वो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
7: देखो, भारत सरकार का वो अनुसंधान केंद्र है मथुरा फराह में
6: जी,
7: वहाँ हम ट्रेनिंग किए थे और लोग भी जो करना चाहेंगे कर सकते हैं, वहाँ तो खुला है
6: जी।
7: और उसके लिए कोई ऑनलाइन वो भरना होगा फॉर्म, उसके बाद उन्हें बुलाया जाएगा और वो वहाँ दोनों दिखाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है और प्रैक्टिकल कराया भी जाता है, क्योंकि वहाँ बकरियाँ बहुत हैं
6: जी,
7: नाना प्रकार जाति की बकरियाँ, बहुत बहुत प्रजाति की बकरियाँ वहाँ हैं
6: जी।
7: और वहाँ अगर ट्रेनिंग कर लिया जाए तो बकरियों पर मतलब काम करने के लिए काफ़ी कुछ अनुभव मिल जाता है
6: जी।
7: और जिन्हें बकरियाँ पालना हो एक बार अवश्य मतलब वहाँ ट्रेनिंग करें, ठीक ठाक बकरियाँ पालने के लिए, काफ़ी बड़ा काम करने के लिए, छोटा काम करने के लिए बकरियों पर एक बार वहाँ अगर ट्रेनिंग कर लेता है व्यक्ति तो काफ़ी कुछ राहत उससे होती, बहुत कुछ जानकारी हो जाती है बकरियों के बारे में
6: जी।
7: जी
6: सर, अब बकरी पालन की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है सर, हम लोगों ने ये जाना। अब सर हम लोग बातचीत करेंगे कि बकरियों के खाद उत्पादन और प्रबंधन, इसका सर हमारे किसान भाई कैसे करें?
7: देखो, जहां हम लोग बकरियां रखते हैं वहां घास भूसा वेस्टेज जैसे फसलों का है तो उसको डालते हैं बैठने बैठने के लिए
6: जी,
7: वो होता है
6: जी।
7: बाकी उनका गोबर होता है, ये सब इकट्ठा करके अगर हम एक गड्ढा सा बना लें बड़ा और उसमें डालते रहें तो, और जिस खेत में डालेंगे, इनके गोबर में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है
6: जी,
7: जहाँ जहाँ हम डालेंगे खेतों में वहाँ काफ़ी कुछ ये काम करता है, तो वहाँ हमें अन्य खाद या फास्फोरस या डीएपी की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है
6: जी।
7: इसलिए हमें बकरियों के गोबर से काफ़ी कुछ राहत होती है खेती के लिए
6: जी,
7: खाद हमारी बचती है और काफ़ी कुछ मतलब राहत होती है इससे, उसका बेस्ट जो भी है हम अगर डाल के सड़ा लेते हैं कहीं किसी गड्ढे वड्ढे में बना के कंपोस्ट कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ राहत मिलती है भैया
6: जी।
7: जी
6: सो सर, अब हम लोगों ने बकरी के खाद उत्पादन एवं उसके प्रबंधन के बारे में जाने, अब एक औसत पालतू बकरी जो है उसका वजन कितना होता है सर?
7: ये प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है
6: जी।
7: अगर हमारे यहाँ की प्रजातियाँ हैं अपने लोकल की तो वो 50 किलो 60 किलो तक हो सकती हैं
6: जी।
7: अगर हम अन्य प्रजाति की बात करें, जैसे हम यमुना पारी रखते हैं तो ये 100 केजी तक जाती है
6: जी।
7: अगर हम बरबरी पालते हैं तो ये 70 से 80 किलो तक जाती है
6: जी।
7: खान पान इनका खिलाई पिलाई देख रेख अगर उचित ढंग से होता रहा नियमानुसार तो वेट गेन बहुत करती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इन बकरियों में
6: जी।
7: जी
6: सर, 100 बकरियों के पालन पर कितना खर्चा आता है?
7: 100 बकरियों पालन करने पर खर्चा तो आएगा
6: जी,
7: रख रखाव पर खर्चा आएगा, खान पान पर खर्चा आएगा
6: जी,
7: दवा टीकाकरण पे खर्चा आएगा, हर तरह से खर्चा आएगा, लेकिन उतना खर्चा नहीं आएगा, हम एक सीधी बात बताएंगे अपने किसानों को
6: जी,
7: कि कम से कम खर्चा आएगा अन्य पशुओं को पालने की अपेक्षा बकरियों में कम से कम खर्चा आता है और अधिक से अधिक लाभ होता है। ये मान के अगर किसान बकरियों का पालन करके अत्यधिक लाभ कमाना चाहता है तो बकरियों पर ट्राई करे
6: जी,
7: अन्य कार्य के साथ वो करे, खेती करे, बकरी पाले, भैंस पाले, गाय पाले, वो सब पालता रहे, लेकिन अगर बकरी पे विशेष रूप से बकरी को अलग से एक व्यवस्था बनावे, अपना साइड बिजनेस मान के करे तो किसान काफ़ी कुछ खुशहाल हो सकता है बकरियों से
6: जी।
7: जी
6: बकरियां सर, क्या कहा गया है कि बकरियां झुंड में चलती हैं?
7: हाँ, बहुतायत ये झुंड में ही रहना पसंद करती हैं
6: जी।
7: जी ये रात में बैठेंगी तो झुंडे में बैठेंगी, चरने जाएंगी बाहर निकालते हो तो झुंडे में जाएंगी
6: जी,
7: तो ये अपने एक दूसरे से मतलब संपर्क में ज़्यादा रहना चाहती हैं
6: जी।
7: बकरियाँ अगर आप कहीं कहीं भेज दिए हैं चरने होने के लिए, अगर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है तो ये वहाँ नहीं रुक सकती हैं, इन्हें आदमियों से भी लगाव होता है
6: जी,
7: बकरियों में आदमियों से भी लगाव होता है, ये अकेले कहीं नहीं रुक सकती हैं, ये झुंड में ही रहेंगी और आदमियों के संपर्क में ही रहना चाहती हैं
6: जी।
7: अकेले ये अन्य जीवों की तरह, अन्य पशुओं की तरह अकेले नहीं रहना पसंद करती हैं
6: जी।
7: जी
6: सर, मान लीजिए बकरी पालन किए हैं तो सर इसको मंडी ले जाने के लिए कोई गाड़ी आती है या स्वयं हमें ले जाना?
7: नहीं, गाड़ी मंडी से गाड़ी क्यों आएगी, गाड़ी तो हमें ले जाना होगा, और ऐसा कभी नहीं होता है, बकरियों का इतना मांग है इतनी आवश्यकता है कि बकरियां कहीं खड़ी नहीं हैं। बिकना है तो आते जाते हैं खरीदने, व्यापारी आते जाते रहते हैं खरीदते हैं, और अगर हमें ज़्यादा बेचनी है, इकट्ठा बेचनी है, समय से व्यापारी नहीं आए, तो हमारे पास मंडी है, फैजाबाद मंडी है, बहराइच मंडी है, आसपास गोंडा के तो दोनों मंडियां करीब पड़ती हैं, हम कहीं भी बेच सकते हैं, वहां खरीद भी सकते हैं, वहां बेच भी सकते हैं।
6: जी जी सर, जो किसान भाई बकरी पालने के उनके मन में सवाल चल रहे हैं, उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे?
7: बकरी पालन करें, ट्रेनिंग करके ही बकरी पालें, ये सुझाव हम देंगे
6: जी,
7: कि बकरी पालना है अगर ठीक ठाक तरीके से, तो वो पहले ट्रेनिंग करें, मथुरा करें या कहीं प्राइवेट करें, या किसी के जो बकरी पालक हो उसके यहाँ दो चार दिन रह के देखें। बकरी में एक समस्या होती है कि जब तक अनुभव आपको नहीं होगा ढंग से कि बकरियों को कैसे रखना है, कब खिलाना है, कब उठाना है, कब जगाना है, कब चलाना है, तब तक बकरी न पालें किसान। उसके बाद अगर सब कुछ सीख गए, समझ गए, देख लिए, तो बकरी पालें। बकरी से बेहतर आमदनी किसी भी पशु में नहीं है।
6: मतलब कहने का मतलब है कि
7: जी
6: नगद मतलब पैसा आपको मिल जाएगा।
7: अरे एटीएम समझा जाए इसको, जब चाहे अभी बकरी बेचना है, किसी को बुलाए भाई एक बकरी बेचना है, वो तुरंत पैसा देगा, बकरी ले जाएगा।
6: जी
7: गाय भैंस आप बेचना चाहेंगे, घूमते रहो।
6: जी
7: तो बकरी पालन में लाभ है और मेहनत कम है। सबसे अच्छा ये है कि मेहनत कम है, कम लागत में अधिक मुनाफा वाला सौदा ये है।
6: जी चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे सर बकरी पालन के विषय में?
7: हम किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि सब कुछ करते हुए, सारी अपने सारे कार्य अपने करते हुए, बकरी पालन पर विशेष रूप से ध्यान दें और बकरी का बकरी पालन करें। बकरियों से बहुत ही लाभ, कम लागत अधिक लाभ।
6: जी
7: जी
6: तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए मदन शुक्ला जी, जो कि आप थे रुपई डी ब्लॉक से, और बकरी पालन पे आपने विस्तृत जानकारी दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
7: धन्यवाद।
6: और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान में बकरी पालन विषय पर, जो कि जानकारी दे रहे थे मदन शुक्ला जी। तो अब खेत खलियान से दीजिए इजाज़त अपने दोस्त इरफान शाह को, तब तक के लिए अपने अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में? क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 9696746406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

ये प्यार बड़ा मुश्किल होला, और केहू कहेला कि ना, ये तो जज्बात के खेला होला। पर हम कही कि ये सब बात सिर्फ हवा के है, बाकी ये सब किस्मत के खेला होला। तो सबके भाई स्वागत है आप सबके अपन भोजपुरिया शाम माँ, और आप सबन के साथ मौजूद हैं आपके अपन आरजे बिना। और आप सबन का बताई कि भाई 6:29 हो चुका है, और अब शाम के जो कहा जाता है ना बात, वो है वाली है एक नए अंदाज माँ। और सबन के स्वागत है, स्वागत के संगे संगे आपका बताए दी कि आज आप सबन के जो भोजपुरी फरमाइश हुई ना, ओकरे साथे एगो ट्विस्ट भी है। लेकिन ट्विस्ट से पहले आप सबन का बताए दी कि आप सब तो आए के साथ ही तुरंत फरमाइश शुरू कर दो, जैसे कि नीतू जी, जैसे कि कमल नयन जी। अब भाई जब भोजपुरी बात के जो कहा था ना कि चर्चा होला, तब मनमा बहुत सारा कहा था ना ख्याल आवत है कि कैसे कोने चीज़ी का बदली, कैसे का ना बदली। पर कुछ तो है जो उन बदले के मन कहत है, वो है म्यूज़िक। और म्यूज़िक यानी कि संगीत। संगीत तो हम सब रोजे सुनी थे, लेकिन कबो कबो कोनो कोनो गाना ऐसा सुन लिन जात है कि जेका सुने के बाद माँ मन तो कहत है बस यह गाना सुने के जरूरत रहा। ठीक है, और आज आप सबका अपने यूपी बिहार के एगो नई तो नहीं, लेकिन आप सबन के लिए नई रस्म के बारे में भी बात करब। हमर सके यूपी बिहार में कुछ रस्मन रस्म लो ऐसन ही जेका जाने के बाद हमरे सबके मन कहा था ना कि बस ये सब रस्में तो हमरे सबके जो उनका था ना आत्मीयता बढ़ाए ही। तो रस्मों रिवाज के शहर में हम सब रहते हैं गोंडा शहर, और एक साथ साथ हमरे सके प्रदेश उत्तर प्रदेश जहाँ हर चीज़ के उत्तर एकदम सटीक मिलत है। और आज जो ने एगो परंपरा के बात करे वाली हैं अपने यूपी बिहार के, वो है आज हम जैसे घर से निकले हैं तैसे हम देखें कि हमारे बगल वाले घर में अभी शादी रही उनके लड़का के, और लड़का के शादी माँ भाई बहू आए रही, और बहू के आज जवाई रही यानी कि वो लगे वाला है ना मलमास, तो ओकरे पहले उनके विदाई रही। तो उनके जाए के साथ भाई सब लोग दुखी भी रहे, भाई एक लड़ा मतलब परिवार माँ लड़का के शादी भय और ओकरे साथ एगो नया इंसान घर में आए, घर एकदम भरा पूरा हो गए। और तो ये चीज़ देख के ना मन में थोड़ा सा भावुकता भी आए कि भाई कैसे कुछ दिन में एगो नवा परिवार बस जात है। तो जैसे हम निकले लागें तो हम देखें कि हाँ भाई आज जो है कि भाभी जी के विदाई होते हैं, तो विदाई के संगे हमरे जो मतलब बगल वाली आंटी जी नहीं, वह अपने हाथ में चावल ओड़िया में रख के उमन गुड़ और धूप और लक्ष्मी सब रख के जो दुल्हन जी रही मतलब हमारे सबके भाभी जी रही उनके आँचल माँ 5 मुट्ठी चावल ऐसे गुड़ ये सब डालने लगी। तो हमें याद आए गए हमार मतलब जैसे शादी पे रही तो हमारे आँचल माँ इसे रखा गया, और हमारे सबके इसे गोंडा माँ का कोच कहा जाता है, और वैसे एक शुद्ध भोजपुरी और अवधि भाषा में खोइचा कहा जाता है। तो खोइचा जो है जब भी कोई इंसान शुभ कार्य के लिए जात है तो का खोइचा दिए के नियम है। जैसे कभी कभी कहा होता है हम सब कहूँ आई जाए तो पैसा मिलता है, तो पैसा पूरा खोइचा तो हर कोई हर वक्त नहीं दे सकत, लेकिन हाँ पैसा दे के बताया जाता है लेकिन हाँ ये खोइचा के काम करी। वैसे खोइचा एक बहुत सुंदर रस्म है जो उनके अपने यूपी और बिहार में होती। जब कोई शादीशुदा बहू और बेटी अपने मायके से ससुराल और ससुराल से जब विदा होते हैं तो का कहा था खाली हाथ नहीं भेजा जाते, तो का साड़ी के पल्लू माँ अच्छत यानी कि चावल दीन जात है, दूब दीन जात है, और सुपारी सिंदूर और कुछ पैसा बांध के दीन जात है। यह रस्म का खोइचा कहा है, और एका दिए से कहा थे कि दोनों परिवार के जो धन लक्ष्मी है वो पूरी भरपूर रहा थी। अब एक एक चीज़ के हम मतलब बताई कि अगर अच्छत दीन जात है तो अच्छत के जो प्रतीक है ये है अच्छ को अच्छत और दूब दूब जो घास होती ये जो है ये खुशहाली के समृद्धि के प्रतीक है, जैसे अन्न धन ये सब भरा रहे। कहे कि जो दूब होती दूब का दूब कहते ना कि कभी भी सूखी ना हो, दूब का जैसे पानी मिले आप देखो जहाँ भी दूब लगी हुई पानी मिले या ना मिले वो लगी रहा थी, अगर थोड़ा बहुत भी पानी मिले तो वो जी जाए। तो दूबी के निहायत हमें सबका चाहिए चाहे परिस्थिति कोनो भी मेर का कहे ना हो,
लेकिन डूब के निहायत हमें सबका हरा भरा रहे चाहिए और हर वक्त मुस्कुराए चाहिए। तो डूब के मतलब चिन्ह है कि डूब जोन है हमारे सबके अंदर सहनशीलता दिए। और उही के साथ अगर बात करी सुपारी और हल्दी के, तो ये जोन है सुहाग के लंबी उम्र के कामना के लिए दिन जाती। और संगे ये रसम जोन है ये केवल समान मात्र नहीं होते कि मतलब समान दे दिन गवा चावल दे दिन गवा, बल्कि एका कहा जाता है कि ऐसे अन्नपूर्णा माता जोन है वो जात ही लेकिन हमारे घर में खुशहाली दे के जाएँ। वैसे खोइचा तो बिहार में और यूपी में ज़्यादा देखे का मिलत है, लेकिन अगर अब के बात करी तो ये झारखंड में भी प्रसिद्ध हो चुकी है और बहुत श्रद्धा से ये रस्म का मनावा जाता है। नाम थोड़े अलग हो सकत है, कहूँ कोच कहूँ खोइचा कहा जाता है कहूँ खोच कहा जाता है, पर भावना जो है वो ममता जो है वो एक के है। विदाई के समय जब माँ अपने बेटी के आँख में आंसू देखा थी तो खोइचा भर के ओका भरोसा दिए थी कि भाई अब जात तो हो लेकिन खोइचा के संगे हमार प्यार और आशीर्वाद भी तोरे साथे जात है। खोइचा केवल सामान के पोटली ना होला, एका माँ के अटूट विश्वास भी कहा जाता है। एकरे साथ साथ हम खोइचा के परंपरा महाराष्ट्र में भी देखे हैं, जैसे कि एक बार हम मुंबई गए रहे तो वहाँ देखें कि वो गणेश चतुर्थी के त्यौहार मनावा जाता, जब गणपति पप्पा का ये सब विदा करते हैं तो उन्हें एक पोटली बनाए के दिया था, उनका कहा था समृद्धि के पोटली। वो पोटली माँ इसे सुपारी हल्दी हल्दी का गांठ चावल और एगो रुपया और ये सब डाल के उन्हें बांध के उनका मतलब उनके गोद माँ उनके साथे रख दिन जाते हैं कि अब लंबी सवारी पर जात हो साल भर बदे हो तो तब तक के खाए पिए के व्यवस्था अपन बढ़िया से रखे हो। तो ये प्रथा हमारे सबके पूरे देश में कहूँ ना कहूँ कोनो ना कोनो मेर कहा जात है सुना जात है किया जात है, पर जो भावना है वो एक के है। नाम अलग हो सकत है अंदाज थोड़ा अलग हो सकत है, लेकिन हाँ हम मुंबई में भी देखे ने कि एगो रुमाल माँ ये सब सामान बांध के गणपति बप्पा का दिन जाते है। तो मतलब कोछा सिर्फ लड़कियन का नहीं बल्कि भगवान का भी दिया जा सकत है। तो ये सब बात ध्यान रखे वाली है। तो आप सब बताएं कि आपके यहाँ ये खोइचा का या कोच का या कोछा का कहा जाता है। वैसे कमल जी बताएं इनके यहाँ एका कोछा कहा जाता है। तो चला सुना जाए वो बढ़िया सा गीत हमने सबके शारदा सिन्हा के आवाज़ में।

जोन बात ये लोक गीतन मा है वो तो कोनो कोनो गाना मनाई है। फिलहाल चला सुना जाए और आप सबन के साथे आज कुछ और बात भी हो जाए। आज जैसे कि लोग के अपने गांव के अपने देश के अपने अंदाज के बात होती तो इसे एगो और अंदाज हमका याद आवत है जोन हमें हमारे बचपन के याद दिलावत है। शुभ संध्या सबलू जी, का हाल है? और भोजपुरिया प्रणाम बात बिल्कुल भोजपुरिया प्रणाम माँ भाई प्रणाम तो होते हैं और गोड़ लागित है और बाबा राम राम ये सब चलता है तो तनी है कहा जाए। और देखा लिखत है कि सुपर नाइस ड्रीम सॉन्ग, दिल से सैल्यूट शारदा सिन्हा विवाह गीत, दिल से आनंद देने वाला गीत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अंदाज है जो हमारे सबके यूपी बिहार के और एक जगह के नहीं हर जगह के संगीत के ही हाल है। तो आगे चलत चलत हमें याद आवत है कि हमारे सबके यूपी बिहार में जो न आजकल कहा जाता है ना कि एगो खास तरीका होता है कोनो बात कहे के, तो खास तौर पे अपने अवध के बात करी तो हमारे सबके अवध में कहावत बहुत नीक नीक चलते है। तो ही में से कुछ कहावत हम आप सबन के नाम करा चाहिए थे। वैसे आप सब बताई हैं कि आप सबन का कैसन ला और ये जरूर बताई हैं कि एमा में से कौन कहावत आप सब भी अपने ऊपर सुने हुए। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करिए, आराम से एक एक कहावत सुनिए और जेका जोने कहावत के मतलब पता है वो जरूर बताई है। ऐसा तो नहीं कि जोन मतलब हम बताए थे वो असली माँ वो कहावत के मतलब है नहीं है। हाँ, जेका भी पता है वो फटाफट से चैट रूम में जरूर लिख दी कि ई अपने अवधि कहावत के मतलब असल माँ का है। तो सबसे पहली कहावत आप सुमन के साथ है हम साझा जोन करा चाहिए थे, तनी बताई कि कैसन है। ठीक है, जैसा काकर वैसे बिया, जैसी माई वैसे धिया। चलिए बताएं एकर मतलब का है के बताए वाला है। कहावत है कि और जे मतलब कहावत के मतलब सही सही बताई होगा अपने पसंद के गाना सुने का मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि गाना सुने के एगो टाइम है, अगर आंसर आप सबसे पहले दे दे हैं तो आप सभन का आपके पसंद के जो गाना है वो जल्दी सुने का मिल जाए। तो कहावत है कि जैसन काकर वैसन बिया, जैसी माई वैसी धिया। अब बताएं एकर मतलब का है। बड़ा बढ़िया है, हमका तो बड़ा अच्छा लाग। आप सब बताएं कि एकर मतलब का है। सविता जी शुभ संध्या, बिल्कुल आपको भी भोजपुरिया हम सिखा देंगे लेकिन भोजपुरिया के साथ साथ हम सोच रहे हैं आपको अवधी भी सिखा दें। तो बिल्कुल सीखे सिखावे के जो नी परंपरा है हमारे सबके यूपी बिहार में आम है। गारी दिए के लड़के बप्पा से अपने सीख जाते हैं, मोहल्ले वाले से सीख जाते हैं, एक दूसरे के परपंच करब अपने इधर उधर के लोगों से सीख जाते हैं। तो सीखे माँ तो हम सब बहुत तेज हैं, हम सब यूपी बिहार वाले हो, ये बात हम सबका गर्व है। फिलहाल आगे बात करते करते आप सबन का बताए दी कि अभी तक उत्तर आवा नहीं, तो चलो उत्तर हम ही दे देते और हम अपने पसंद के गाना भी सुनाए देते। जैसन काकर वैसन बिया के मतलब ये है कि संतान माँ जो आई बाप के जो गुण होते हैं वो जरूर आए जाते हैं। मतलब ये तो जैसे साइंस हो यह कहा थी कि जो गुण सूत्र है जेका जीन कहा जाता है तो मम्मी पापा के मिलते हैं ना, तो ऐसे गुण तो आई जाए। तो कहते जैसन काकर वैसन बिया, जैसे जो ने बीज के फल रही ओ माँ ओकरे जो कहते ना फल के जो गुण है वो जरूर रही, और वही के निहायत परवरिश और खानदान के भी बात होती कि जो परवरिश होती वो लड़कन के स्वभाव माँ उनके व्यवहार माँ जरूर दिखाती। तो ई हा ई कहावत के मतलब। तो अगली कहावत के जो सवाल है वो सुन लिए और उत्तर दिए के पहले सोच समझ ले हैं कि एक मतलब हमारे सबके यूपी बिहार माँ का है। बाप पदहिक न जाने पूत शंख बजावे, बाप पदहिक न जाने पूत शंख बजावे। तो एकर मतलब जल्दी से सोच के बताई और तब तक हमारे पसंद के गाना सुनी सुनत जाए।

अगली कहावत के मतलब बताए के अपने पसंद के भोजपुरी गाना आप सुन सकते हैं। और कहावत कहते हैं कि बाप पदहिक न जाने पूत संख बजावे।

इतना प्यारा गीत सुने के बाद माँ भोजपुरी गाना से प्यार ना हो जाए तो कहिया, तब पाप पधिक ना जाने और पूत शंख बजावे के मतलब ये है कि जगह ज्ञान के साधन या ज्ञान ना होए ओकरे बाद में भी दिखावा माँ कोई कमी ना रहे तो यही का कहा जात है कि बाप पधिक ना जाने और पूत शंख बजावे और ये अपने अवधि के कहावत है। तो एक तो हमें सबका पता हो चाहिए और जब पिता कुछ ना जाने और पुत्र का बहुत बढ़ाए चढ़ाए के दिखावे तो यही का बतावा जात है कि हाँ थोड़े माँ बहुत ज्यादा दिखावे। ठीक है और बताई, नतनी सिखावे नानी का चलबू नानी गाँव ने। चलिए बताई एकर मतलब का है कि नतनी सिखावे नानी का कि चलबू नानी गाँव ने। सोच के बताई एकर का मतलब है। तब तक के लिए एगो गाना और हमका याद आ चुका है ओका सुनाए दी और कहे कि आंसर हम के हैं तो गनवो हमरे पसंद के सुनने का पड़ी और तो कोई अपने पसंद के आप सब सुन नहीं सकत हो। तो अब तैयार हो तो फटाफट से बताओ के तैयार है और के गाना सुनने वाला है अपने पसंद के। कहे कि अगर आपका कहावत ना ही आवत है अवधि के तो फिर आप अपने पसंद के गाना कुछ देर बाद सुने के पैबो। तो चला सुना जाए वो गाना जो मोस्ट वांटेड रहा था हमारे संध्या में, यानी कि बहुत लिसनर कहते हैं कि मैडम अब से आई है ना भोजपुरी में तो ये गाना ज़रूर बत सुनाई है। तो हमारे सबके यूपी बिहार में जो लोगन के हालचाल है उसका फरमावे वाला या शहर के लड़की के जब गांव में ब्याह हो ब्याह

अपने पसंद के गाना सुने वाला शो सुना तो आप सब गोंडा मैसी मसाला आरजे बीना वाला आरजे बीना के संगे अपने पसंदीदा फ्रीक्वेंसी पर ज्ञान सिटी 9.6 FM ईहा गोंडा शहर के धड़कन।

और ये गाना सुनने के बाद माँ भी फिर से आप सभी के मन का तो या हाहाका सुनाई दिया गया है। और वैसे अगर बात करी तो आंसर आ चुका है सबलू जी के, लिखते हैं कि मुक्त के सलाह दिए ना बुजुर्गन के जोन खिलाड़ी हैं उन्हें का सिखाना। हाँ हाँ हाँ का बात है, बिल्कुल मोर अगर सही कहा जाए तो एक मतलब यह है कि जे अनुभवहीन हैं ते अपने से ज़्यादा अनुभव वाले का अगर सलाह दिए थे वही का कहा जाता है। नतनी सिखावे नानी का कि चलबू नानी गौने। बहुत है अच्छा, बहुत है अच्छा सबलू जी। तो सबलू जी अपने पसंद के गाना सुन सकत हैं और फरमाइश कर सकत हैं। फिलहाल सबलू जी का फरमाइश आए नहीं है तो अगले कहावत की ओर चलो रुख किया जाए और कुछ बढ़िया वाली कहावत दे दी कि जब बूढ़ी भई बिलारी तब मूसो बचावे तारी। ओ हो का बात है, का बात है, बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक कहावत है कि कहा था जब बूढ़ी भय बिलारी तब मूसो बजावे तारी। आ हा हा हा का बात है, जे बहुत ध्यान से समझे हुई ते का मतलब लैंग्वेज में समझ में आएगी हुई कि ई कहावत के अवधि माँ का मतलब है। तो जल्दी से सोच के बताई और जे सोच के बताई और अपने पसंद के गाना जल्दी से सुन जाई। फिलहाल हम देखी थे कि अभी जेकर बारी है कि गावे के तो गाना सुने के तो सबलू जी के बारी है। जब सबलू जी फटाफट से अपने फरमाइश का गाना सुने के लिए अपन फरमाइश भेज दिए और तब तक चला सुना जाए।

तो भाई आप सबन का बताइए, अगर हमारे सबके भोजपुरी गाना के चर्चक बात करी तो ना सिर्फ हमारे सबके क्षेत्र में बल्कि बॉलीवुड फिल्मन में भी है गाना बजे लागे। तो भाई भोजपुरी गाना फरमाइश के तो समय हो चुका है, लेकिन आप सब उत्तर ना दियो तब तक तो मज़ा नहीं है। तो फिलहाल देखिए उत्तर के दिए है और उत्तर दिए के बारी है। तो फिलहाल बाप कुछ करिए ना जूता जाने पूछ चलाए, बिल्कुल आंसर सही रहा लेकिन हमारे आंसर देख बाद। और इसके बाद मीनू गोंडा से सबलू जी के फरमाइश भी आ चुके हैं, सबलू जी का फरमाइश सुना जाए। लेकिन देखो बूढ़ी भाई बिलारी तब मूसो बजावे तारी, कि जब भी आपके अंदर कोनो प्रतिभा कम हो जाए या अपने कौशल का आप ना दिखाए पाई वो तो जेका होकर प्रतिभा के बारे में जानकारी भी ना है तो वो भी आपके मजा ले ली, ठीक है। अगला जो कहावत है वो है छगड़ी का बस के नाई है कोहड़ा लीलाब। क्या बात है, ये तो बड़ा खतरनाक है। जब कोनो व्यक्ति अपने योग्यता से बाहर जाए के कोनो बड़ा जोखिम उठाए लेता है, बड़ी बड़ी बात करता है, तो ओकर क्षमता से बाहर वो काम असंभव हो जाता है। तो एकर मतलब है छगड़ी के बस के नाइब है कोहड़ा लीलाब। बहुत गजब है भाई। बाप पेटे माँ पूत खेते माँ नाती चले ब्याहे। ओहो ही सही है। बाप खेते माँ पूत बाप पेटे माँ पूत खेते माँ नाती चले ब्याहे। और एकर मतलब ये है कि जब कोई काम अभे शून्य पर हो तो का व्यक्ति का शिखर तक पहुँचारे के ढिंढोरा नहीं पीटेगा चाहिए, जो हम सब बहुत करी थे। तो ये काम ना करें, जब काम सफल हो जाए तब दूसरे को बताओ। ये तो हमारे सब क्या कहा जाता है कि अभी गाओ ना बताओ ना सब का। तो चला सुना जाए सबसे पहले सबलू जी के फरमाइश के गाना। फिलहाल आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने भोजपुरी फरमाइश कह सको तो और अपने पसंद के भोजपुरी गाना सुन सको तो चाहे आप गेस करो कहावत या ना करो, हम तो आप सबका कहावत बतावा करब, आपका परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलो खेसारी की आवाज़ अजमा एक और गाना सुन लिया जाए, हरियल दिल पटना में। ओहो

तो चला एक और कहावत आप सबका बताई अवधि के तो चलबे ना करब, चलब तो मड़ई है उदार देव। मतलब कि अक्सर कुछ मनई जो होते हैं वो टेढ़ा स्वभाव के होते हैं, वैसे तो सामान्य ढंग से काम करी है ना, वो करी है तो पूरा रास्ता बिगाड़ दे हैं। ठीक है, तो एक गाना के बाद अब सुने के बारी है हमारे सबके आंसू जी के फरमाइश के गाना सुने के। तो भाई जल्दी जल्दी अपन फरमाइश भेजा करें और अपने पसंद के गाना सुने के लिए तैयार हो जाएं।

भाई अगली भोजपुरी फरमाइश के लिए बिल्कुल तैयार रहें, और देखा समय हो चुका है आपके फरमाइश के, तो बिल्कुल भोजपुरी गाना वाले आपन आपन फरमाइश लेके तैयार रहें।

कमल नयन की फरमाइश के गाना सुने के बाद अब बारी है अगला फरमाइशी वाला गाना सुने के, जो उनकी फरमाइश है पूजा जी के। तो पूजा जी सुना चाहती एक बहुत प्यारा गाना जेका सुने के बाद माँ आप सब कहिए कि ये गाना ना बजे तो भोजपुरी शाम के जो न शान है वो अधूरी रह जाए। तो गाना

गाना सुने के बाद अब बारी अगली फरमाइश सुने के भाई। आज चैट रूम में फरमाइश कम देखा थी, कॉल से ज्यादा देखा थी। फिलहाल चला जेकर भी जोन भी फरमाइश होगा तो पूरा करे के अब बारी है ये है। और बारी की जब बात है तो हमका ये गाना बहुत प्यारा लगा था, हमका सुनाई दी आप सबन का। और फिलहाल ही फरमाइश है गीत जी के, गीत जे की हम सबका बहराई से सुना था, गीत सुना चाहते हैं गाना बहुते भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े।

गुड इवनिंग तीरज जी, गुड इवनिंग जमुना प्रसाद जी, गुड इवनिंग सभी के। और जिक्र जिक्र फरमाइश है, फटाफट से चैट रूम मलिक के भेज दिए। और अगला गाना के बारी है, और वह बड़ा प्यारा सा गाना है, उसका सुनने के बाद माँ आप सब एकदम, मतलब सुन के एकदम दीवाना हो जाओ। ये है कल्पना जी के आवाज़ के गाना। वैसे कल्पना जी के आवाज़ में बहुत सारा गाना है जिसका सुनने के बाद माँ दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और फिलहाल ये गाना हम सब सुने जाए थे सविता जी के फरमाइश पे, और सविता जी सुना जाती गाना।

सचिन शुक्ला शुभ संध्या एस एस एस एस एस लॉली पॉप लागे लू। फिलहाल ये गाना पूरा तो हम ना सुने कहे कि कर लिरिक्स जो ना बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ अब हमारे सबके रियलिटी शोज में बजे वाला गाना है तो आपका कुछ हिस्सा ही गाना के जरूर सुनाई तो चलिए सुन लें जाए। और तुम्हारा से प्यार हो गए तो चला सुना जाए ट्रिपल एस के फरमाइश के गाना। फिलहाल आप लोग नाम रख के आवा करें और ये एस और बी और सी और डी और क्यू के नाम नहीं होते, हम तो आपसे निवेदन करब कि आप जरूर अपन नाम रख के फिर आवा करें चैट रूम में। इससे चैट रूम की भी गरिमा बनी रहती है और लोगन के जिनका था ना कि रिलेशनशिप है आपस में दोस्तन के, भाई देखा जाए जो ने भी जगह हम सब जाई ताई थे हुआ हमने तो उसकी पहचान होती, तो वैसे चैट रूम भी आपके आए आए के पहचान के अपने गाना फरमाइश करे के जगह है, तो बिल्कुल जिसे एक परिवार की तरह आए और अपन पहचान बिल्कुल सही रखें।

0: अनमोल ऐसन खजाना,
1: तुहर जोड़ा ना तो सर जाना ना जाना।
0: सभी गाना सुने के बाद है फरमाइश जमुना जी के, जो उनकी चैटरूम से फरमाइश है, तो चला सुना जाए जमुना प्रसाद जी के फरमाइश के गाना। बड़ा प्यारा गाना है। और सुने के बाद अब अगला गाना एक सुने का मिली आपके अरमान जी के, तो चला सुना जाए पहले जमुना प्रसाद जी के फरमाइश के ही गाना।

तो बहुत ही प्यारा गाना सुने के बाद अब बारी है अरमान जी के फरमाइश के गाना सुने के। जब जमाने में अगर चिट्ठी ना पहुंचती थी तो चांद का भेजा जात रहा खबरिया लावे के लिए, तो ये गाना अरमान जी के फरमाइश के, जहिया से चल गए छोड़ के हमके।

अभी गाना सुने के बाद अब आखिरी गाना निब्बर जी की फरमाइश के तोहरे अखिया के काजर हमार जान ले गई लोरी गाना के साथ हरजबीना का भी दी इजाज़त। आज की भोजपुरिया शाम माँ बहुत सारी बातें भाई बातन के साथ है भाई आप सब बहुत सारे उत्तर भी दियो कि भाई अवधि जो न कहा था ना कि आप सब इनके जो कहावत के जो टाइम होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो आज ये कहावत जो है का सुने के बाद माँ मना कहा थे कि हाँ कि कुछ ऐसा कहावत भी हैं जेका सुने के बाद लागत है कि ये कहावत तो हम सब सुनबे नहीं के नहीं लेकिन बचपन से हमें सबका कहावत सुनाए सुनाए के बड़ा किया गया है। कोनो कहावत ये कहा थी कि जैसन पेड़ वैसन बुकला कोई कहा थे कि होनहार बिरवान के हो चिकना पात तो ऐसन कहावत सुन सुन के हमसे बड़ा बहन है। और इससे आगे कल के जो दिन है कल है बुलबुड़िया शाम और कल बुलबुड़िया शाम में हम कुछ ऐसा फिल्म के बारे में आप सबन का बताई जेका जाने के बाद आपके मन ना मानी शनिवार आवे के आप कल ही वो फिल्म डाउनलोड करके जरूर देखो। तो एक साथ आरजे बीना का दें इजाज़त हंसत रहें मुस्कुरावत रहें और बजावत रहें अपन फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान 89.6 FM ई है गोंडा शहर के धड़कन।

वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद योर आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा।

तो ओह माय गॉड, लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, महफिल आपका, गीत आपके नाम से, और ये आपकी आज सिंपल, नॉट सो सिंपल, तो हमेशा के लिए आपके, क्यों सही कहा ना मैंने। सो वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। मोहम्मद मुशीफ जी बाराबंकी से, बंटी गुर्जर, सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, मीनू गोंडा से, जमुना प्रसाद प्रजापति जी कैफ मोबाइल वाले गोंडा से, और सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, सबलू सावंत जी बोरीवली मुंबई से, सचिन शुक्ला आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड, और अरमान पटेल नगर गोंडा से, स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सो इसी के साथ में दोस्तों, सबलू सावंत जी ने बोरीवली मुंबई से कुछ अर्ज भी किया है, सो इरशाद इरशाद जरूर करिएगा। तेरी मोहब्बत का ये आलम है, हर पल तेरा इंतजार करता हूँ, तू मेरी धड़कन, तू मेरा सुकून, तेरा साथ हो तो हर लम्हा है खूबसूरत, हर हसी चेहरे में उसका गुमान था, इस दिल में कोई बस ना सका, क्योंकि इस दिल में मकान उसी का था। तो किसके लिए लाइंस थी जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारा पहला पहला पहला गाना। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में पहली फरमाइश है सबलू सावंत जी की बोरीवली मुंबई से, उनको सुनना है गाना तेरी मोहब्बत मेरी जवानी। सो एंजॉय करते हैं पति पत्नी और तवायफ मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सबलू सावंत जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से, स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों, तेरी मोहब्बत मेरी कहानी हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना पति पत्नी और तवायफ मूवी का सबलू सावंत जी की फरमाइश पर, जो की है बोरीवली मुंबई से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी।

से मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना दुनिया में आए हो तो लव कर लो और थोड़ा सज लो थोड़ा थोड़ा मर लो। ऑब्वियसली दुनिया में आए हो तो लव जरूर करना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा लव करना चाहिए, सिर्फ एक इंसान से नहीं जितनों से पॉसिबल हो सके उन सभी अपनों से लव करना चाहिए। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा जो दौड़ता हुआ कूदता हुआ पानता हुआ आया है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम चांदनी, आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड।

0: सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो,
1: थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा।
0: ऑब्वियसली दुनिया में आए हो तो लव करना ही करना है, और अगर लव कर लिया तो थोड़ा जी और थोड़ा मर लिया। सो हमने इंजॉय किया मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पर, ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। सो दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी? कैफ मोबाइल वाले की गोंडा से, और कैफ मोबाइल वाले को गोंडा से सुनना है गाना चला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा कैफ मोबाइल वाले की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

समझी थी मैं थानेदार निकला, छैला बाबू तो कैसा दिलदार निकला। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा रिमिक्स वर्जन में। अब बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। भूपेंद्र कुमार सिंह जी आवाज विकास गोंडा से आपका स्वागत है, और सुमित मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है जमुना प्रसाद प्रजापति की, उनको सुनना है गाना अब जाने हम ये प्यार क्या है। सो एंजॉय करते हैं हारे हारे हारे ओ माय गॉड। ये गाना कहाँ छिपा हुआ था, ये गाना मुझे बहुत पसंद था और मेरी मेमोरी में बिल्कुल भी नहीं था। सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट जमुना प्रसाद प्रजापति जी कि आपने इस गाने की फरमाइश की और इस गाने को मेरे जहन में फिर से जिंदा कर दिया। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

कमबख्त दिल, कितने बार हार जाते हैं ना, हर बार हार जाते हैं, बार बार हार जाते हैं ये दिल। इस दिल से युद्ध कभी किया ही नहीं जा सकता, जब जब चाहोगे तब तब हार जाओगे। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा, मेरा पसंदीदा नगमा जमुना प्रसाद प्रजापति जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, नागेश्वर धाकड़ आपका स्वागत है। इनका कहना है कि छुपा कर इश्क की खुशबू को रखा नहीं जाता, छुपा कर इश्क की खुशबू को रखा नहीं जाता, नजर उसको भी पढ़ लेती है जो लिखा नहीं जाता। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। वेरी वेरी गुड इवनिंग रिंकू जैन, इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज, विकास गोंडा से उनको सुनना है गाना एक बात बताऊं। सो इंजॉय करते हैं मिलन का ये सुपर डुपर हिट नगमा, कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में, हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर।

मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। साधना सरगम कुमार सानू की आवाज में हमने एंजॉय किया है मिलन का ये गाना, धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पे, जो की है आवाज विकास गोंडा से। चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ ना दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में तो थी मीनू जी की गोंडा से, लेकिन मीनू ने शायद हरियाणवी गाने भोजपुरी गाने की डिमांड की थी, उसको मैं प्ले नहीं कर सकती हूँ। तो आप अपना गाना फटाफट से चेंज करिए, तब तक हम इंजॉय कर लेते हैं सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना ए हवा मेरे संग संग चल। तो इंजॉय करते हैं फिर से सुपर डुपर हिट नगमा, लेकिन इस बार सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। हमने एंजॉय किया है ये गाना सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर, जो कि है गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन इसके पहले स्वागत है आपका राजेश मीना जी, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मीनू की गोंडा से, और मीनू को गोंडा से सुनना है गाना। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। और कभी कभी लोग ऐसी गलती भी कर देते हैं कि वो प्यार नहीं भी होता है, उसको प्यार समझ लेते हैं और ऐसे ही गाने सुन के जल्दी से इजहार कर देते हैं और फिर उसका चैप्टर भी उतनी ही जल्दी क्लोज हो जाता है। तो किसी से आप प्यार करते हैं तो पहले अपने आप में ही आपको समझ लेना चाहिए कि क्या आप सच में प्यार करते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद में उसको इजहार करना चाहिए। सो एंजॉय करते हैं ये प्यार का इजहार करने वाला सुपर डुपर हिट गाना अंदाज का, सिर्फ और सिर्फ किसकी फरमाइश पर? हाँ, मीनू की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। वैसे मेरी ज्ञान की बातें आप सभी को कैसी लगती हैं, मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताना। नहीं अच्छी लगती तो चेंज कर दूंगी, लेकिन

सो हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर डुपर हिट गाना मीनू की फरमाइश पे जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली डिमांड हमारे पास में है सुमित मिश्रा की। सुमित मिश्रा को सुनना है गाना दर्द दिलों के कम हो जाते और मैं और तुम गर हम हो जाते। सच में कितने हंसी आलम हो जाते है ना, मैं और तुम गर हम हो जाते है ना। तो एंजॉय करते हैं हिमेश रेशमिया का ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, दर्द भरा नगमा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुमित मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। संतोष कुमार जी गिलौली से आपका स्वागत है।

तो कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। आए हाय, हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो प्रमोद श्रीवास्तव फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों रिंकू जैन की, ये फरमाइश तो हमारे पास में थी सुमित मिश्रा की, थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था। और अगली फरमाइश इंजॉय करते हैं रिंकू जैन की, उनको सुनना है गाना मैं शायर तो नहीं, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है द ग्रेट सीन साहब को, तो द ग्रेट सीन साहब के लिए इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ रिंकू जैन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है बॉबी मूवी का ये गाना। रिंकू जैन की फरमाइश पर उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था द ग्रेट सीन साहब को। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और अजय मिश्रा जी को मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से सुनना है गाना रमता जोगी। सो ताल मूवी का ये गाना सुखविंदर अलका याग्निक की आवाज में। इंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। मैं तो प्रेम की पूरी गागर पी के आई हूँ दोस्तों, आप तो खाली प्याले की बात कर रहे हो। हाँ कुछ भी। ओह आई लव दिस सॉन्ग, मुझे इसका म्यूजिक बहुत ही पसंद है। रमता जोगी, ओ रमता जोगी, होए होए होए होए होए होए। ओए रमता जोगी, ओ रमता जोगी, होए होए।

है।

फरमाइश थी मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। अजय मिश्रा की बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारे आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। तो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो सीधे 9 बजे मिलेंगे, तब तक एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। निब्बर जी की फरमाइश है रानी बाजार सोनारगली गोंडा से, नसीब मूवी का उनको सुनना है गाना जॉन जानी जनार्दन। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ निब्बर जी की फरमाइश पर। मिलेंगे सीधे 9 बजे, स्टे ट्यून।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज बीजिंग

0: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और अभी आपने जिस गीत को एंजॉय किया है वो फरमाइश हमारे पास में आई थी चांदनी की रतौली से। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम एंड थैंक यू सो मच चांदनी जी, आपके गाने की बहुत सारी तारीफ हुई है। प्रीति शुक्ला जी ने बहराइच से आपके गाने की बहुत सारी तारीफ की है और मेरे बहुत सारे लिसनर्स ने बहुत सारी इमोजीज और हार्ट भेजी हैं अपने तरफ से आपके इस गाने के लिए। सो ये फरमाइश थी चांदनी की, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम प्रीति शुक्ला जी बहराइच से। अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे लेकिन उसके पहले इस गाने ने कुछ याद दिला दिया दोस्तों। मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। बहुत याद आए हमें भूलने वाले, बहुत याद आए हमें भूलने वाले। वो आंसू थे आंखों से ढलते रहे। सो बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अरमान पटेल, अरमान की पटेल नगर गोंडा से, और अरमान को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना लाखों आशिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान पे। सो एंजॉय करते हैं होगी प्यार की जीत मूवी का ये गाना अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ अरमान की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

लाखों आशिक मर जाते मेरी एक मुस्कान पे, हमने एंजॉय किया ये गाना अरमान की फरमाइश पे जो की है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले इस गाने को सुन के कुछ तो याद आया है। कहना है कि कयामत है उसकी अदा, जो भी देखे वो मर जाए। कयामत है उसकी अदा, जो भी देखे वो मर जाए। वो नजरों से ही लाखों का काम तमाम कर जाए। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है भूपेंद्र कुमार सिंह जी की, एडवोकेट भूपेंद्र कुमार सिंह की आवाज विकास गोंडा से। उनको सुनना है गाना साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल और रघुपति राघव राजा राम। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशा जी की आवाज में भूपेंद्र जी की फरमाइश पर।

हमने एंजॉय किया है आशा जी की आवाज़ में ये नगमा। एडवोकेट भूपेंद्र कुमार सिंह जी की फरमाइश पर जो की है आवाज़ विकास कुंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रमोद श्रीवास्तव की गोंडा से, और प्रमोद श्रीवास्तव को गोंडा से सुनना है गाना तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। एंजॉय करते हैं कैलाश खेर की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हर दिल को खुरीदने वाला गाना प्रमोद श्रीवास्तव की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश थी प्रमोद श्रीवास्तव की। गोंडा से बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है संतोष कुमार की गिलौली से और नागेश्वर धाकड़ की। संतोष कुमार को गिलौली से और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना दिल का क्या करें साहिब। सो एंजॉय करते हैं जीत मूवी का ये गाना इन दोनों की फरमाइश पर। स्टेज

दिल का क्या करे साहिब, हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कविता जी की आवाज में नागेश्वर धाकड़ और संतोष कुमार जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली डिमांड की तरफ, मींस अगले और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दिलवाले का ये गाना एंजॉय करेंगे हम राजेश मीना की फरमाइश पर और मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से लेना चाहेगी अलविदा दोस्तों। सो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, लव यू ऑल, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारा रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप। जी हाँ, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है, जी हाँ, आपका ही कार्यक्रम बहारे गजल। रात का पहला पहर हम इसे मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा समय होता है। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो जी हाँ, ये चाहने वालों की रात है, ये मोहब्बत करने वालों की शाम है, और इस शाम में आपका सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है, वंदन है और नमन है। दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें, दर्द का साज दे रहा हूँ तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। जी हाँ, हम आपको आवाज़ दे रहे हैं, और फिलहाल चैट बॉक्स एकदम सूना सूना सा पड़ा हुआ है भाई, तो हमारी आवाज़ को सुनिए। और मैंने आवाज़ आपको दी है बड़े नाज के साथ, आप अपनी आवाज़ मिला दें हैं मेरी आवाज़ के साथ। तो जी हाँ, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी आवाज़ भी हम तक पहुँचे। जी चलिए चलते हैं, और आज शुरुआत करते हैं गजल की। एक ऐसे लिखने वाले ने जिन्होंने अपनी बंद आंखों से जो देखी दुनिया, उसके पहले शायद ऐसी दुनिया सूरदास जी ने ही देखी। और अगर अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो वो दुनिया जॉन मिल्टन ने देखी। बंद आंखों से देखने वाला इंसान शायद वो देख लेता है जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। और आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, इस गजल के बाद उनका जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल जब बात हमने आपसे की है कि आंखें बंद थी और दुनिया को देखा, तो आपने एक बहुत ही प्यारा नाम सुना होगा, रविंद्र जैन। अगर आपने तुलसीदास जी पर आधारित श्री रामचरितमानस है, और रामानंद सागर ने एक भारत का सबसे ज्यादा एक समय में देखा जाने वाला सीरियल बनाया था रामायण, उनके जितने भी गीत थे उन सबको अपनी आवाज भी दी थी रविंद्र जैन ने। बहुत अच्छा लिखते भी थे, हालांकि लिख नहीं सकते थे तो बोलते थे, और उनके शागिर्द लिखते थे, जो उनके उस शिष्य होते थे वो लिखते थे। और बाकी ऐसा रंग जब चढ़ता है, देखिए कुछ रंग होते हैं जो इंसान पर कुछ देर के लिए चढ़ते हैं। कहीं पढ़ा था मैंने कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं, ना मैं भीड़ हूँ ना मैं शोर हूँ, मैं इसीलिए कोई और हूँ, कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। तो रंग चढ़ने की बात होती है साहब, रंग जब चढ़ता है तो शायद ये भी लिखता है कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं। रंग जब चढ़ता है तो रंग ये भी बोलता है कि रंग बर से भीगे चुनर वाली रंग बर से। रंग जब चढ़ता है साहब देशभक्ति का, तो 23 साल का भगत सिंह ये भी गाता है, माँ
मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग की बात है, और रंग जब सूरदास पर चढ़ता है तो वो बोलते हैं कि सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। हमने काले रंग की कंबल ओढ़ रखी है, अब इस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। तो रविंद्र जैन जो आंखों से देख नहीं सकते थे, बहुत अच्छी एक गजल लिखी उन्होंने फिल्म चोर के लिए, और हम सोचते हैं कि आज की शुरुआत उस गजल से करें, उसके बाद उस शायर पर आते हैं आपको जिसके साथ हम उपस्थित हैं। जी हाँ, हमारे साथ विशाल बेदर्दी जी हैं। शुभ संध्या मनु जी, आपको भी। जी हाँ, शुभ संध्या, कैसे हैं आप? मीनू जी हमको गोंडा से सुन रही है, पहली बार देख रहा हूँ आपको। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? जी हाँ, आपका आशीर्वाद है। और हम लोग साइलेंटली सुन रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या बात है, वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। गोरखपुर से शख्सियत बता चुकी है। गुड इवनिंग मनु जी, प्रणाम दादा, कैसे हैं आप? तो भाई बात करेंगे पहले रविंद्र जैन के उस गज़ल की जो उन्होंने लिखा चित्तौर के लिए, और इसके पश्चात आएंगे उस शायर पर जिसको हम आज आपके बीच लेकर आए हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन के द्वारा लिखित एक प्यारी सी गज़ल से, इसे आवाज़ दी है जी हाँ भूपेंद्र सिंह, और दूसरी आवाज़ आप पहचान कर बताइए कि ये कौन है। फिलहाल चलते हैं अपनी उस प्यारी सी गज़ल की तरफ, सुनते रहिए और रेडियो गणसली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल

जी हाँ, ये म्यूजिक बजी है और अंदाजा लगा कर बताइए कि ये कौन सी गजल है जो रविंद्र जैन ने लिखी है। म्यूजिक आपके सामने है, आपको गेस करना है वो गजल कौन सी है। इसके बाद आपको ये गजल सुनाते हैं। फिलहाल जरा गेस कीजिए और बताइए कि ये किस गजल का संगीत आपके सामने। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, बता दिए कौन सी गजल है ये।

जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, दिल में तुझे बसा के जी नहीं, ये नहीं है। जी हाँ, बाद में आपने सही बताया, जब दीप जले आना। जी ये रविंद्र जैन की लिखी हुई गजल है फिल्म चित्तौर के लिए। बिल्कुल सही बताया भाई आपने। और सविता जी प्रणाम करते हैं आपको, और आपको भी शुभ संध्या। था मुझे तुमसे प्यार, मैं ये कह न सकी, वो तीन शब्द जो मेरे लबों पे थे तुम्हें महसूस करा न सकी। जी हाँ, और मेरा अपना मानना ये है मीनू जी कि कौन कहता है कि मोहब्बत के जुबां होती है, ये वो हकीकत है जो आँखों से बयां होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको कहा नहीं जाता, समझा जाता है। ये जिनकी आपने डीपी लगा रखी है, ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आवश्यक नहीं कि हर बात आप अपनी जबान से कहें। बहुत सारी बातें इंसान की आंखें बोलती हैं। और कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये वो हकीकत है जो आंखों से बयां होती है। आप माने या ना माने, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इंसान की आंखें उसके चेहरे से ज्यादा बोलती हैं। एक शेर है कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, वो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। तो आवश्यक नहीं है कि मतलब अब आप कहें कि इस दुनिया में खुदा है तो हमारे सामने लेकर आओ और हम देखेंगे, भगवान को देखेंगे तब मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनको हम देखते नहीं हैं लेकिन मानते हैं। हम हवा को देख नहीं पाते लेकिन उसके बिना शायद दो मिनट सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो कभी कभी कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती, उन्हें बस समझा जाता है। आज बात करेंगे जॉन एलिया साहब की, एक ऐसे शायर जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बस तो गए पाकिस्तान में लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान में ही रहा। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं। मनोज जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जी हाँ, और उन्होंने लिखा जॉन एलिया साहब ने, मतलब वो मुशायरों की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनको जिनका नाम सोचने के बाद सोचिए, मतलब कहा जाता है कि यहाँ भारतवर्ष में जब वो रहते थे और बंटवारा नहीं हुआ था तो शायद किसी से उनकी या उनका लगाव था। और वो जो लगाव था वो रूहानी था, मतलब जो मोहब्बत थी वो रूहानी थी। तो और कहा जाता है कि उनको भूल नहीं पाए। उनकी लिखी हुई एक गज़ल है कि कितने शौक से रहते होंगे कितने इतराते होंगे, कितने शौक से रहते होंगे कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। यारों कुछ तो हाल सुनाओ उनकी कयामत बाहों के, यारों कुछ तो हाल सुनाओ उनकी कयामत बाहों के, अरे वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। ये क्या मोहब्बत है। और उन्होंने लिखा है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मतलब दाग मतलब वो नहीं जो बंदूक से दाग दिया जाए, मतलब दाग मतलब स्टेन्स, धब्बे। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, अरे मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं। देखिए, एक उम्र आती है इंसान को जब हम एडोलसेंस की अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में, मतलब 13 से 21 साल, 18 साल, उन समय की जो उम्र होती है वो
जो होती है वो

नाकामयाबी, अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। खुद को जाना, खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। शाम से ही दुकानें दीद है बंद, दुकानें दीद मतलब बाजार, शाम से ही दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। ए मेरी सुबह शाम, ए दिल की शफक, शफक कहते हैं उगते हुए सूर्य की जो लालिमा होती है उसको शफक कहते हैं। ए मेरे सुबह शाम, ए दिल की शफक, तू नहाती है अब भी बान में क्या। क्या बात है, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, अरे आबले पड़ गए जबान में क्या। आबले मतलब छाले, आपके हक में कोई ना बोले और आप जिसे मानते हो कोई बोले या ना बोले लेकिन ये बोलेगा, और आप अपने जीवन में एक चीज कही जाती है कि अगर आप अवसर पर सही को सही और गलत को गलत न कह पाए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के वस्त्र उतारने की कोशिश की गई और कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। विदुर नहीं बोले, भीष्म नहीं बोले, द्रोणाचार्य नहीं बोले, कृपाचार्य नहीं बोले, कोई नहीं बोला। द्रौपदी ने हाथ उठाकर कह दिया, बस हे कृष्ण अब तुम। कहते हैं दुशासन खींचते खींचते साड़ी थक गया लेकिन साड़ी कम नहीं हुई। जब और सहारे छिन जाते कोई ना सहारा होता है, तूफान में टूटी कश्ती का भगवान किनारा होता है। तो ये ऊपर वाले पर छोड़ना चाहिए कभी कभी। लेकिन महर्षि व्यास के दंड विधान से कोई बचा नहीं, सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा, एक एक को। तो जहां गलत है उसे गलत कहना हमें आना चाहिए और जहां सही है वहां पर हमारे मुझसे निकलना चाहिए कि इट्स राइट, इट्स क्वाइट राइट, ये बिल्कुल सही है। तो बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या, दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। हम तो बहुत याद करते हैं उनको, देखना यह है क्या वो भी याद करते हैं। यूं जो वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब देखिए बिछड़ गए हैं, पूछना क्या है, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। मतलब अमान मतलब संरक्षण, याद, कुछ भी कहें आप, पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ अभी भी क्या मैं आपको याद आता हूँ। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, अब कोई रहता है आसमान में क्या। और अब अंतिम पंक्ति देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर बोला करता हूँ कि हो सकता है आप इस दुनिया के लिए महज एक इंसान हो, लेकिन हो सकता है किसी एक इंसान के लिए उसकी पूरी दुनिया हो। दो पंक्तियाँ हैं और गहराई तक जाइएगा कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, अरे एक ही शख्स था जहान में क्या। केवल एक इंसान से जिंदगी चल रही थी, वो नहीं रहा तो जिंदगी खत्म। क्या हो गया मुझको, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। और यही मोहब्बत है साहब, यही मोहब्बत तो है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि अब वो क्या करे और क्या ना करे, और कभी कभी तो वो फैसला कर लेता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए इस दुनियादारी के रंग को देखकर एक फैसला करता हूं कि अब मैं कभी वफादारी नहीं करूंगा, कभी वफा नहीं करूंगा। शायर के सोचने का एक तरीका यह भी है

एक तरीका यह भी है कि उसी की यादों में गुम रहूंगी। शबीना अदीब साहिबा ने लिखा कि वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी, मैं ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे जफा भी की है वफा से पहले। तो बेवफाई के पहले उसने वफादारी भी की है, लेकिन यहाँ भी सोचा जा सकता है कि नहीं ठीक है, जब तुम नहीं हमारे तब हम कहाँ तुम्हारे, ना आप मेरे हैं और चलिए मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं भी वफा नहीं करूँगा। जी हाँ, सुशील इतने आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, पर समर्पण हर कहीं नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटी सी घटना और याद आ गई हमको। ये जो सुशील जी ने कहा आकर्षण और समर्पण शब्द, मुझे याद आए कि माँ मीरा, पता ही है आप सबको कि शादी हो गई थी लेकिन वो कृष्ण की दीवानी, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट में रूप सब सोई। ये बाबा जी की फोटो देखकर मुझे घटना याद आई। तो वृंदावन में मंदिर था और उस जमाने में मंदिर में स्त्रियों का जाना मना था, स्त्रियां नहीं आ सकती थी। और मीरा बाई पहुंच गई, जन्माष्टमी का दिन था, अब धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा था। तो लोग पूछे द्वारपाल ने रोका, कहाँ जा रही हो? राजा की पत्नी होना और उसके बाद ऐसी दीवानी हो जाना, देखा स्वामी हरिदास वहां पर थे। स्वामी हरिदास वो शख्सियत है जिसे तानसेन ने शिक्षा ली थी। तानसेन को आप संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं, और उन्होंने संगीत सीखा था स्वामी हरिदास से। हरिदास ने कहा आने दो। माँ मीरा गई अंदर और उन्होंने उसी में भजन सुनाया। जब भजन समाप्त हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई। स्वामी हरिदास ने मीरा जी से कहा कि मीरा भाई, तुम्हारा भजन तो बहुत अच्छा था लेकिन राग से बाहर था। माँ मीरा ने जो उत्तर दिया उस पर हम सब थोड़ी बहुत जो लिख पाते हैं कवि शायर कुर्बान जाते हैं। उन्होंने कहा मुझे पता है महाराज, मेरा भजन राग से बाहर था, लेकिन एक चीज और है, मेरा भजन अनुराग से बाहर नहीं। इंसान को रिझाने के लिए राग की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए अनुराग की आवश्यकता है। हमने राग में नहीं गाया है, अनुराग में गाया है। राग तो आप जानते हैं प्रभु, आप संगीत के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे राग की क्या समझ? आप ज्ञानी हैं और मैं तो दीवानी हूं। तो आप राग देखिए और हम अनुराग देखते हैं। जी हाँ, तो आइए चलते हैं आपको फिर एक गजल की ओर। और इंसान ये सोच लेता है कि चलिए अभी तक तो वफा की ओर कुछ नहीं मिला, तो सोचते हैं अब वफा नहीं करेंगे। जी हाँ, आइए सिक्के के दूसरे पहलू की ओर नजर डालते हैं। और जी लिखा है, घटना के पुजारी

नहीं बिल्कुल नहीं, ये घटना की पुजारी वाली कोई बात नहीं, बस खाली एक ऐसे ही एक घटना याद हो गई तो हमने आपको सुना दी। और आइए अब ले चलते हैं आपको सिक्के के दूसरे पहलू की ओर। जी हाँ मनु, दादा ने लिखा है कि मनु जी क्या बात, आपने बहुत अच्छी शानदार बातें बोली। अरे दादा ये सब आपसे सीखा है, आपके चरणों में बैठकर सीखते हैं साहब, खुद बखुद चल के नहीं तर्ज सुखन आया है, आप जैसे उस्तादों के पांव दाबे हैं तो कुछ फन आया है। जी हाँ, अब चलिए बगैर देरी किए हुए सुनाते हैं आपको ये प्यारी सी गजल, जहाँ पर कवि कह रहा है कि अब मैं वफा नहीं करूँगा।

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। जी अनिल शास्त्री, देखते हैं आपकी बातों में मैं नहीं जा सकता। अरे नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मतलब ऐसा नहीं। अरे गुड नाइट। अरे मीनू जी, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं नहीं नहीं, ये गुड नाइट कहने का अधिकार, शुभ रात्रि या शब्बा खैर कहने का अधिकार इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ मुझे है। और ये अधिकार मैंने आप लोगों से करबद्ध हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक मांगा है, तो कृपया शुभ रात्रि मुझे ही कहने दें। आप न कहें, हम कहेंगे, बिल्कुल दस्तीस पे कहेंगे। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, जाने लिया की गजल सुनाते हैं आपको। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। सोचिए, अगर आप किसी से बिछड़ रहे हैं, आखिरी संबंध हमेशा अच्छे रखिए। आपको जब भी किसी से लगे कि ये मेरी इस शख्स से आखिरी मुलाकात है, तो संबंध अच्छे रखिए, ताकि कभी अगर निगाहें मिल जाएं तो शर्मिंदगी ना हो कि हमने इस शख्स को गाली दी थी या कुछ अपशब्द कहे थे या कुछ भी ऐसा, वाट एवर। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, अरे बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, मतलब ठीक है भाई, आपको आपका रास्ता मुबारक, मुझको मेरा। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों भरे हम। क्यों झगड़ा करें भाई कि तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा अंजलि, मतलब क्या। ठीक है भाई, आपको अभी तक आपका साथ हमारा मुबारक था, अब यही है। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। ठीक है, हम आप दुश्मन नहीं हैं, बस इतना बहुत है। और वफा, इखलास मतलब मोहब्बत, कुर्बानी मोहब्बत, कि हम वफा है, इखलास है, कुर्बानी है, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। अरे हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। चलिए भाई ठीक है, आपको आपका मुबारक, हमको हमारा मुबारक। उन्होंने कहा, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, हमारी परवाह दुनिया नहीं करती। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, जमी का बोझ हल्का क्यों करें हम। जी हाँ, यह है जाने वालिया साहब का रंग, जो इस रंग पर भी आता है। जी हाँ, और आइए, अब बात मोहब्बत की हुई है तो मोहब्बत पर एक बहुत प्यारी गजल मुझे अचानक याद आ गई, आपको सुनाता हूँ और आप जरा सुनकर बताइए कि आपको कैसी लगी। आवाज़ इस बार कायनाती गले के मालिक, आहा, जिनका मंदिर बना हुआ है अहमदाबाद में, उनकी आवाज़ है। गेस कर लेंगे आपकी आवाज़।

0: जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा। आशु मिश्रा जी भाई, आप तो इसी देर से आई, इस वजह से आपका गीत नहीं हम सुना पाए, इसके लिए हमको खेद है, लेकिन कल जरूर सुनाएंगे। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को। जी हाँ, आसमान बल ने चाहा तो अब अगली मुलाकात आपसे होगी शनिवार को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: उन जज्बातों के समंदर में हम तो आगे बढ़ाए, पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम, जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां, जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, नामे वफा। पंखुड़ी 21 साल की हो गई थी। आज न जाने कितने साल बाद उसने एक बार फिर अपने गांव जाने का सोचा था। जरूरी था, क्योंकि पापा की वसीयत के हिसाब से उसे ही अब सब कुछ संभालना था। एयरपोर्ट पर विकास उसे लेने आया था। जैसे ही पंखुड़ी ने उसको देखा, उसका दिल भर आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन विकास इतना अपना हो जाएगा। कोई भी तो रिश्ता नहीं था उसके साथ, फिर भी बस एक वही था जो आज उसके लिए यहां खड़ा था। ये वही गांव था जहां पंखुड़ी के बचपन के कई दिन बीते थे। वो यादें जो जिंदगी भर इंसान के अंदर बचपन को जिंदा रखती हैं। उसे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार विकास से मिली थी। वो लोग शहर में रहते थे और कभी कभी ही गांव आते थे। 8 साल की रही होगी वो, और विकास भी कुछ ही साल बड़ा रहा होगा जब पहली बार उसके पापा उसे लेकर घर आए थे। और घर आकर पापा ने मम्मी से कहा था, ये हमारे गांव वाली राइस मिल के मैनेजर का बेटा है, अब अपने साथ ले आया हूँ, यही रहेगा। बहुत होनहार है, यहाँ शहर में पढ़ेगा तो आगे चलकर हमारा शहर का काम भी संभाल लेगा। पीछे वाला कमरा इसके लिए खाली कर दो। मम्मी ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोला, पहले हाथ धो लो और खाना खा लो, फिर तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और मम्मी ने उसके लिए थाली लगा दी। बहुत सकुचा कर खाना खा रहा था वो, शायद शुरू के कुछ दिनों में आधा पेट ही खाया होगा। धीरे धीरे वो घर में सबसे इतना घुल मिल गया कि लगता ही नहीं था जैसे वो इस परिवार का सदस्य ना हो। छोटे मोटे कामों के लिए मम्मी पापा की जुबान पर हमेशा उसका नाम रहता। मम्मी पापा की इकलौती बेटी पंखुड़ी को भी एक दोस्त मिल गया था। वो उसके साथ लूडो खेलता, कैरम खेलता, साइकिल चलाता। लेकिन पापा के घर आने के बाद पापा के ही आगे पीछे घूमता रहता, उनका बैग रखता, भाग भाग कर उनके लिए मम्मी से चाय पानी लेकर आता और पापा के पास उनके ऑफिस में ही बैठकर पढ़ता, ताकि पापा को जब भी कोई जरूरत हो वो उसे काम बता सके।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है नामे वफा। अब तक आपने सुना, बहुत छोटी सी थी पंखुड़ी जब उसके पापा विकास को अपने साथ रखकर पढ़ाने के लिए गांव से ले आए थे। आज इतने सालों बाद मम्मी पापा के ना रहने पर पंखुड़ी गांव आई थी और वही विकास उसे अपनों की तरह एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। पंखुड़ी के मन में बचपन की यादें एक बार फिर ताजा हो गई थीं। विकास बहुत जल्दी उनके परिवार का हिस्सा बन गया था। कितने अच्छे दिन थे वो। अब आगे। फिर एक दिन हंसते खेलते इस परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई और बड़ी कम उम्र में ही पापा को हार्ट अटैक आ गया। वो सब को छोड़कर चले गए। मम्मी और पंखुड़ी नाना नानी के पास रहने चले गए और विकास वापस गांव। पापा के गम में मम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने भी ज्यादा दिन तक पंखुड़ी का साथ नहीं दिया। शायद पापा को पहले से ही किसी अनहोनी का अंदाजा था या शायद उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने अपनी वसीयत में हर चीज की देखरेख का जिम्मा मामा को दे दिया था और 21 साल का हो जाने पर सब कुछ पंखुड़ी के नाम पर आ जाने की बात लिखी थी। बीच बीच में कभी कभी मामा पंखुड़ी को लेकर गांव जाते थे। उस उम्र में वो जितना समझ सकती थी उसे समझाते थे। विकास हर बार उन्हें आंखें बिछाए वहीं पर मिलता। गांव के पास वाले ही स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया था। फिर शायद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर गया हो, पता नहीं। विकास के पापा ने मामा को बताया कि पढ़ाई करने के बाद उसे शहर में नौकरी मिल रही थी, मगर न जाने क्या लगाव है उसे यहां से कि वो जाना ही नहीं चाहता। कहता है, किस चीज की कमी है यहां? सब कुछ तो है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना। मैं बाबूजी का ही काम संभालूंगा, वो होते तो मुझे अपने साथ ही रखते। उन लोगों के गांव जाने पर वो इतना खुश होता जैसे ये लोग ही उसके सबसे करीबी हों। बंद घर की साफ सफाई भी करवा देता, खाने पीने का इंतजाम भी कर देता। उसके कारण कभी ऐसा नहीं लगा कि गांव में अब उनका कोई नहीं है और वो इतने दिनों बाद गांव आ रहे हैं। कभी कभी वो चिट्ठी लिखकर भी गांव का हालचाल बताता रहता था। उसकी चिट्ठियों में ढेरों दुआएं होती थीं, बहुत सारा प्यार। अब वो भी अपने पापा के साथ उनकी राइस मिल संभालने लगा था। पापा के जाने के बाद शहर के बिजनेस तो चल नहीं पाए थे, बस यही गांव की प्रॉपर्टी और राइस मिल थी। लेकिन इतना भी काफी था पंखुड़ी की जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए। और ईश्वर की कृपा थी कि पापा के जाने के बाद भी विकास और उसके पापा ने इस तरीके से चीजों को संभाला था कि व्यापार ने हर दिन बढ़ोतरी ही देखी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है नामे वफा। अब तक आपने सुना पंखुड़ी के पापा छोटे से विकास को पढ़ाने के लिए गांव से अपने साथ ले आए थे। पापा के असमय चले जाने पर उसने वापस गांव जाकर सारी प्रॉपर्टी और काम को अपने पापा के साथ मिलकर उसी तरह संभाल रखा था। अब आगे आज इतने सालों बाद जब वो वापस एयरपोर्ट से विकास के साथ अपने गांव, अपने घर, अपने यादों के पास वापस जा रही थी तो विकास ने उसे रास्ते में ही सब बताना शुरू कर दिया था। आपका बंगला साफ करवा दिया है, रात को मेरी बहन आपके पास सोने के लिए आ जाएगी। आने से पहले पंखुड़ी क्या क्या सोच रही थी, कौन मिलेगा, कैसे हालात होंगे घर के। मम्मी पापा के जाने के बाद आज पहली बार वो अकेले बिना मामा के अपने गांव जा रही थी। मामा ने सब कुछ उसके नाम कर दिया था और बोला था कि वो खुद जाए, चीजों को समझे और संभाले। घर के सामने टैक्सी रुकी तो पंखुड़ी का मन भर आया। इतने सलीके से रखरखाव किया हुआ था कि देखकर लगता ही नहीं था कि बहुत समय से कोई यहां नहीं रहता। उसने अपनी नम आंखों से विकास से कहा, विकास, जो तुमने हमारे लिए किया है वो कोई अपना भी नहीं कर सकता। दुनिया तो हर वक्त दूसरे के बुरे वक्त का फायदा उठाने की ताक में रहती है। विकास बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप पंखुड़ी जी, मेरे लिए आपके पापा मेरे पापा से कम नहीं थे। पंखुड़ी के मन में बचपन की यादें किसी फिल्म की तरह चल गईं। एक पल को उसका जी चाहा कि विकास के गले लगकर जी भर के रो ले। तभी वहां एक छोटा सा बच्चा टिफिन लेकर आ गया। ये कौन है, पंखुड़ी ने पूछा। विकास ने बताया, ये मेरे घर के बगल में रहता है, मेरी बहन ने आपके लिए खाना भिजवाया है, आप लोग चाय पियेंगे ना। वो बच्चा किचन में गया और दो कप चाय बना लाया। विकास ने बताया कि हम लोग कल ही घर में आकर छोटा मोटा खाने पीने का सामान रख कर गए थे, चाय नाश्ते की आपको दिक्कत नहीं होगी, बाकी तो सब मेरी बहन भिजवाती ही रहेगी। देर शाम तक विकास पंखुड़ी को राइस मिल का सारा हिसाब किताब समझाता रहा, कहां कितने खेत हैं, कौन से बगीचे हैं, घर के कागज, मिल के कागज, मिल में काम करने वालों की लिस्ट, उनकी डिटेल्स, उनकी तनख्वाह, खेतों का, बगीचों का हिसाब किताब और भी न जाने क्या क्या। मैं कल आऊंगा, अब आप आराम करिए, कल आपको राइस मिल ले चलूंगा, सारी चीजें देख समझ लीजिएगा। कल एक छोटी सी पूजा भी रखी है मैंने मिल में, आपसे मिलकर सबको बहुत खुशी होगी। आपके पिताजी सबको बहुत प्यार करते थे, सबका ख्याल रखते थे, सब उनको बहुत याद करते हैं। कितने सालों बाद उनकी असली मालकिन आई है, सब आपसे मिलना चाहते हैं। विकास चला गया। पंखुड़ी घर के कोने कोने में घूमकर अपने बचपन की यादों के टुकड़े समेटने लगी। यहाँ की हवा में, यहाँ की खुशबू में पंखुड़ी को ऐसा सुकून मिल रहा था जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है नामे वफा। अब तक आपने सुना पंखुड़ी के 21 साल के होने पर पापा की वसीयत उसके नाम हो गई थी। वो सारी चीजों को समझने और संभालने के लिए कई साल बाद गांव वापस आई थी। वहां उसकी मुलाकात विकास से हुई, जिसे उसके पापा ने बचपन में पढ़ाया लिखाया था, और वो आज भी उन्हें अपना सब कुछ मानकर उनकी सारी चीजों की देखरेख कर रहा था। पंखुड़ी को लग रहा था कि अगर विकास ना होता तो शायद सब कुछ बिखर गया होता। कितना ईमानदार और कितना प्यारा इंसान है वो। अब आगे, तभी मामा जी का फोन आया तो जैसे वो तंद्रा से जाग गई। ठीक से पहुंच गई पंखुड़ी?
1: जी मामा जी, सब ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं?
0: नहीं मामा जी, सब ठीक है, मैं आराम से हूं। खोखले शब्दों में अपनी भावनाओं को कैसे बताती पंखुड़ी। उसने बहुत कम शब्दों में बात करके फोन रख दिया। रात को विकास की बहन उसके साथ सोने के लिए आ गई। आते ही उसको ऐसे गले लगाया जैसे जन्म का कोई आत्मीय रिश्ता हो। देर रात तक बकबक करती रही। ये पंखुड़ी की उससे पहली ही मुलाकात थी, पर वो पंखुड़ी के बारे में, उसकी मम्मी के बारे में, उसके पापा के बारे में, उसकी छोटी छोटी पसंद नापसंद हर एक चीज के बारे में ऐसे जानती थी जैसे उन्होंने बचपन साथ बिताया हो। भैया आप लोगों के बारे में बहुत बातें करते हैं, वो आपके मम्मी पापा को बहुत याद करते हैं। उनके पास आपके पापा की दी हुई एक पेन भी है, वो हमेशा उसे अपने पास रखते हैं और उसी से सारा मिल का काम करते हैं। आप लोग साथ में खूब खेलते थे ना? आपके पापा आप दोनों को साथ बिठाकर पढ़ाते भी थे ना? फिर उसने अपने आप ही ये भी तय कर लिया कि जब तक पंखुड़ी यहाँ है वो यहीं रहेगी, अपने घर नहीं जाएगी। पंखुड़ी का जी कर रहा था कि वो उसे सुनती ही जाए। फिर पंखुड़ी ने उससे कहा, फिर तुम्हारे घर का काम कौन करेगा? जवाब में वो बोली, भैया जब कल आपको लेके बाहर काम दिखाने जाएंगे ना, तब मैं जाकर फटाक से सारा काम कराऊंगी, उसकी चिंता आप मत करिए। वैसे खाना तो भैया भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। इतना कहकर वो अपने आप ही जोर से हंस पड़ी। कितनी निश्चल हंसी थी उसकी। बनावटी रिश्तों में ऐसी हंसी कहां सुनने को मिलती है। विकास दिन भर पंखुड़ी के साथ सारे काम निपटा रहा था, उसे हर जगह घुमाया, सारा काम दिखाया, सारे कागज समझाए, साथ ही साथ उसका पूरा ख्याल भी रख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में चाय, थोड़ी देर में पानी, नाश्ते के समय, खाने के समय सब काम छुड़वाकर आधे घंटे के लिए उसे घर ले आया। जहां भी जाती उसके बैठने के लिए कुर्सी लगवा देता, कहीं भी ले जाने के लिए धूप का ख्याल रखता। पंखुड़ी को ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज उसके पापा होते तो वो भी उसका इतना ही ख्याल रखते। ठीक ऐसे ही पूजा भी हो गई और पंखुड़ी ने सारे जरूरी कागजात भी अपने साथ रख लिए। वापस आने का समय आ रहा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है नामे वफा। अब तक आपने सुना पंखुड़ी अपने पापा की प्रॉपर्टी और बिजनेस समझने और संभालने के लिए कई साल बाद गांव गई थी। यहां उसकी मुलाकात विकास से हुई, जिसने सारी चीजों को ठीक उसी तरह संभाल रखा था जैसे पापा चाहते थे। विकास और उसका बचपन साथ ही खेलते कूदते बीता था। पंखुड़ी को लग रहा था कि अगर विकास ना होता तो ना जाने क्या होता। आज के जमाने में इतने प्यारे, इतने सच्चे, इतने ईमानदार लोग होते कहाँ हैं? अब आगे। तभी विकास एक डिब्बा लेकर पंखुड़ी के पास आया और बोला, ये रख लीजिए पंखुड़ी जी। पंखुड़ी ने कहा, ये क्या है? तो बोला, बेसन के लड्डू। आपको बचपन में बहुत पसंद थे ना घर के बने बेसन के लड्डू? मैंने अपनी माँ से कहकर बनवाए हैं। पंखुड़ी को याद आया कि जब वो साथ रहते थे तो विकास अपना बेसन का लड्डू भी उसे ही दे देता था और वो एक बार भी बिना मना किए झट से खा जाती थी। विकास को अब तक उसकी पसंद नापसंद सब याद थी। इस बार पंखुड़ी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना ही कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग विकास। विकास की बहन के गले लगकर वो बहुत रोई, बोली, मुझे मेरा परिवार मिल गया, अब मैं अकेली नहीं हूं, मैं जल्दी फिर आऊंगी। टैक्सी आ गई थी। पंखुड़ी ने घर की चाबियां विकास की बहन के हाथों में रख दी। ये घर की चाबियां तुम रखो, घर की चाबियां मैंने रख ली तो ये घर मुझसे छूट जाएगा, तुम लोग ही मेरा परिवार हो। उन लोगों ने बहुत मना किया पर पंखुड़ी सारे कागज सारी चाबियां वहीं घर में रखकर घर की चाबियां विकास की बहन के हाथ में देकर ही बानी। वापस लौटते समय रास्ते भर बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं के बांध को थाम रखा था। विकास उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था। 2.5 घंटे का रास्ता था एयरपोर्ट तक का। पंखुड़ी ने बहुत मना किया कि मैं चली जाऊंगी, तुम रहने दो, पर वो बोला, अगर मैंने ऐसे आपको जाने दिया तो बाबूजी नाराज हो जाएंगे, जितना मेरे बस में है वो तो मुझे करने दीजिए। मामा के घर पहुंची तो मामा ने हालचाल पूछा। पंखुड़ी ने सब बताया, हर एक बात, हर किसी के बारे में। मामा बोले, चलो अब मैं निश्चिंत हो गया, अब तुम अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस की जिम्मेदारी संभालो। बस एक जिम्मेदारी मुझे और निभानी है, तुम्हारे लिए एक लायक जीवन साथी ढूंढने की। पंखुड़ी बोली, मामा जी अगर आप सही समझें तो विकास के हाथ में मेरा हाथ देकर इस जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकते हैं। मामा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, बोले, बहुत नेक बच्चा है विकास, हमने तो उसे बचपन से देखा है। फिर पंखुड़ी के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं इसी शनिवार को जाकर उसके पापा से बात करूंगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी नामे वफा। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझे रिव्यूज भेज सकते हैं 9453254315 पर। और अगर आप भी पहुंचाना चाहते हैं अपने अपनों तक अपने दिल की बात तो हमें लिख भेजिए अपनी कहानी, हम लाएंगे उन्हें गीतों में पिरोकर आपके लिए। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम इन योर फेवरेट शो भूले बिसरे गीत विद आरजे अनोखी। नाउ यू आर लिसनिंग रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मुसर्रत नजीर। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। आज के अंक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक खूबसूरत आंखों, दिलकश चेहरे और दराज कद्र की मालकिन अदाकारा और प्लेबैक के साथ साथ फोक सिंगर मुसर्रत नजीर ख्वाजा से। आज हम इनकी कहानी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंजाबी विवाह में गाया जाने वाला ये बेहद खूबसूरत और प्रचलित गीत इन्हीं की आवाज में।

श्रोताओं, आपको बता दूं कि 60 के दशक की खासा प्रचलित और हर दिल अजीज अदाकारा मुसर्रत नजीर ने मात्र 10 साल के उर्दू और पंजाबी फिल्मी करियर में ही अपनी खास जगह बना ली। इनके जिंदगी के बाकी पन्नों को खोलने से पहले क्यों ना मुसर्रत नजीर की आवाज में कुछ पंजाबी फोक सॉन्ग सुना दें आपको।

मुसर्रत नज़ीर ख्वाजा का जन्म 13 अक्टूबर 1940 में हुआ। ये एक पाकिस्तानी गायिका और फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है। इन्हें सिल्वर स्क्रीन के स्पार्कलिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें 1950 और 1960 के दशक के दौरान पाकिस्तान के सिनेमा में उनकी भूमिका के लिए पहचाना जाता है। कई वर्षों के बाद उन्होंने सोलो भी गाया। अधिकतर विवाह और लोकगीत इनके प्रचलित हैं।

यादें, बीते हुए दिनों की यादें दिलों में ऐसे निशान छोड़ जाती हैं कि उन्हें दोहराने से एक सुकून और चैन मिलता है। जिस जमाने में मैं फिल्मों में काम करती थी तो अच्छे अच्छे मौसीकारों के नगमे स्क्रीन पर पिक्चराइज करवाती थी तो मुझे अक्सर गाने बहुत पसंद आते और मेरा जी चाहता कि मैं उन्हें खुद गाऊं। उन मौसीकारों में से रशीद अत्रे साहब, फिरोज निज़ामी साहब और बाबा चिश्ती साहब के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उस बेवफा का शहर है अपने वक्त का बहुत ही मकबूल गाना था, अब भी है और हमेशा रहेगा। फिल्म शहीद की तकमील के दौरान ही मेरी शादी हो गई, इस वजह से ये गीत मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखता है। वो दिन भी कुछ अजीब थे जब मैं ये गाना फिल्मा रही थी तो कई बार मेरी आंखें भर आईं। आज ये गीत खुद गाते हुए फिर आंसू बह निकले। इस गुलशन में मेरी यादों के फूल सजे हैं, इसमें मसरतों के हजूम हैं, हसरतों के दाग हैं और यादों के तूफान हैं।

अब बात होगी मुसर्रत नज़ीर के प्रारंभिक जीवन यानी शुरुआती जीवन की। इनके माता पिता लाहौर के कश्मीरी मूल के एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता ख्वाजा नज़ीर अहमद लाहौर नगर निगम में एक पंजीकृत ठेकेदार के रूप में काम करते थे। इनके जीवन के आरंभ में इनके माता पिता चाहते थे कि ये एक डॉक्टर बने और इन्हें यथावत सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान की। जी हाँ, यथावत सर्वोत्तम शिक्षा का मतलब है इन्हें पूरी तरह की शिक्षा दी गई जो कि इन्हें एक डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी थी। मुशर्रत ने मैट्रिक परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की और इंटरमीडिएट परीक्षा लाहौर के किंडर कॉलेज से उत्तीर्ण की।

अब बात इनकी आजीविका की। इन्हें संगीत में गहरी रुचि थी और इन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में रेडियो पाकिस्तान के लिए गाना शुरू किया। हालांकि रेडियो से मिलने वाली अपर्याप्त कमाई इन्हें 1955 में फिल्म निर्देशक अनवर कमाल पाशा के पास ले गई। इन्होंने पाशा को उनकी फिल्मों के लिए गाने की अपनी तीव्र इच्छा बताई। इसके बजाय पाशा ने सुझाव दिया कि आपको अभिनेत्री बनना चाहिए। मुशर्रत को अपने माता पिता की स्वीकृति की जरूरत थी। पाशा ने स्वयं मुशर्रत के पिता से मुलाकात की और उनकी बेटी के लिए एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में फिल्म उद्योग में काम करने की अनुमति के लिए उन्हें राजी करवाया।

आइए अब बात करते हैं मशर्रत नज़ीर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1940 को हुआ था। इन्होंने एक चिकित्सक अरसद मजीद से शादी की थी और 1965 से ये कनाडा में जाके रहने लगी थी। कनाडा में जाने का कारण क्या था ये मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। उससे पहले आपको बता दूं कि 2005 तक मशर्रत नज़ीर 3 बच्चों की माँ हो चुकी थी और सबसे बड़ा बेटा इनका उमर मजीद एक फिल्म निर्देशक है। मशर्रत नज़ीर ने अपने भावी पति के लिए अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया जो उस समय चरम पर था और कनाडा में जाकर अपने पति के साथ में राजी खुशी रहने लगी। आइए इन्हीं की आवाज में एक और खूबसूरत सा सॉन्ग हो जाए।

मुसर्रत नज़ीर और अरशद मजीद 1970 के दशक में पाकिस्तान लाहौर लौटना चाहते थे और वहां आकर वो बनाना चाहते थे एक अस्पताल, जिसके लिए इन्होंने 2005 में बड़ी रकम लगाकर एक घर भी खरीदा जिसकी देखभाल आज भी हो रही है। पर अफसोस इस बात का है कि बहुत ज्यादा संघर्ष और भागा दौड़ी के बाद भी इनका ये सपना साकार नहीं हो सका।

मुसर्रत नज़ीर ने 1983 में पाकिस्तानी टेलीविज़न के खासा लोकप्रिय शो में भी उपस्थिति दर्ज कराई। उस शो के गाने पाकिस्तान में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। उन गानों में से कई गाने हमने अभी तक आपको सुना दिए हैं और कुछ गाने हैं जो आपको और भी सुनाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सभी गानों में से जो मेरा वाला फेवरेट सॉन्ग है, क्यों ना वही आपको सुना दूं और उसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं।

तो अभी तक दोस्तों आपने जाना कि मुसर्रत नज़ीर आखिर हैं कौन और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1958 में निगार पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता मुसर्रत नज़ीर ने फिल्म जहरे इश्क के लिए, और पाकिस्तान सरकार द्वारा प्राइड ऑफ परफॉर्मर्स अवार्ड सिनेमा उद्योग में योगदान भी जीता सन 1989 में। तो आइए इन्हीं की आवाज में एक और सॉन्ग हो जाए